0: गप्पों वाली मेम साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।

दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? Yes, 1, 2, 3, 4. La la la la la la la. बस बस बस बस बस बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया. Musicians, आप लोग मत बजाइए. Ready? 1, 2, 3, 4. La.

देखो कसम से, देखो कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ। तुम भी जलोगे, हाथ मलोगे, रूठ के हमसे हाँ। देखो कसम से, कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ। तुम भी जलोगे, हाथ मलोगे, रूठ के हम...

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं, ठीक है। चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, दिस आर बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन नाउ, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत करते हैं। हमने, अगर आपको याद हो, पिछली कड़ी में बात की थी कि सिचुएशंस हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी हो जाती हैं और नो डाउट वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स लगती हैं। और जिस तरह से हमने देखा था कि आने वाला वक्त ये भी कह रहा है कि सिचुएशंस तो आती ही जाएंगी, और वो अगर हम एक चीज़ जिसे हमने धारण करने को कहा था, जिसे कहा था कि अपने जीवन में ज़रूर इम्प्लीमेंट करें, वो ये कि उन्हें सिचुएशन फील कैसे किया, वो मैंने क्रिएट किया।
1: तो यहाँ दिस इज़ इम्पोर्टेंट, दिस होल लाइन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, वो मैंने क्रिएट किया। आई जस्ट हैव टू रिमेम्बर ओनली दिस। अभी तक ये हो रहा था कि हाँ, दर्द क्रिएट हुआ, टेंशन क्रिएट हुई या गुस्सा क्रिएट हुआ, लेकिन वो परिस्थिति ने क्रिएट किया। आई अंडरस्टूड दैट द पेन इज गेटिंग क्रिएटेड। वो तो मुझे, क्योंकि वो मेरे अंदर क्रिएट होता है, तो मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है कि वो पेन क्रिएट हो रहा है क्योंकि आई एम गोइंग थ्रू द पेन। लेकिन क्रिएटर कौन था उसका? सो समवेयर व्हाई आई वाज फोकसिंग आउटसाइड, क्योंकि मेरे को लगा क्रिएटर बाहर बैठा है, यू नो, दैट्स व्हाई यू सेड पेन हिट्स अस, बिकॉज क्रिएटर वॉज आउटसाइड। लेकिन जो आपने अभी कहा, मैंने क्रिएट किया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ आ गई? सारी मेरे ऊपर आ गई। तो जो हमने, कई बार हम ऐसी थॉट्स क्रिएट करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि वो नेगेटिव हैं, लेकिन वो नेगेटिव थॉट फिर वो मेरे सारे दर्द का कारण बन जाती हैं उस सिचुएशन को फेस करने में। तो अगर हमें अपने आप को उस सिचुएशन से क्रॉस करना है और बहुत स्टेबिलिटी से क्रॉस करना है, तो कुछ एक बातें जो हमें बहुत मदद करती हैं वो है पॉजिटिव थिंकिंग। आई नो इट्स अ वेरी क्लीशेड वर्ड, आई नो इट्स अ वेरी क्लीशेड वर्ड, वेरी रेड, वेरी हर्ड, but still not practiced. What is the need of the hour? Let's start now. Let's not wait for the pain to
0: come in,
1: go out of control. Kyunki wo jo emotional pain hai, fir wo sirf emotional pain na rehkar mere par physical effect bhi le leta hai, meri relationships pe effect karta, koi na koi ailment sharir mein bimari ho jati hai, fir doctor kehta hai tension nahi lena, hoga, it won't happen at that time. To jabki ab मालूम है सिचुएशंस बाहर है, बट स्टिल इट्स नॉट दैट बैड, इट्स स्टिल नॉट बैड, आई कैन स्टिल टेक आउट सम टाइम टू वर्क ऑन माय सेल्फ, प्रोवाइडेड आई रिमूव दिस वन थॉट कि मेरे पास टाइम नहीं है। सी, आई एम नॉट रेडी टू टेक आउट दैट लिटिल बिट ऑफ टाइम। हाउ मच टाइम? 10 मिनट्स, 15 मिनट अपने लिए निकालना, 15 मिनट जिससे आपकी पूरे दिन की, आपकी पूरे जीवन की नींव खड़ी हो सकती है। अगर हम 15 मिनट निकाल कर सिर्फ साइलेंस में बैठकर अपने आप को देखें, अपनी थॉट्स को देखें, फिर आगे मेडिटेशन जब करते हैं तो परमात्मा से कनेक्शन जोड़े, अगर ये 15 मिनट में मेरा इतना क्लीनिंग और चार्जिंग प्रोसेस हो सकता है जिससे मैं बड़ी से बड़ी सिचुएशन को फेस कर सकती हूँ, हाउ मच इज 15 मिनट्स नाउ?
0: लेकिन ऑलरेडी जब सिचुएशन है, जैसा आपने कहा कि अब सिचुएशन आ गई है, और
1: लेकिन अभी भी उतनी बड़ी नहीं है, अभी भी उतनी बड़ी नहीं है कि मैं अपने ऊपर काम करना नहीं शुरू कर सकती, क्योंकि अभी भी मुझे क्या करना है, फर्स्ट स्टेज तो यही देखनी है कि आई एम क्रिएटिंग द रिस्पॉन्स। लेकिन अगर मैं अपने लिए समय निकाल कर थोड़ी देर साइलेंस में बैठकर उस पर कॉन्टम्पलेट नहीं करूँ, मनन नहीं करूँ, तो मुझे तो ये फैक्ट भी नहीं पता चलता कि आई एम क्रिएटिंग द रिस्पॉन्स। मुझे तो ये रियलाइजेशन भी नहीं है कि आई एम क्रिएटिंग द पेन। क्यों रियलाइजेशन नहीं? आई एम गोइंग वेरी फास्ट। ये इसलिए द फर्स्ट स्टेप हैज टू बिगिन विद टेकिंग आउट सम टाइम फॉर माई सेल्फ। बैठे, भले वो परिस्थिति ही है, लेकिन बैठकर अपने बारे में जब सोचें कि व्हाट डू आई हैव अ चॉइस टू फेस दिस सिचुएशन, दिस कुड बी कॉल्ड द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेडिटेशन, नो प्रॉब्लम। परमात्मा से कनेक्शन अभी नहीं जुड़ रहा है, नो प्रॉब्लम, अपने से तो जोड़ना शुरू करें। अपने से जुड़ेगा, हीलिंग होगी, तो परमात्मा से तो जुड़ना ही है, बिकॉज ही इज फाइनली द वन who's going to, you know, give me the power to change. Lekin time to nikalna padega. Ilaj karwana hai, to doctor ke paas jana to padega na ilaj karne ke liye. Uske saath connection jodna to padega. Kahin doctor ke paas jane ke liye time nahi hai. Lekin hai main bimar hu, hai main bimar hu. Now who's responsible for this? Who's responsible? आप खुद ही अपने आप को कहते हैं कि मेरे पास अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए टाइम नहीं है, और फिर कह रहे हैं हाय मैं क्या करूं, मेरी किस्मत, मेरा भाग्य, अगेन द ब्लेम विल गो एवरीवेयर आउटसाइड। तो मेडिटेशन इज डेफिनेटली दैट कनेक्शन जिससे मैं अपने आप को देखना शुरू करती हूँ, अपनी हीलिंग, क्योंकि मेडिटेशन कम्स फ्रॉम द वर्ड हीलिंग, अपने आप को हील करना शुरू करती हूँ, अपने थॉट्स को देखना शुरू करती हूँ कि हाँ देखेंगे ही नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो तो पता ही नहीं चलेगा। बाहर सिर्फ अपने एक्शंस को देख सकते हैं, थॉट्स को नहीं देख पाते हैं। तो थोड़ा सा समय अगर हम अपने लिए रोज निकालें, भले अभी भी कितनी भी बड़ी सिचुएशन है, बहुत बड़ी नहीं है, अभी भी उतना समय निकल सकता है, और अभी भी समय निकालेंगे तो उस सिचुएशन को राइट पर्सपेक्टिव में देख पाएंगे। समय नहीं निकालते।
0: एक बात मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, अभी जो हम बात ही कर रहे हैं ना शिवानी की, जब सिचुएशन आती है तो हमारा कोई थॉट क्रिएट होता है, लेकिन अगर अवेयरनेस के साथ देखूं, मैं भी अगर देखूं, हमने जो हम कई दिनों से काम कर रहे हैं, हमारे सारे दर्शक और मैं शामिल होकर, समटाइम्स व्हेन द सिचुएशन, कई बार तो हम हैंडल करते हैं अपने आप को देखते हुए, कई बार देखते हैं कि वो फीलिंग पहले जनरेट होती है, थॉट की जहाँ फीलिंग ने हिट किया, चाहे वो हर्ट का था, चाहे वो एंगर का था, चाहे वो पेन का था, या चाहे वो रिजेक्शन का था, कोई भी एक फीलिंग ने हिट किया, उसके बाद थॉट आया कि
1: फीलिंग बिना थॉट के नहीं आएगी,
0: नहीं आ सकती।
1: हर्ट पेन, जितने भी आपने फीलिंग्स बताई, हर्ट पेन एंगर रिजेक्शन, उसने मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, हर्ट, उसे मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, एंगर, वन थॉट हैज टू गेट क्रिएटेड फर्स्ट।
0: लेकिन वो थॉट हमें दिख नहीं पाता,
1: पर फास्ट प्रोसेस है ना।
0: हाँ।
1: क्योंकि मेरा एक स्पीड, इतनी फिफ्थ गियर में आपकी गाड़ी अगर सारा दिन चल रही है तो आपको कितना क्लैरिटी से दिखाई देगा सब कुछ। कभी तो स्लो डाउन करेंगे थोड़ा सा तो दिखाई देगा कि क्या प्रोसेस है अंदर जो चलता है। देखो इतना फास्ट होता कि ये भी नहीं रियलाइज होता कि पहले थॉट या पहले फीलिंग, ये भी नहीं रियलाइज होता अंदर से आ रहा है या बाहर से आ रहा है। यू नो लाइक यू सेड, द फीलिंग हिट्स, अगेन फीलिंग डजंट हिट, आई क्रिएट, लेकिन बाय प्रोडक्ट ऑफ माय थॉट। इसलिए जहां मेहनत करने वाली बात है वो उस सीड पर है, उस बीज पर है। थॉट एक बार राइट क्रिएट हो गया, फीलिंग अपने आप राइट क्रिएट होगी, एक्शन अपने आप उसके बाद राइट होगा, लेकिन वो थॉट स्टेज तो हम इतनी फास्ट फॉरवर्ड में चले जाते हैं, पता नहीं चलता। तो अगर हम थोड़ा सा समय रोज बैठकर अपने थॉट्स को देखें तो हमें पता चलने लगेगा कि वी आर क्रिएटिंग द थॉट। तो इसलिए थिंकिंग को परिवर्तन करने के लिए, पॉजिटिव थिंकिंग में लाने के लिए मेडिटेशन इज द सॉल्यूशन। Because meditation means first thing self introspection, अपने आप को देखना। जब तक हम वो नहीं करेंगे तो उसको तो फिर हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसको कैसा करना है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जब भी परिस्थिति आती है, माय फर्स्ट रिस्पॉन्स विच हैज़ बिकम वेरी कॉमन, हियर इज अ चेंज, what is the first response that gets created automatically? What is it?
0: Resistance.
1: Resistance. यहाँ से सिचुएशन आई, मैंने रेजिस्ट किया क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे कोई ना कोई डर है। फियर एक बहुत डीप रूटेड,
0: क्या होगा,
1: डीप रूटेड। अब जो आपने कहा क्या होगा, अब हम नॉर्मली समझते कि जब भी परिवर्तन होता है कुछ ना कुछ तो हमें डर लगता है, फियर इज वेरी डीप रूटेड। लेकिन डर ये लगता है हमें कि अब क्या होगा। एक्चुअली अगर आप और उसको गहराई से अपने आप को कभी भी देखना, नेक्स्ट टाइम जब डर लगेगा, फियर, इट्स नॉट फियर ऑफ व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, इट इज फियर ऑफ व्हाट विल आई लूज आउट ऑफ व्हाट आई हैव नाउ।
0: यस, लूजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट,
1: बिकॉज़ वी ऑलवेज थॉट दैट चेंज मींस फियर ऑफ अननोन, यू नो, कि आई डोंट नो कि इस चेंज से क्या होने वाला है। लाइक आई रिमेम्बर कि जब कंप्यूटराइजेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड, you know, into the offices, into the school system and everything. Oh, it was fear, fear everywhere.
0: There was so much of resistance.
1: Yeah, so much of resistance. कि जिस तरह से चल रहा है, ठीक चल रहा है ना, ये किस लिए, अब ये क्यों
0: काम कर रहा है? Human को replace कर देंगे, machine जो है, machine will take over. कितनी उनकी films बनी थी, कितना कुछ बना था.
1: तो ये fear किस बात का था? Fear इस बात का नहीं था कि ये क्या होगा इससे. Fear इस बात से था कि मेरी जो वर्तमान समय position है, मेरी जो अथॉरिटी है, मेरी जो पावर है, कहीं वो तो नहीं
0: लूज
1: कम हो जाएगी। तो वो फियर की वजह से मैं उस चेंज को रेजिस्ट करती हूँ, मुझे नहीं चाहिए, मैं जैसे हूँ वैसे ठीक हूँ। सो फियर ऑफ लूजिंग समथिंग। एंड नॉर्मली हम किस चीजों को खोने का डर रहता है हमें? पीपल, फियर ऑफ लूजिंग पीपल, पावर, you know, any relationship, any office, anywhere change is introduced, fear of losing power.
0: पोजीशन,
1: पोजीशन, यस, प्रेस्टीज, माय पर्सनालिटी, पीपल, मनी, पे, ऑल दिस, वी कॉल देम द पीस, पावर, पोजीशन, प्रेस्टीज, पीपल, पेनीज, डर. और ये डर मुझे उस चेंज को रेजिस्ट करने के लिए करता है. और जैसे ही मैंने रेजिस्ट किया तो कौन सी एनर्जी फ्लो होने वाली है?
0: नेगेटिव, ऑफ कोर्स,
1: नेगेटिव. सो इफ आई रेजिस्ट चेंज, देयर इज नो वे आई विल बी एबल टू थिंक पॉजिटिव नाउ. तो मैंने रेजिस्ट किया क्योंकि मुझे अंदर कोई ना कोई डर है कि मेरी ये सारी जो है पोजिशन, पावर, लोग जो है, इनमें से कोई मेरे से खो ना जाए. तो वो डर हमें रोकता है. तो अगर हमें इस सिचुएशन को बहुत आसानी से क्रॉस करना है, फर्स्ट स्टेप कम्स टू एक्सेप्टेंस.
0: एक्सेप्टेंस ऑफ सिचुएशन,
1: एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना कि ये होना है. जैसे ये सारी बातें हमने की, अब ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है ना. ऑल दीज थिंग्स, पीपल, money, position, whatever, it's a part of my life. This is also all energy, like it's flowing in my life. ये एक river की तरह है जो flow करता रहता है. हम उस river को क्या करने की कोशिश करते हैं? रुक जाए, ये यहाँ रुक जाए. और वो river को रोकने की कोशिश जो हम ये जीवन में हमारा जो बहता, ये सारी चीजें बहती हैं. That's why it's change, because a river flowing, not even a single, you know, moment, it's going to be two moments the same. Flowing river means हर पल
0: अलग
1: अलग, हर पल परिवर्तन. तो ये जीवन में ये जो सारी बातें हैं, ये परिवर्तन है. 10 साल पहले मेरे जीवन में जो लोग थे, आज परिवर्तन है. 10 साल पहले जो मेरी पोजिशन थी, आज परिवर्तन है. वी आर नॉट क्वेश्चनिंग गुड और बैड. क्वेश्चन इज, हैज इट रिमेंड कॉन्स्टेंट? नो. तो हम उसको क्यों रोकने की कोशिश करते हैं?
0: यहाँ आपने कहा एक्सेप्टेंस, प्रॉब्लम ये आती है जैसे ही एक्सेप्टेंस कहती हूँ, मेरे जो सारे फियर्स थे मैं उसको एक्सेप्ट करने लग जाती हूँ. कि अच्छा ठीक है, फिर मेरी अपनी पोजीशन तो जाएगी जाएगी, कोई आ गया, मेरे पैसा तो जा ही रहा है. ये जो फियर, ये जो एक्सेप्टेंस है, ये एक्चुअली एक्सेप्टेंस ना लाइक रहकर कई बार, मतलब जैसे ही एक्सेप्टेंस आप कहो कि सिचुएशन की एक्सेप्टेंस, तो उसके साथ के फियर के साथ जो लूज को, चीजों को लूज करने वाला फियर था, उसको एक्सेप्टेंस की बात सोच
1: लेते हैं. तो फिर हमने फियर को एक्सेप्ट किया, सिचुएशन को थोड़ी एक्सेप्ट किया. सिचुएशन को नहीं एक्सेप्ट किया, मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि इस सिचुएशन में डर लगना तो नेचुरल है. हम अपने रिस्पॉन्स को, रिस्पॉन्स को भी नहीं कहेंगे, रिएक्शन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगेन बाय सेइंग कि ये सिचुएशन में ये तो नेचुरल ही है ना. सो वी
0: एक्सेप्ट, ऐसा तो होगा ही, ये होगा, ये होगा, अब चलो मैं एक्सेप्ट, उसको रेजिस्ट नहीं करता हूँ. ठीक है, अब हो गया है ये, तो ठीक है, मेरी नौकरी भी जाएगी, मेरी पोजिशन चली जाएगी.
1: सो दिस इज अ होल सीरीज ऑफ नेगेटिव थॉट्स व्हिच हैज स्टार्टेड. तो ये जो रिवर जो फ्लो कर रहा है, If I try to stop it, it's like एक डैम बिल्ड कर देना, you know, ये यहीं रुक जाए, पानी जैसा आगे नहीं फ्लो करे, ये यहीं कहीं रुक जाए. अब जैसे ही हम उस पर एक डैम बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, तो डैम के दूसरी तरफ क्या क्रिएट होगा? प्रेशर. और ये प्रेशर जो है, दिस आई एम क्रिएटिंग, दैट इज वाई वी से सेल्फ क्रिएटेड. अपना प्रेशर खुद ही क्रिएट किया हुआ है इन्होंने. क्यों क्रिएट किया हुआ है? क्योंकि ये बहती हुई चीजों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं. अब बह रही हैं चीजें, व्हाट कैन आई डू, हाउ डू आई एक्सेप्ट, एंड व्हाई शुड आई एक्सेप्ट. मोस्ट इम्पोर्टेंट इज एक्सेप्ट करना, लेकिन क्यों एक्सेप्ट करना? अगर मुझे पसंद नहीं आ रही है सिचुएशन, तो क्यों एक्सेप्ट करना? हैव यू सीन अ रेस्लिंग मैच? हाँ, तो वो जूडो या सुमो या जो भी वो रेस्लर्स होते हैं, आप कभी भी देखना उनकी जो मैच होता है वो कैसे स्टार्ट होता है. दैट इज चेंज फिलोसफी. दो लोग सामने से आते हैं, First they bow down, right? This is a sign of respect. Then they embrace each other. Kabhi bhi dekhna. Always the match will start like that. Pehle aap bow down karte hain, phir aap embrace karte hain, phir aapka aage shuru hota hai, jo game aapne karni hai. This is basic change philosophy. Ki jab bhi aapke samne wo parivartan aaye, wo situation aaye, pehle aap usko embrace karte hain. दिस जूडो और रेस्लिंग, वॉट डू दे डू? आप पहले एम्ब्रेस करते हो, और एम्ब्रेस करने से आप कैच कर लेते हो कि इसका मोमेंटम क्या है,
0: इसकी ताकत कितनी है,
1: और फिर उस ताकत को मैं कैसे फेस करने वाला हूँ. अगर ये यहाँ से करेंगे ना इसको, तो आई वुडंट नो हाउ टू हैंडल
0: फियर ऑफ अननोन रिमेन्स
1: फियर ऑफ दैट. सो नॉर्मली द चेंज फिलोसफी गोज कि फर्स्ट यू एम्ब्रेस राइट देन यू कैच द मोमेंटम कि इसके अंदर क्या है. लेकिन अगर आप उसको रेजिस्ट करेंगे तो आपको उसका मोमेंटम तो पता ही नहीं चलेगा कि वो किस फ्लो से आ रहा है. और जब तक हम उसके मोमेंटम को कैच नहीं करेंगे तब तक हमें ये नहीं समझ में आएगा कि अब इसको मैंने किस तरह से
0: अपने शत्रु से पहले हाथ मिलाओ उसके बाद उसका जांचो कि कितना है उसमें पोटेंशियल
1: and then see what I can do because finally life is what it's like this only. ना ये जो situations हम बोल रहे हैं ये क्या है, हमारा match ही तो चल रहा है ना सारा दिन इनके अंदर. लेकिन जब हम वो situation को ही
0: बड़ा
1: मान लेते हैं और अपने आप को एकदम छोटा कर लेते हैं, that means one side has said sorry मैं आपके साथ नहीं match खेल सकता, I have already accepted defeat, मेरे जीवन में तो यही लिखा है. तो मतलब क्या किया मैंने, तो उसके साथ ट्राई भी नहीं किया,
0: गिव अप कर,
1: ट्राई ही नहीं किया. सो ऑलवेज एक्सेप्टेंस, एंड एक्सेप्टेंस मींस ये है, दिस इज इट, नाउ व्हाट. आवर प्रॉब्लम इज ऐसा क्यों, ऐसा कैसे. अभी हमारे बोलने से या हमारे उस तरह से सोचने से क्या हो जाता है, जैसे ही वो क्यों क्या कैसे इसमें चले जाते हैं, परमात्मा शिव बाबा हमेशा हमें बताते कि ये जो क क क हर टाइम खड़ा करते हो ना, इसको पहले फुल स्टॉप करो. क्यों क्या कैसे कब कहाँ, तो पूरा माइंड कहाँ किस तरफ चला गया, क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस. एंड देन बाबा ऑलवेज सेज क्वेश्चन मार्क बहुत क्रुकेड मात्रा है, बहुत टेढ़ी है, फुल स्टॉप ऐसा है. नाउ व्हाट, नाउ व्हाट. लेट्स से आप मेरे से अच्छी तरह से बात नहीं कर रहे, छोटी सी सिचुएशन है, आई नो सिचुएशंस आर वेरी बिग, बट लेट्स टेक अ वेरी स्मॉल सिचुएशन. आप मेरे से ठीक से बात नहीं कर रहे, आप मुझे अब्यूज़ भी कर सकते हैं, आप बुरा भला कह रहे हैं, शायद 10 लोग आसपास सुन रहे हैं, आप इंसल्ट कर रहे हैं. नाउ ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा करना चाहिए, इनको यही बात कहनी थी अलग से कह देते, ये कोई बोलने का तरीका है क्या, इस तरह से बात की जाती है. सो हु एम आई ट्राइंग टू कंट्रोल, I'm trying to control you and I'm going into kyun kya kaisa. The next acceptance means haan ji ye is tarah se mere se baat kar rahe hain, ab mera response kya.
0: Insulted,
1: aapse buddhi hataungi tab to buddhi ko apne upar lekar aungi ki ha how am I supposed to face this. Lekin jab to mera man aapke andar hi atka hua hai, आप ऐसे क्यों, आप ऐसे कैसे, आप
0: और आपने मेरी इंसल्ट कर दी, इतने सारे लोगों के सामने कर दी, आपने मुझे ये कह दिया, आपने मुझे ये कह दिया, मुझे ये समझ लिया, मुझे ये समझ, यू नो किसने समझा,
1: आपने किया, आपने किया जो सही है या गलत है, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट बिकॉज़ बाय गोइंग इनटू दैट देयर इज नो रिजल्ट. अगर मैं समझू के ओके यू आई फील आई शुड टेल यू, आई विल टेल यू कि आई डोंट थिंक कि जो आपने मेरे साथ किया वो ठीक, लेकिन वो मैसेज भी आप तक कन्वे करने के लिए पहले मेरी स्टेट ऑफ माइंड कैसे होनी चाहिए. लेकिन अगर मैंने आपको रेजिस्ट किया तो मेरे अंदर आपके प्रति इतनी कहें घृणा भर जाती है, इतनी नफरत भर जाती है कि बैठकर क्लैरिटी से फिर उसको वो
0: नहीं हो पाता.
1: तो इसलिए अगेन आई विल हैव टू कम बैक टू माई सेल्फ. लेकिन आपसे हटकर मतलब सिचुएशन से हटकर अपने तक आने का जो प्रोसेस है वो सिर्फ तब होता है कि मैं पहला वो फुल स्टॉप जो आपने कहा ना फुल स्टॉप लगाना, फुल स्टॉप इज एक्सेप्टेंस. तो जो वो रिवर फ्लो कर रहा है, आई ओनली हैव अ फ्यू ऑप्शंस फॉर दैट. एक तो उसको रोकने की कोशिश करें, प्लीज मत जाओ, यू नो आई ट्राई टू स्टॉप यू, या प्लीज बदल जाओ, प्लीज अच्छे हो जाओ, प्लीज मेरे से ठीक से बात करो. दिस इज वॉट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू स्टॉप द रिवर, कि हम दूसरों को ब्लॉक करते हैं. दूसरा है कई बार ऐसे हो जाता है कि आप जैसे हैं मैं आपके प्रभाव में
0: वैसी होती
1: जाऊं, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हूं. तो देन व्हाट हैपेंड कि रिवर वाज फ्लोइंग, मैं रिवर के साथ ही फ्लो होकर चली गई. जैसे आपने कहा ना एक्सेप्टिंग द पेन, दिस इज फ्लोइंग विद द रिवर. हाँ सिचुएशन खराब है तो मेरा भी खराब होना उसके साथ ये जायज है, दूसरा गुस्सा कर रहा है तो मेरा भी गुस्सा करना जायज है. ये क्या हुआ, flowing with the river.
0: Oh, so you have to continue to stand and let it go.
1: Yeah.
0: I would have said otherwise, ki flow with the river.
1: No, flow with the river is then that means always you getting influenced. फ्लो विद द रिवर मतलब फिर मेरी आइडेंटिटी कुछ भी नहीं हुई ना, मेरे पास फिर भी कोई कंट्रोल नहीं हुआ, सामने रिवर जो जो लेकर आता गया मैं उसके साथ ही बहती गई। आज रिवर इस तरफ जा रहा है, कल उस तरफ जा रहा है, परसों उस तरफ जा रहा है, तो मैं भी उसके साथ
0: और मैं बेचारी अपने आप को कहती गई मजबूर, कॉम्प्रोमाइज सब कुछ करती गई मैं। Oh, so I stand wherever I was standing.
1: And I let the river flow.
0: Oh, yes.
1: Neither stop the river, क्योंकि वो मेरे बस की बात नहीं है. Neither flow with the river, because that's not good for me. I don't know where I will reach.
0: And that's not what I wanted.
1: That's not what I want.
0: You know, it's very important. If I wanted to flow with the river, this was the right direction I was feeling, I should go. Otherwise, I should stay where.
1: So, if I can look at that river flowing, na lekin.
0: हाँ.
1: मुझे ये दिखाई देना चाहिए ना अपने जीवन के अंदर, चाहे वो परिस्थिति है, वो परिस्थिति चाहे लोग हैं, चाहे कुछ भी है, मुझे ये दिखाई देना पड़ेगा कि ये है स्थिति, ये है परिस्थिति।

0: one thought if I keep telling myself every time,
1: I am creative.
0: Day in and day out, every morning, every evening, tell myself every thought, I am the creator, I am the creator, I am the creator, and I have a choice. Har sankalp meri rachna hai, to mere paas choice hai, kaise sankalp create karne hai, kyunki jo sankalp main create karunga, uske baad
1: feeling,
0: bilkul feeling. हमने पहले भी देखा था बट आई थिंक इट्स गुड टू ऑलवेज गो ओवर इट ऑल ओवर अगेन कि जैसे ही हम एक संकल्प क्रिएट करेंगे इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ थॉट लेकिन जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि ऑटोमैटिक जो आपने कहा ऑटोमैटिक हो जाता है दैट इज अ फीलिंग कि संकल्प क्रिएट हुआ और मुझे उसका फीलिंग या उसका अनुभव होना शुरू हो जाता है और जो फीलिंग्स मेरी आपके प्रति परिस्थिति के प्रति या पूरी दुनिया के प्रति जो फीलिंग्स मैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्रिएट करती आई हूँ दैट डेवलप्स माय एटीट्यूड सो एटीट्यूड या कहें वृत्ति जो मेरी है कि दुनिया ऐसी ही है ये तो ऐसे ही है ये एटीट्यूड कैसे बना क्योंकि कई बार मैंने वो थॉट क्रिएट किया बार बार मुझे वो फीलिंग आई आपसे मिलने के बाद या आपके कोई व्यवहार से तो मेरा एटीट्यूड क्रिएट हुआ ये तो ऐसे ही है मुझे पसंद नहीं है तो थॉट फीलिंग और एटीट्यूड और ये जो एटीट्यूड मेरा क्रिएट हो गया उसके बाद आई कम इनटू एक्शन अब हम सिर्फ एक्शन वाली स्टेज को देखते हैं कि मैंने ऐसा बोला या मैंने ऐसा व्यवहार किया हम ये थ्री स्टेजेस को जो इनर प्रोसेस है ये स्किप कर जाते हैं कि ये एक्शन बना कैसे इट वॉज बेस्ड ऑन थॉट फीलिंग एंड एटीट्यूड और फिर जो एक्शन हम बार बार रिपीट करते हैं एक पर्टिकुलर बात करने का तरीका you know, जैसे कई लोगों को आदत है ऊंची आवाज में जोर से बोल दिया या जोर से किसी को ऐसे डांट दिया उनको अगर कभी आप कहो के द सेम थिंग कुड हैव बीन सेड इन अ प्रोबेबली अ डिफरेंट वे दे विल से ओ इट्स माय नेचर बिकॉज दे डोंट इवन रियलाइज नाउ वेदर दिस इज यूजफुल फॉर मी और इट इज डैमेजिंग फॉर मी इट्स माय नेचर एंड नेचर मतलब मैं ऐसा हूँ अब मुझे चेंज होने के लिए नहीं कहना तो ये नेचर कैसे बनी बचपन से थोड़ी ऐसे थे लेकिन कई बार गुस्से से बोला फिर ऊंची आवाज में बोला थोड़े दिन के बाद वो मेरी हैबिट तो जो एक्शन हम बार बार रिपीट करते वो मेरी हैबिट नाउ ऑल योर हैबिट्स पुट टुगेदर इज योर
1: पर्सनालिटी आई रिमेंबर दैट
0: यस ऑफ कोर्स दिस इज अ डीप प्रोसेस व्हिच शुड ऑलवेज बी देयर ऑन द स्क्रीन ऑफ द माइंड कि ये जो मेरी ओवरऑल पर्सनालिटी है दिस इज बिगिनिंग विद माय थॉट मेरा पूरा जो आज व्यक्तित्व है वो मेरी सोच से स्टार्ट होता है और ये व्यक्तित्व ये पर्सनालिटी संबंधों में आता कर्म क्षेत्र पर आता व्यवहार में आता संबंध संपर्क में आता एट एवरी स्टेप आई एम क्रिएटिंग माय डेस्टिनी व्हाई माय डेस्टिनी बिकॉज जो मेरा व्यक्तित्व होगा वैसे मेरा कर्म होगा वैसे मेरा आपसे बात करने का तरीका होगा और जैसा कर्म मैं करूँगी उसी का रिजल्ट मुझे मिलेगा नाउ वी नो दिस आई मीन वी डोंट नीड टू लर्न इट फॉर द न्यू टाइम बचपन से मुझे सिखाया गया कि जैसा कर्म हम करेंगे उसका रिजल्ट हमें मिलेगा और हमारा कर्म किस आधार पर बेस्ड है सोच पर हमें किसी ने ये तो बता दिया कि जैसा कर्म आप करोगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा लेकिन ये नहीं किसी ने बताया कि आपका कर्म आपके सोच से स्टार्ट होता है और फिर किसी ने यही नहीं सिखाया कि राइट तरीका सोचने का क्या है And I was talking to someone and they said, why didn't they teach us how to think? How to think. And then we were just discussing and we said, as a child, we are taught how to talk, how to drink, how to eat, how to walk, but not taught how to think. No one taught us. So, wo apne aap hi develop hota gaya. And for aaj, jab hum usko seekhne ki koshish karte hain, to hume lagta hai, oh, ye to bahut mushkil hai, ye to over a period of time. सेट हो गया बट इट्स नॉट ट्रू आज भी हम स्टार्ट करें तो इट विल चेंज
1: हमारा एक थॉट कि हम थिंकिंग को शुरू करें हमारी
0: ये भी हमारी डेस्टिनी को चेंज कर देगा
1: बिल्कुल और जिस तरह से हमने आज सिचुएशन को देखते हुए किया कि बिंदी लगाने वाली बात थी कि फुल स्टॉप थैंक यू सो मच
0: ओम शांति
1: वंडरफुल सो लेट्स ट्राई टू एक्सपीरियंस इन द रियल सेंस व्हाट इज मेंट बाय पॉजिटिव थिंकिंग सुनते आए हैं पढ़ते आए हैं जैसा कि कह रही है सत्य शिवानी लेकिन इम्प्लीमेंट और अनुभव नहीं कर रहे थे लेट्स ट्राई टू डू दैट अगर कोई समस्या आती है कोई सवाल है आपके पास आपके जीवन में कोई सिचुएशन है जिसका हल आप तलाश रहे हैं साथ मिलकर भी कर सकते हैं आपका स्वागत करते हैं आप हमें फ़ोन पर संपर्क करें

या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555, 0999-744-555। हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org। अब एक लिंक विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही, लेकिन अभी हमें वो एम्पावरमेंट का सोर्स से जुड़ने का तरीका एक बार फिर जानना है। हमें देखना है कि जो भी सिचुएशन है उसमें जैसे हम हैंडल करेंगे उसके लिए हमें ताकत कहाँ से चाहिए, और इसके लिए आपके साथ हम अगली कड़ी में ज़रूर होंगे। फिलहाल आपसे विदा ले रहे हैं, ओम शांति।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट। वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: नमस्कार, आपने एक तहत रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
2: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी। तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म। वन सेकंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर हम आपके साथ हैं। हर रोज यूं बातें करते करते जिंदगी के उन मुद्दों को उठाते जो कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि इनके बिना तो हम जी ही नहीं पाएंगे, यही हमारी जिंदगी की सच्चाई है। उन्हें जब हमने खंगाला, हमने जाना तो एक नई जिंदगी सामने आ रही है, बहुत अच्छा लगता है। आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करते हैं जिसे हम शायद परेशान तो होते हैं लेकिन ये मान लेते हैं कि उसके बिना जिंदगी चल ही नहीं सकती, और वो जिंदगी जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो है एक ऐसा मुद्दा जिसे हम और आप सब वाकिफ हैं, वरी, चिंता करना। चिंता क्या जायज़ है? चिंता चिता समान कहा गया है, लेकिन हम चिंता क्यों करते हैं और क्या उसके बिना हम काम नहीं कर सकते? ऐसी कई बातें हैं, एक बार फिर उसी सिस्टमेटिक तरीके से जो ज्ञान हमें मिला हुआ है उसी ज्ञान को इसमें तिरोहित करते हुए आज चिंता से शुरू से जुड़ी जो बातें हैं वो शुरू करते हैं। और हर बार की तरह हमारे साथ इस पूरे सफर में ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: आज बात हम चिंता से शुरू करते हैं कि चिंता, जैसे कहा भी गया है, चिता समान है, लेकिन फिर भी आज, चलिए मैं आपसे पहले ये पूछती हूँ, क्या है चिंता? व्हाट इज मेंट बाय वरी?
1: वरी बहुत सिंपल है, क्योंकि ये हम सब ने एक्सपीरियंस की है। एक छोटा बच्चा भी सारा दिन वरी चिंता का एक्सपीरियंस करता है। यहाँ पे एक मेंटल एनर्जी का जैसे हमारे पास स्टॉक है, सवेरे जब हम उठते हैं वी फील वेरी चार्ज्ड, वेरी लाइट, क्योंकि रेस्ट के बाद पूरा चार्ज हो चुका है। लेकिन थ्रू आउट द डे इस मेंटल एनर्जी को किस तरह से यूज करना है, ये मेरे हाथ में है। और मेंटल एनर्जी यूज कैसे हो रही है? एक एक थॉट, एक एक थॉट से। अब जब हम किसी बात की चिंता को पकड़ लेते हैं तो हमारे कितनी थॉट्स क्रिएट होती हैं, और वो बात हो या ना हो, हम बहुत सारी एनर्जी यूज कर देते हैं, मिस यूज करते हैं एक्चुअली, बिकॉज इट्स गोइंग ऑन द नेगेटिव साइड, एंड एट द एंड ऑफ द डे वी फील वेरी हैवी, डिप्लीटेड विदाउट रियली डूइंग एनीथिंग।
0: कोई क्रिएटिव तो हुआ नहीं, कुछ कर तो
1: नहीं, क्योंकि क्रिएटिव होगा भी नहीं, क्योंकि जब हम चिंता करते हैं तो ये हमारी कॉन्शियसनेस की क्रिएटिविटी को तो पूरी तरह से खत्म कर देता है। क्योंकि जब हम उस डायरेक्शन में सोचना शुरू कर देते हैं तो कुछ अच्छा सोचना, कुछ नया सोचना, वो तो इट्स मोर और लेस इम्पॉसिबल, बिकॉज द माइंड इज जस्ट गोइंग ऑन वेरी फास्ट इन दैट डायरेक्शन। तो इट इज द ग्रेटेस्ट मिस यूज ऑफ आर मेंटल एनर्जी, एंड आई नीड टू नो दैट फॉर माई सेल्फ कि दिस इज अ मिस यूज ऑफ अ पावर विच आई हैव। क्योंकि हर एक के पास पावर है, अगर हर एक को रियलाइजेशन हो जाए तो उसको वो सही ढंग से यूज कर सकता है। एंग्जाइटी है जो हम क्रिएट कर देते हैं बेस्ड ऑन अ फिक्शनल थिंग व्हिच हैज नॉट हैपेंड,
0: व्हिच हैज नॉट इवन हैपेंड, क्या होगा क्या नहीं। अच्छा, यहाँ एक बहुत डिफरेंट सी बात यह है कि हम जब गुस्से की बात करते हैं, हम जब हर्ट की बात करते हैं, जब हम बाकी एंग्जाइटी की बात करते हैं, स्ट्रेस की बात करते हैं, हमें से हर कोई ये समझता है कि वो गलत है। कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स हैं जिन पे हमें काम करना चाहिए, और अगर कोई इस पे बात करता है तो जैसे कि हाँ ठीक है, हम सुनते हैं, सोचते हैं। वरी को हम सोचते हैं कि यही तो कंसर्न है, यू नो, हम मैं वरी नहीं करूँगा, मैं उसके बारे में, आई एम वरीड अबाउट माई चाइल्ड, यू नो, कि व्हाट विल हैपन टू हिम। मतलब बच्चे को लेके तो वरी मदर्स के साथ का जो एसोसिएशन है, आई एम वरिड वो खाना नहीं खाती, आई एम वरिड कि वो पढ़ाई नहीं करता, आई एम वरिड उसकी शादी होगी या नहीं होगी, कब होगी, कैसे होगी, और ये मेरी ताकत बन जाती है।
1: क्योंकि उसको हमें लगता है कि वो सही है, हमें लगता है कि वरी करना अच्छी बात है। ये हमारा बहुत डीप रूटेड बिलीफ सिस्टम है कि वरी इज कंसर्न एंड इट इज गुड टू वरी, एंड इफ यू डोंट वरी that means you don't care, you know, and that's a very deep thing. So and then what happens is

0: वी कीप ऑन टेलिंग ईच अदर मैं कितना वरिड था आपके लिए ट्राइंग टू टेल
1: आपने मुझे फोन वापस क्यों नहीं किया
0: आई वाज वरिड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल द पर्सन इज आई केयर फॉर यू बट कहीं हमें ये चेक करना पड़ेगा कि केयरिंग और वरी या कंसर्न और वरी इसमें क्या फर्क होगा. वरी में चिंता में नॉर्मली क्या होता है कि कुछ ना कुछ पास्ट की बातें
1: हाँ जो बिलीफ
0: पास्ट की कोई ना कोई एक्सपीरियंस पास्ट का कोई हादसा पास्ट की कोई बात हम उसको ले लेते हैं क्योंकि वो सारा कुछ तो स्टोर्ड है यहाँ पे. अभी प्रेजेंट में सब ठीक है लेकिन हम वो पास्ट की बात को लेकर फ्यूचर में प्रोजेक्ट करना शुरू कर देते हैं कहीं ऐसा ना हो जाए कहीं ऐसा हो गया तो यू नो ये नॉर्मली चिंता वो होती है जो एक्चुअली कभी होती नहीं है. वो चीज वो बात कभी नहीं होगी.
1: जीना शुरू कर देते हो आप उन सारी चीजों
0: बट वो एक्चुअली कभी भी नहीं होते हैं. वो मटेरियलाइज नहीं होते हैं. उनको हम यहाँ मटेरियलाइज कर लेते हैं. कोई ना कोई हर्ट जो हमने अंदर पकड़ी हुई है उसको हम उठाकर और फिर से उसको निकाल के रिवाइव करके कहानियां बड़ी बड़ी उसके साथ लेकर अंदर बनाते रहते हैं. एंड वी कीप ऑन क्रिएटिंग दैट सेम पेन अगेन एंड अगेन एंड अगेन.
1: व्हाट आई वांट टू आस्क यू इज कि जिस दिन हम जब हमें समझें कि वरी है और वो होती नहीं है मटेरियलाइज नहीं हुई तो हाउ टू यू नो एक्चुअली
0: सेपरेट इट आउट. सबसे पहली बात तो उस बिलीफ को चेक करना पड़ेगा कि इट्स गुड टू वरी. चिंता करना अच्छी बात है. जब एक बच्चा लेट पहुंचता है घर द फर्स्ट थिंग द पेरेंट विल से इज आपने फोन क्यों नहीं किया या आपने बताया क्यों नहीं आपको पता नहीं मुझे आपकी चिंता होती है. बच्चा सामने से कहेगा आप क्यों इतनी चिंता करते हो. और अगर बच्चे ने मुड़कर ये कह दिया कि आप क्यों इतनी चिंता करते हो द पेरेंट फील्स थ्रेटेंड कि यू डोंट नो दैट आई केयर फॉर यू. मतलब मैं क्यों चिंता नहीं करूं आई केयर फॉर यू. तो बच्चे ने क्या सीखा
1: कि caring means worrying.
0: Caring means worrying and it is good to worry. मतलब मेरे parents तो इस time सही चीज कर रहे थे ना. See हर एक बच्चा हर एक belief system parents से learn कर रहा है या teachers से learn कर रहा है. तो जब parent ने उसके सामने कहा don't you know I care for you so obviously I had to worry. तो मतलब caring is equal to worry and worry is good. I have to remember that. Mostly जो worry है वो उस व्यक्ति के बारे में कम और अपने बारे में ज्यादा होता है. इट इज वेरी सेल्फिश मोटिवेटेड एक्चुअली क्योंकि इट्स मोर अबाउट मैं कैसा फील करूंगी अगर आपके साथ कुछ गलत हो गया तो. और वो गलत का सीन क्रिएट कर करके मैं वो ऑलरेडी फील करना अभी शुरू कर देती हूँ. जैसे चिंता चिता के समाने कहते हैं. क्यों? क्योंकि चिंता में हम चिता तक चले जाते हैं.
1: Yes, you know, हमारा
0: imagination. तो वो हुआ तो नहीं ना एक्चुअली. अगर आप लेट हो घर नहीं पहुंचे हो मैं चिता तक जा सकती हूँ ना.
1: बिल्कुल आप जाते ही वहीं पे हो.
0: जाते ही वहां पे.
1: कुछ हुआ है कुछ हुआ
0: क्यों जा रहे हैं क्योंकि मोर द फियर इज कि हाउ विल आई फील इफ समथिंग बैड हैपेंस टू यू. माय फीलिंग एंड I already start feeling that. अगर ऐसा हुआ तो अगर accident हो गया ज्यादा कुछ लग गया तो क्या. और अगर
1: और मैंने कई लोगों से मेरी बात हुई है तो वो यही कहते हैं कि मैं numb हो जाता हूँ. Worry makes me
0: paralyzed हो जाता
1: है. हाँ बिल्कुल.
0: या mind बिल्कुल paralyzed हो जाता है.
1: कुछ और करने लायक नहीं रहता. मतलब वो इतना घेर लेती है. It means it is I think one of the most
0: क्योंकि stress जो है वो एक chronic stage पे जैसे develop होता उसकी beginning क्या है.
1: चिंता.
0: अगर चिंता की एक क्योंकि चिंता एक हैबिट सी बन जाती है और स्पेशली क्योंकि हमने अपने आप को बताया कि दिस इज गुड तो वो हम उसको बहुत नेचुरल तरह से करते ही रहते हैं. हाँ. उसको करते रहते हैं और जब वो एक नेगेटिव डायरेक्शन में माइंड को जाने की आदत पड़ जाती है तब वो माइंड बिल्कुल कमजोर हो जाता है. और अब ये कमजोर मन पर अगर कोई प्रेशर पड़ जाए यू नो जैसे कि मेरी नौकरी चली जाए किसी की तबीयत खराब हो जाए घर में कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसके लिए हम सोचते थे सिचुएशन की वजह से स्ट्रेस है या इवन मैं ट्रैफिक जाम में अटक गई और टाइम पे नहीं पहुंच रही ये एक प्रेशर है जो बाहर से आता है. लेकिन मन अगर शक्तिशाली होगा तो वो उस प्रेशर को क्रॉस कर लेगा. लेकिन चिंता कर कर करके मेरा मन इतना कमजोर हो गया है कि थोड़ा सा भी प्रेशर कोप करने की.
1: सचिवानी आपने बात की ट्रैफिक जाम की तो आज ही सुबह लाइव मेरा प्रोग्राम था 20 मिनट रह गए और इतनी बड़ी गाड़ी जो थी वो सामने थी नहीं हिल रही थी. अगेन वो जो हमारी जो टेंडेंसी बन चुकी है कि क्या होगा, यू नो मैं गाड़ी से ऊपर उठ चुकी थी कि अब क्या होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, सडनली आई रिमेंबर्ड कि इट विल नॉट हेल्प, इट वॉन्ट हेल्प, इट्स ओके, आई जस्ट सेट बैक.
0: क्योंकि इम्पोर्टेंट इज कि आप एक प्रोग्राम के लिए जा रहे हो, मोर इम्पोर्टेंट इज कि आपके प्रोग्राम में आप कैसे फील करो, आप वो एनर्जी वो वाइब्रेशन सब तक पहुंचाने वाले हो. गाड़ी तो हिल जाएगी लेकिन इन द प्रोसेस मेरा पूरा
1: मैं पूरा पूरा
0: ब्रेन्ड आउट हो जाऊंगी. तो पहुंच तो जाएंगे टाइम पर लेकिन हालत क्या होगी. नाउ इफ यू थिंक ऑफ इट, वर्स्ट केस क्या है? वर्स्ट केस है कि नहीं पहुंच पाएंगे. लेकिन ये सोचना कि चिंता करने से पहुंच पाएंगे
1: नहीं हो सकता. ये
0: वी हैव टू रियलाइज द फ्यूटिलिटी ऑफ व्हाट वी आर डूइंग. अगर मेरे चिंता करने से वो गाड़ी हिल सकती है या मैं ट्रैफिक के ऊपर जंप करके आगे जा सकती हूँ, फिर चिंता करें. पर चिंता करने से क्या, चिंता करने से सिर्फ मेरी मन की स्थिति डिस्टर्ब और पूरा फिनिश हो जाते हैं अंदर से. ट्रैफिक तो चल ही जाएगा थोड़े टाइम के बाद,
1: लेकिन
0: अंदर जाम हो जाता है, बाहर वाला ठीक हो जाता है.
1: लेकिन बात ये आ जाती है कि आदत इतनी गहरी है, हमने इस पे काम नहीं किया, हमने एंगर पे काम कर लिया, स्ट्रेस पे काम कर लिया, इसको हम इतना सहज इतना नेचुरल लेते हैं कि अच्छा इतनी देर तक चिंता हुई कोई बात नहीं. बट आई वॉन्ट टू आस्क यू वॉट एक्चुअली टू डू, जो हम ये इतना चिंता इतना ज्यादा हम अपने साथ कर लेते हैं.
0: नॉर्मली चिंता में हम क्या करते हैं, हम एक फ्यूचर क्रिएट कर लेते हैं, एक इमेजिन्ड फ्यूचर. जैसे आपने कहा कि मैं टाइम पर नहीं पहुंच रही थी, तो तुरंत एक सीन आ जाएगा सामने, अगर मैं नहीं पहुंची तो, यू नो, एंड देन मैं बहुत सारी उसकी सीरीज ऑफ थॉट्स, मेरा प्रोग्राम ये हो जाएगा, डायरेक्टर क्या बोलेगा, व्यूअर्स क्या बोलेंगे, मतलब अ होल थिंग, एंड एक्चुअली उनमें से कुछ भी नहीं हुआ. लेकिन उस समय वो फ्यूचर क्रिएट करके, तो हमें एक इमेजिन्ड फ्यूचर, एक कल्पना, तो एक काल्पनिक भविष्य बना देते हैं, उस एक चित्र निर्माण कर लेते हैं और इस चित्र को देख देख कर डरते रहते हैं. ऐसा हुआ तो, ऐसा हुआ तो,
1: और उसके आगे भी बियॉन्ड चले जाते हैं, बहुत ज्यादा
0: फ्यूचर ना, अगेन फ्यूचर, इट्स नॉट नाउ, इट्स नॉट रियलिटी. हम बैठे हैं कार में तो क्या होता है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग के इस ट्रैफिक जाम का क्या करना है, हम ज्यादा ये सोच रहे हैं
1: कि वहां क्या हो जाएगा,
0: वहां क्या हो जाएगा. तो वरी में सबसे खतरनाक बात जो हो जाती है, चिंता मुझे वर्तमान से डिस्कनेक्ट कर देती है और मुझे भविष्य में ले जाती है. तो जहां मेरी अभी जरूरत है, सपोज किसी की तबीयत ठीक नहीं है, मेरी अभी जरूरत है वहां पे प्रेजेंट, मैं थोड़ा सा आगे चले जाती हूँ. नहीं ठीक हुआ तो क्या होगा, कैसे होगा, नहीं हुआ डॉक्टर के, मतलब व्हाटएवर, अ लॉन्ग सीरीज. तो मैं या तो यहाँ हो सकती हूँ अभी,
1: और यहाँ मैं हो के 100% तो दूं, एक्चुअली हम नहीं दे पाते 100%,
0: नहीं दे पाते क्योंकि माइंड यहाँ नहीं है. वरी इज द मोस्ट इजिएस्ट वे ऑफ अवॉइडिंग द प्रेजेंट, बिकॉज द प्रेजेंट इज वेरी चैलेंजिंग.
1: Okay, so it's like moving away from the present.
0: Disconnecting from reality. बहुत लोग हैं जो एक ये एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, जो आप रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और आप एक काल्पनिक दुनिया में रहना शुरू कर देते हैं. जैसे अभी ये प्रेजेंट क्षण है, आप नहीं पहुंचे हो टाइम पे, लेकिन हम सोचेंगे ऐसा हुआ तो, अगर इनको कुछ हो गया तो मेरी जीवन आगे कैसी होगी, आगे क्या होगा. तो हम अभी के क्षण से हटकर भविष्य के क्षण में हट गए. Everything is in the now, you know, living in the present moment. अभी के moment में चाहिए शांति, अभी के moment में चाहिए प्यार, लेकिन मैं अभी के moment से disconnect करके अगर आगे चले गए तो वहां तो कुछ है ही नहीं, वो तो वैसे भी खाली.
1: अभी के moment में stability भी कहीं ना कहीं चाहिए.
0: Stability, stability से experience होगा, लेकिन मैं create नहीं कर पा रही stability क्योंकि मुझे situation challenging लग रही है. Need है कि मैं ट्रैफिक जाम में अटकी हुई हूँ, तो आई हैव टू क्रिएट स्टेबिलिटी, इट्स ओके. लेकिन मैं स्टेबिलिटी नहीं क्रिएट कर पाती, तो अब क्या करूँ,
1: भाग जाती हूँ. इट्स एक्चुअली शर्किंग अवे,
0: यस, मूविंग अवे फ्रॉम द प्रेजेंट. अगेन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट जाना कि मैं अभी के क्षण में स्टेबल कैसे रहूं, नहीं कर सकती तो मैं आगे का सोचने लग जाती हूँ.
1: अच्छा, अनदर थिंग इसके साथ चिंता से जुड़ी हुई एक और जो बहुत स्ट्रॉन्ग रॉन्ग बिलीफ है, इवन माय डॉटर यूज्ड टू हैव इट, इज अगर मैं चिंता नहीं करूंगी तो मैं पढ़ूंगी नहीं, अगर मैं चिंता नहीं करूंगी तो मेरे मार्क्स नहीं आएंगे, आई हैव टू स्टार्ट थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग. सो अगेन दिस इज समथिंग,
0: हम रियलाइज नहीं कर रहे कि पढ़ना है लेट्स से, तो पढ़ने के लिए कितनी पावर चाहिए, यहाँ क्रिएटिव पावर कितनी चाहिए. चिंता करने से हम वो पावर को सारा मिस यूज कर रहे हैं. क्या हम अटेंशन रखें कि मुझे पढ़ना है तो हम पढ़ नहीं पाए?
1: नहीं, हम तो इमेजिनेशन में चले अपने.
0: अगर मैं नहीं पास हुई तो, अगर मेरे इतने मार्क्स नहीं आए तो, यू सी हम पढ़ रहे हैं, आवश्यकता है कि फुल उस पर कॉन्सेंट्रेट करें. अगर मेरे इतने परसेंटेज नहीं आए तो मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा. अगर मुझे एडमिशन नहीं मिला तो आगे क्या होगा, मेरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, आई एम ऑलरेडी देयर.
1: और फिर आगे क्या होगा, फिर मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे लोग, फिर मेरे आगे परसेंटेज कम हो जाएगी, फिर मेरी पोजीशन नहीं रहेगी.
0: अब क्या हो जाता है, ये करने की वजह से हम पढ़ नहीं रहे अभी.
1: बिल्कुल, टाइम वेस्ट हो गया आपका.
0: और हम पढ़ नहीं रहे तो जो हम सोच रहे हैं वो एक्चुअली हो जाता है. तो हम अपना फ्यूचर जो कल्पना से अपने आप क्रिएट करते हैं अभी, उसी को फिर हम रियलिटी भी बना देते हैं.
1: और फिर हम कहते हैं कि देखा, जो मैंने सोचा था वही हुआ.
0: और वो तो सच है कि जो हम सोचेंगे वही होगा, क्योंकि थॉट क्रिएट्स माय डेस्टिनी. तो अगर हम उस तरह की थॉट्स क्रिएट करते जाएंगे, पढ़ना बंद कर देंगे, पढ़ाई में पूरी कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं होगी, पढ़ रहे हैं फिर भी नहीं पढ़ रहे,
1: पढ़ ही नहीं पा रहे ना,
0: पढ़ नहीं पा रहे. तो ये कितना रॉन्ग बिलीफ है. और ये पेरेंट्स भी बच्चों के साथ करते हैं कि तुम्हें टेंशन होनी चाहिए पढ़ाई की.
1: तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं है, यू नॉट टेंस्ड. अच्छा, इन अनदर अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ विच पीपल हैव स्पेशली विद मदर्स, लोग ये कहते हैं कि उसके माँ को तो चिंता ही नहीं है, शी इज नॉट बॉदर्ड कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं.
0: कंसर्न एंड केयर एंड वरी, इसमें थोड़ा सा अंतर है. कंसर्न केयर ये लव है, पॉजिटिव है, वरी ये फियर है. तो दोनों में फर्क है. एंड लव एंड फियर
1: cannot go together.
0: हम समझते थे कि प्यार है तो डर लगता है मुझे कि इनको कुछ ना हो जाए. बट लव एंड फियर, क्योंकि लव इज पॉजिटिव फीलिंग एंड फियर इज नेगेटिव इमोशन.
1: एंड आई थिंक समवेयर यहाँ एक और बात जुड़ जाती है कि जब फियर है तो वो अपने से जुड़ा हुआ है, देन वी आर सेल्फिश
0: एंड लव इज टू गिव. लेकिन जब मैं अपने बारे में सोचना बंद करूँ तब तो आपके बारे में सोचो. मेरी ज्यादा फीलिंग जो ये है कि अगर आपका कुछ हो जाए तो मेरा क्या होगा. तो मैं वो फीलिंग या मैं कैसा फील करूंगी अगर आपका कुछ हो जाए. इट्स नॉट ऑल्सो कि मेरा क्या होगा, बट मुझे बुरा लगेगा या मैं उदास हो जाऊंगी, तो वो भी तो मेरी फीलिंग है. तो वो मेरी फीलिंग क्या होगी अगर आपको कुछ हो जाए. तो मैं अपने बारे में इतना सोच रही हूँ कि मेरे लिए आपके बारे में सोचना तो पॉसिबल नहीं है. और अगर मुझे अपने लिए कोई डर नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर मेरी मन की स्थिति आप पर नहीं डिपेंडेंट है, मेरे अपने हाथ में, तो मुझे कोई ये बात का डर नहीं है कि अगर आपको कुछ हो जाए तो मुझे कैसा फील होगा. बिकॉज आई नो कि माई स्टेट ऑफ माइंड इज इन माई कंट्रोल. तो अपनी इनसिक्योरिटी खत्म हो गई. अब अपना समेटा काम तब तो आपकी तरफ ध्यान दिया. अब अगर आप दर्द में, आई कैन गिव यू लव, आई कैन गिव यू केयर. बिकॉज केयरिंग इज पॉजिटिव एनर्जी एंड वरी इज नेगेटिव. तो एक्चुअली दोनों को मिक्स करना तो बहुत दूर की बात है. दोनों बिल्कुल पॉजिटिव है
1: एंड वंडरफुल. यू नो वेयर वी से दैट यू, जब कहा जाता है कि वो वरी नहीं करती, वो सेल्फिश है, इट्स अदर वे अराउंड. यू नो
0: कंसर्न होना चाहिए ना, एब्सोल्युटली केयर होना चाहिए, लेकिन दर्द नहीं. क्योंकि दर्द से फिर आप दर्द दूसरे को दे भी रहे हैं ना, क्योंकि आप जो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं वो दूसरे तक रीच हो रही है. तो जब भी इस तरह से चिंता के थॉट्स चले, तो एक होता है हम उसको चेक नहीं करते, तो वो एक चलते ही जाते हैं. नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई बात होती है और आपको किसी बात की चिंता होती है, मेक अ जेन्युइन एफर्ट, स्टॉप एंड टेल योरसेल्फ, ये जो मैं सोच रही हूँ ये कभी नहीं होने वाला है. दिस स्टोरी इज नेवर गोइंग टू हैपन बिकॉज इट्स अ स्टोरी आई क्रिएट. दिस स्टोरी इज नेवर गोइंग टू हैपन. अगर हमें इतना याद आ जाए ना उस टाइम पे कि रुक कर अपने, लेट्स से कि आज मैं आपसे मिलती हूँ और आप थोड़ा सा ठीक से मेरे से नहीं बात करते. हमेशा तो ठीक से बात करते हैं, अब मेरा शुरू हो जाता है, आज ठीक से नहीं बात किया, ये नाराज है, या अब ये मेरी तरफ नहीं ध्यान दे रहे, अब इनका काम पूरा हो गया तो ये अब मेरे से बात भी नहीं कर रहे हैं, या मैंने ऐसा क्या कह दिया जिनसे इनको बुरा लग गया. नथिंग ऑफ दिस इज ट्रू. मे बी यू वर जस्ट बिजी समवेयर, या आपका माइंड किसी और चीज में ऑक्यूपाइड था, लेकिन मैंने पूरी कहानी बनाई.
1: यस, और हम उसमें जीते. ओ, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में इट हैपेंस.
0: पूरी पूरी कहानी बनती है, पूरा ड्रामा का स्क्रिप्ट हम लिख देते हैं बैठ के. शायद पता नहीं इनकी दोस्ती किसी और के साथ होगी, अब ये मुझे इग्नोर कर रहे हैं, या ये कितने इनसेंसिटिव हो गए, अपने बारे में ही सोच रहे हैं, मेरे बारे में सोच ही नहीं रहे. आई कैन जस्ट गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड फॉर आवर्स, फॉर डेज. एंड नाउ इफ आई कैन जस्ट टेल माई सेल्फ, यू नो, मीन दिस होल thing is going on, stop, this is not true. ये सच नहीं है, ये तुम अपने आप क्रिएट कर रहे हो, वो इटसेल्फ द माइंड विल से ओके वेक अप, इट्स लाइक वेक अप, दिस इज नॉट ट्रू.
1: और वो इमेजिनेशन कई बार कल्पना जो है वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वही हम सच मान लेते हैं, एंड डेफिनेटली वो फिर सच हो जाता है,
0: क्योंकि फिर हम वो एनर्जी भेजना शुरू कर देते हैं ना. अब मैं अगर सोचना शुरू कर दूं कि आप बहुत इनसेंसिटिव हो, आप मेरे बारे में सोचते ही नहीं, या आजकल आप ठीक से बात नहीं करते, तो तुरंत मेरा व्यवहार आपकी तरफ वो चेंज हो जाएगा. अब जैसे ही मेरा व्यवहार चेंज हो गया, मेरी एनर्जी आपसे की तरफ जाने वाली चेंज हो गई, तो आप चेंज हो ही जाओगे, और फिर मैं बोलूंगी मैंने करेक्ट ही सोचा था, सच में ये चेंज हो गया. What we didn't understand is I created the thought, I changed, transmitted that thought, and now what I'm getting is a result of that. Now this is why most of the people get confused ki main to hu achhi lekin mere sath matlab ek to hai ki main hu achhi expecting ki aap bhi mere sath acha karo, thoda dusre ko time lag sakta in giving the same energy, but maine kyun apni visheshta ko chhod diya, kyun ab main thi achhi matlab I was giving positive energy, now I'm giving pain. Because the minute I say, लेकिन आप अच्छे नहीं हो, मैं तो हूँ अच्छी, लेकिन आप अच्छे नहीं हो, means what? Means I don't like you. I don't like the way you are now. So I'm giving you negative energy. And now I'm giving you negative energy, expecting that you will give me
1: positive energy, which can never happen.
0: Which can never happen.
1: Negative will actually bring negativity, which we are all. सबसे
0: पहले हाँ, तो सबसे पहले जब ये चल रहा होगा ना, और ये आज के दिन ही try कर लेना कि कोई ऐसा cycle चल रहा है, चल रहा है. Stop. And just it's like wake up. ये नहीं होने वाला. You know, कई बार कुछ लोग अपनी चिंता को express कर रहे होते हैं, बोलते जाएंगे अगर हुआ तो, अगर तो कोई सामने वाला सुनने वाला बोलता है एक मिनट ऐसा कुछ हुआ नहीं है लेकिन, and then they'll say हाँ okay maybe it's not going to happen. So I need to wake myself up, shake myself up कि ये एक कल्पना है, I am imagining it. Second stage is कि अगर suppose situations आपको signal कर रही हैं कि नहीं जिस बारे में आप सोच रहे हो वो एक्चुअली होने वाला है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू लूज माय जॉब, मेरी नौकरी जाने वाली है, तो मुझे चिंता कि मेरी नौकरी जाने वाली है, सिचुएशंस मुझे दिखा रही हैं कि मेरी नौकरी जाने वाली है. अब दो ऑप्शन है, जाने वाली है, जाने वाली है, क्या होगा, कैसे होगा, उससे कोई क्रिएटिव एनर्जी तो होगी नहीं. अगर आप 100% कन्विंस्ड है, नॉट इमेजिनेशन, नॉट क्रिएटिंग पिक्चर लाइक दैट, लेकिन वो संपूर्ण सत्य है आपके लिए, जस्ट गो नाउ वन स्टेप आगे कि अगर चली जाती है तो व्हाट एम आई गोइंग टू डू नेक्स्ट, स्टार्ट द कंस्ट्रक्टिव वर्क इंस्टेड ऑफ अगर गई तो क्या, अगर गई तो क्या. यहाँ पे सिर्फ एक थॉट क्रिएट करे, अगर चली जाती है तो व्हाट नेक्स्ट एम आई गोइंग टू डू, एंड वो सीन को देखते हुए उस सीन में अपने आप को देखें कि आप बहुत स्टेबिलिटी से उस सीन के साथ चल रहे हैं. And this can be even to the extent कि अगर मेरे परिवार का कोई सदस्य जाने वाला है, क्योंकि actually truth ये है कि irrespective of whatever happens, life is still going on. Even if I come to know कि मेरे family का बहुत close member is going to go, so what?
1: Start imagining your life.
0: You know, look at your life, because if you already know about it, look at your life and prepare yourself. This is a fact. This is going to happen.
1: बीमारी, especially ये जो बीमारी जहाँ पे वो व्यक्ति जाने वाला है, उसके साथ जो व्यक्ति होता है, वो तो I think वो वैसे ही चला जाता है, क्योंकि वो continuous चिंता में ये रहता है कि ये चले गए तो क्या हो, क्या होगा फिर?
0: मैं कैसा फील करूँगा? तो अगर मैं अपनी फीलिंग को पहले से ही प्रिपेयर कर दूँ कि ये एक रियालिटी है जो मेरे साथ होने वाली है, एंड लुक एट मायसेल्फ कि मुझे फिर भी अपनी लाइफ को, and actually see yourself doing that because it's not difficult.
1: हाँ, so again you know हमारी जो tendency है future देखने की या scenario create करने की,
0: तो उसको एक positive वाला scenario create
1: that. Oh wonderful, law of attraction again comes here.
0: क्योंकि जो scenario आप create करेंगे वो आपके लिए सत्य होता जाएगा. तीसरी बात, जहाँ care और worry की confusion आ रही हो, तो साक्षी होकर एक बार उस scene को देखें और देखें कि ये जो मैं अभी कर रहा हूँ, ask yourself only, not anybody else, is this worry or care? I know the answer.
1: Yeah,
0: I will get the answer.
1: Uncomfortableness है जहाँ, वहाँ worry है.
0: पेन है, fear है, वो worry है, और जहाँ कोई डर नहीं है, सिर्फ देना है, वहाँ care है. तो आपको immediately पता चल जाएगा कि most of the time care नहीं होता है, most of the time worry होता है. अब ये है कि अगर आप बीमार हैं या आपके साथ कोई problem आ गई है, important है आपको इस time positive energy चाहिए. But I send you negative. Dar, I create fear for you. So what happens? You are in pain, I give you more pain. And we call that care. I care for you, so I'm giving you negative energy. If I care for you, I have to give you powerful, empowering love. And usme fear nahi hoga. To kabhi bhi is tarah se chal raha ho, nahi, ye to care hai, ye to concern hai. Stop and check. And immediately you will know.
1: Definitely.
0: Immediately aapko pata chal jayega.
1: Shivani, ye jo puri baat cheet humne worry ko leke ki, jisko hum actually ignore hi karte rehte hain, because wo chalta hi rehta hai, worry to zindagi ka ek hissa ban jati hai, wo kahin na kahin जो इमेजिनेशन की बात की है उसे अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि ह्यूमन माइंड
0: जब भी हाँ जब भी इस तरह से पिक्चर सामने आए, स्टॉप करके पिक्चर को
1: बदल दो,
0: चेंज कर,
1: एंड देन अगेन विद दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल वर्क एंड यू विल गेट द पॉजिटिव पिक्चर इन योर लाइफ.
0: इट्स वेरी इजी टू गेट रिड ऑफ वरी, इट्स वेरी इजी, जस्ट स्टॉप एंड पॉज एंड इट विल गेट डन.
1: इन फैक्ट अगर हम देखें तो हर चीज से निकल रहा है, एक्चुअली इतना मुश्किल है नहीं, जस्ट वन माइंडसेट.
0: क्यों वरी से निकलना क्यों इजी है? क्योंकि ये इनिशियल स्टेज है बीमारी के, इसलिए बहुत इजी है. जैसे सिर्फ 99-100 तक ही बुखार पहुंचा हो तो उसको नॉर्मल पे लाना कितना इजी है, थोड़ी देर में हो जाएगा. लेकिन जब वो 105 तक चला जाता है, फिर उसको तो वो स्ट्रेस, डिप्रेशन, यू नो, एंग्जाइटी, दिस इज वे अहेड. अगर हम उसको वरी की स्टेज पे फिनिश कर देंगे तो आगे कोई बीमारी नहीं.
1: हाँ, अभी वो थॉट से ना सर्कमस्टेंसेस की तरफ कन्वर्ट नहीं हुए होते हैं तभी अगर हम बदलते हैं. तो शिवानी, इस पूरी बातचीत के लिए, जिस तरह से आज आपने वरी के उस एस्पेक्ट को दिखाया कि हम एक इमेजिन करते हैं और वही इमेजिनेशन को हम सच मानने लग जाते हैं, तो वो पॉज लेने की जरूरत है और फिर आगे बढ़ने की. आपका बहुत बहुत शुक्रिया.
0: ओम शांति.
1: ओम शांति. अभी तक ये मानते आ रहे थे हम कि वरी या चिंता जो है वो चिता समान है, क्योंकि चिंता के दौरान हम चिता तक पहुंच सकते हैं. तो फिर आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने हाथ में, हर बार की तरह जिस सशक्तिकरण की बात करते हैं, वो अपने हाथ में लें और तय करें कि हम क्या चाहते हैं. अगर हम इमेजिन भी करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा माइंड है, ह्यूमन माइंड इतना फर्टाइल है, ज़रूर इमेजिन करता है, लेट्स ऑलवेज चेक कि हम पॉजिटिविटी को ही इमेजिन करें. और एक और बात जो आज बहुत अच्छी हमें पता चली है कि चिंता से मुक्ति बहुत आसान है, पहला स्टेप है, बहुत आसानी से किया जा सकता है, सिर्फ एक माइंडसेट अवे है. अगर आपके पास कोई बात है, कोई सवाल है जो आप हमसे जानना चाहते हैं, हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, हर बार की तरह आप हमें फ़ोन कर सकते हैं या फिर ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं. हमारे फ़ोन नंबर्स है 9999 3 4 4 6 6 9 8 7 3 6 6 5 5 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. आपको बता दें कि ये जो पूरा हमारा कार्यक्रम है, जो पूरी श्रृंखला है, इसमें आपके ढेरों कॉल्स हमारे पास आते हैं, बहुत से ईमेल्स आते हैं. पर्टिकुलर ईमेल्स को हम शायद नहीं इंक्लूड कर पाते, लेकिन आपको बताएं कि पूरा जो प्रोग्राम होता है वो उसी पर बेस होता है. तो फिर अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज आपसे इजाज़त देते हैं, लेकिन आने वाली घड़ियों में कुछ और ख़ास मुद्दों पर बात करेंगे. दीजिए इजाज़त. ओम शांति.

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। माई एनर्जी इज फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। इट्स ओनली अ लाइफस्टाइल चेंज। दीज आर लाइफस्टाइल चेंजेस। एनर्जी लाइफ है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ।
3: रेडियो मधुबन 107.

0: ओम शांति। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। और आशा करूंगा आपको बहुत ही अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है एवरी सैटरडे हम लोग इस प्रोग्राम में देते हैं, जीवन विकास इस प्रोग्राम में, जहां पर हम लोग अपने यूथ को टारगेट करते हैं कि वो अपने करियर को कैसे चूज करें, या फिर उनकी हॉबीज है या उनकी जो अलग तरह के आर्ट है उनके अंदर, तो उन सभी को कैसे शेप करें। तो एक्सपर्ट से जब हम लोग बात करते हैं तो निश्चित तौर पे उनकी जीवन की कुछ अनुभव जो है हम सभी को मोटिवेशन देता है। वैसे मैं कहूँ कि आपको क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईटी सेक्टर में कुछ काम करना है, तो इसके लिए इंटरनेट पे आपको भरपूर माहिती मिल जाती है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और इसके साथ में आपको स्कूल में भी करियर के फेयर लगते हैं तो वहां से भी कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिल जाता है। लेकिन जो रियल एक्सपीरियंस जब हम लोग शुरू करते हैं या किसी एक्सपर्ट से सुनते हैं तो निश्चित तौर पे आपको एक प्रॉपर मार्गदर्शन मिल जाता है, एक प्रॉपर जो है वे मिल जाता है कि इनके जीवन में ये चीजें आई तो इन्होंने क्या किया। तो आइए आज के इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान बीके अर्चना जी हैं। तो बीके अर्चना जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में, कैसे हैं आप?
1: शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छे।
0: जी जी जी, बीके अर्चना जी थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और मैं चाहूंगा कि वर्तमान में आप कहाँ पर रहते हैं, क्या करते हैं। जी
1: जी, नाम है बीके अर्चना। एक्चुअली हमारा बर्थ हुआ है हरियाणा में
0: जी जी,
1: और उसके बाद 2 इयर्स हम लोग दिल्ली में रुके और उसके बाद 20 इयर्स आई वॉज इन दुबई। अभी हम 3 इयर्स से नोएडा में स्टे कर रहे हैं और यहाँ पर अपने से पॉसिबल होता है हम लोग सेवा में रहते हैं, हॉबीज हैं या जो भी शौक हमारा रहा है।
0: अच्छा, आपकी एजुकेशन के बारे में कुछ बताइए, बचपन की बातें, स्कूल लाइफ के बारे में।
1: जी, स्कूल लाइफ बहुत अच्छा वहीं हरियाणा में रहा है। तो बचपन से ही बिकॉज वी वर किड्स तो एंजॉय करते थे, लेकिन वहीं पर हमने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद मैरिज हो गई तो उसमें बिजी हो गए बच्चों में, लेकिन जी, कुछ समय के बाद जब अपने बच्चे बड़े हो गए उसके बाद हमें ये रियलाइज हुआ कि हाँ, बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों के साथ कंपनी बहुत अच्छी लगती थी, फिर अलग अलग एज ग्रुप के साथ जो सिचुएशंस आती हैं उनको कैसे हैंडल करना है। अपने अपने घर में तो बच्चों से सीखने को मिला, लेकिन हाँ, वो एक्सपीरियंस हमारा आगे फिर काम आता है कुछ भी अगर हम नया करना चाहते हैं तो उसमें बहुत हेल्प मिला हमें, बहुत हेल्प मिला। और हमेशा हम बच्चों से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है हम लोगों को। और कुछ 5 इयर्स बिफोर हम लोग कुछ स्पिरिचुअलिटी में आ गए तो वो दैट इज एडिशनल बेनिफिट रहा उसका हमको ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अर्चना जी, एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, जैसे स्कूल या कॉलेज में जब आप थे तो आप किस तरह के करियर के बारे में, अगर आप कुछ बनना चाहते थे तो क्या सोचते थे, किस फील्ड में आप जाना चाहते थे?
1: एज सच उस समय भी एक ये रहता था कि कुछ टीचिंग लाइन में कुछ करना है तो, लेकिन कुछ डायरेक्शन क्लियर नहीं थे, लेकिन पता नहीं था कि इतने सालों के बाद अभी हमको ये सब मिलेगा चांस करने का। तो इट वाज फन, बहुत मतलब एंजॉय कर रहे हैं अभी तो हम इस समय को, और जो भी हम लोग बच्चों के साथ एक्टिविटीज करते हैं, कुछ टाइम हमें एक प्रैक्टिस भी रहा वहां पर जब हम बाहर थे दुबई में तो कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते थे तो बच्चों को मैनेज करने का ड्यूटी मिलता था।
0: बिल्कुल,
1: तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे लाइफ में हुआ तो उसको हम करियर भी बना सकते हैं, तो वो उसमें ऐसा लगा हमें।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दुबई में कितना समय आप रहे?
1: 20-21 इयर्स।
0: जी जी जी, तो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम या वहाँ पर किस तरह के जो है चीजें आपने देखी, थोड़ा सा बताइए वहाँ का।
1: इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस वहाँ पर, मतलब हर तरह से हम लोगों को सपोर्ट मिलता है। जैसा कि एक दुबई का पिक्चर माइंड में, दुबई सुनते ही आज से 10-20 साल पहले पीछे जाएं तो इमेज अच्छा नहीं था, दुबई का नाम सुनते ही लोग थोड़ा पीछे हो जाते थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: लेकिन बहुत ही सपोर्टिव है वहाँ फैमिलीज भी, जो इंडियंस रहते हैं वो भी, इवन जो वहाँ के लोकल्स हैं वो भी हम लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं। एक सेल्फ रेस्पेक्ट है सबका, लेडीज के लिए, फैमिलीज के लिए, रोड्स पे, ट्रैफिक रूल्स में, मतलब सब जगह, और स्कूल्स में भी टीचर्स बहुत अच्छे से डील करते हैं. कुछ स्ट्रिक्टनेस नहीं है बट इजी वे में, मतलब इतना प्रेशर नहीं है वहां पर स्टूडेंट्स को लेकर भी.
0: जी जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया कि वर्तमान समय में वहाँ पर किस तरह का सिनेरियो है ये आपने बताया, और एजुकेशन वगैरह जो भी है उसमें बहुत ही अच्छी तरह से जो है वो काम चल रहा है वहाँ पर भी. और आपने बताया कि भाई वहाँ पर महिलाओं के लिए विशेष सम्मान भी है और सब चीजें जो है विधिवत चीजें चलती हैं और रिस्पेक्टफुली वो काम करते हैं, ये आपने बताया.
1: जी, इवन इवन जो अथॉरिटीज भी है ना वो भी बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, फैमिलीज को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है.
0: सही बात है,
1: तो इट्स अ गुड थिंग.
0: जी जी जी, एक मैं बात पूछना चाहूंगा, जैसे कि एक जैसे कि हम लोग दुबई की जब बात करते हैं तो एक टूरिज्म की तरह उसको देखा जाता है, टूरिज्म के लिए काफी मशहूर है दुबई. तो मैं चाहूंगा कि क्या एक टूरिज्म के हिसाब से किस तरह से कितने दिन में हम पूरा दुबई को देख सकते हैं, आप वहाँ की कुछ अच्छी चीजें जो टूरिज्म के हिसाब से हमें देखना है तो थोड़ा सा बताइए वहाँ पे.
1: जी, एक्चुअली हम लोग 21 इयर्स रहे और 21 इयर्स में पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर चेंज हो गया. जो हमें जंगल लगता था कि ये यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये तो डेजर्ट है, इट्स लाइक अ हेवन, मतलब बोल सकते हैं उसको आज के टाइम में. बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है और वहाँ पर गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया है फैमिलीज के लिए. कुछ भी एक्टिविटीज हैं, आपको हॉलीडे डिपेंड्स कि आपके पास कितना समय है, आप उतना समय वहां पर स्पेंड कर सकते हैं. 5 days में भी जाते हैं यहाँ से ट्रिप्स, और लेकिन थोरोली अगर आप उसको एक्सप्लोर करना चाहें तो 15 days में भी मतलब आप कवर कर सकते हैं उसको. बहुत सारी किड्स के लिए एक्टिविटीज भी हैं और एल्डर्स के लिए डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज हैं, रिसोर्ट्स हैं. अच्छा है, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस.
0: चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया. अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर अर्चना जी आपसे जुड़ेंगे और दुबई में जो खास चीजें हैं, बहुत ही फेमस जो चीजें हैं उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, जो खास करके टूरिज्म के हिसाब से उन चीजों को डिजाइन किया गया है वो हम सुनना चाहेंगे आपसे. और अभी लेते हैं एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत. आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो.

0: नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और अर्चना जी से हमारी बातें हो रही हैं। बीके अर्चना जी हमारे साथ हैं और खास एजुकेशन का जो है इनका विशेष आकर्षण रहा है, और अगर इनको मौका मिलता तो एजुकेशन में ही ये बच्चों को पढ़ाने का काम करते। लेकिन शुरू शुरू में ये चीजें उनको नहीं मौका मिला, लेकिन वापस दिल्ली आने के बाद इनको ये मौका मिला और ब्रह्म कुमारी के संस्थान से जुड़कर ये एज ए सेवा प्रोफेशनली नहीं बल्कि अपने हॉबी और अपने सेवा समझकर वो अभी बच्चों को पढ़ा रही है। और छोटे बच्चों के साथ इनका जो है बड़ा अच्छा रैपो बनता है, बच्चों के साथ इन्हें बड़ा अच्छा भी लगता है। तो इस हिसाब से कहते हैं कि बच्चे भगवान के रूप होते हैं, तो अगर हम बच्चों के साथ जुड़ जाते हैं तो निश्चित तौर पर खुशी होती है। और खास करके अर्चना जी को इस कार्य में बड़ा रुचि होता है तो वो इस कार्य को कर रहे हैं। अगर आज के समय में हम लोग देखा जाए तो एजुकेशन में और खास बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष ट्रेनिंग भी दिया जाता है। आप देखते हैं कि बड़े शहरों में बच्चे जो है सीनियर जूनियर केजी चलते हैं, उसके बाद फर्स्ट स्टैंडर्ड फर्स्ट में उनको एंट्री मिलती है। तो बच्चे जब 6-7 महीने या चलना फिरना शुरू कर देते हैं तो उसी समय से जो है उनको जो है खास स्कूल में एडमिशन दिया जाता है। और बच्चों को जो है वहां पर खेलना, खाना पीना, कैसे रहना है, छोटी छोटी चीजें सिखाई जाती हैं। और फिर उनको जो है राइम पोएम्स वगैरह से उनको जो है ट्रेन किया जाता है। और बाद में फिर 2 साल के बाद उनकी फर्स्ट स्टैंडर्ड शुरू हो जाती है। तो निश्चित तौर पे बच्चों को खास इस तरह की ट्रेनिंग की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बच्चे रेगुलर स्कूल या स्कूल के सिस्टम से फेमिलियर हो इसके लिए जो है केजी और ये एलकेजी वगैरह शुरू हुआ है। और इसमें भी लोग जो है अच्छा करियर बना सकते हैं जिन लोगों को बच्चों के साथ प्यार है। तो एजुकेशन के लिए आप अगर सोच रहे हो तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं। और ये छोटे कोर्सेस होते हैं, आप जो है इस कोर्सेस को करके फिर आप बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मोंटेसरी कोर्स होता है या फिर एजुकेशन का कोई भी आप एक जो कोर्स है कर सकते हैं। और इसके बाद में मैं देखा हूं कि कई बार जो है संस्थान जो रहते हैं एजुकेशनिक एनजीओ होते हैं जो खास बच्चों के एजुकेशन के लिए काम करते हैं। और ये लोग ऐसे काम करते हैं जहां पर जो है कुछ बच्चे जो है जैसे गांव में है या गरीब है, वो क्या करते हैं, बच्चे तो एडमिशन लेके पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनका फिर क्या हो जाता है, फैमिली का कुछ प्रॉब्लम हो गया या कुछ उनके फैमिली में कुछ ऐसी चीजें आ गई तो वो बच्चों को जो है आगे की पढ़ाई पढ़ाते नहीं है। और फिर कई बार बच्चे खुद भी कुछ कारणवश छोड़ देते हैं। ड्रॉप आउट बच्चों का भी एजुकेशन के लिए एनजीओस काम करते हैं, बहुत सारे संस्थान हैं। और वो लोग सिर्फ बच्चों को जो है पढ़ाने के लिए, एडमिशन करवाने के लिए काम करते हैं। तो इन एनजीओस को भी आप जैसे एजुकेशनिस्ट टीचर्स जो बच्चों से प्यार करते हैं उनके लिए बहुत सारे ये मौके आते हैं जहां पर वो एनजीओ से जुड़कर अपना पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप बच्चों को बच्चों के साथ जुड़ना चाहते हैं, एजुकेशन से जुड़ना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत ही अच्छा काम है। और ये खास जो लोग फैमिली में रहते हुए अगर पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो आइए मैं बीके अर्चना जी को फिर से जोड़ना चाहूंगा। और हम लोग बात कर रहे थे उनका जो है दुबई में 21 साल वो रहे हैं, तो निश्चित तौर पे दुबई का पूरा जो है सब चीजें जो है उनका जो है क्या कहते हैं जंगल से मंगल कैसे हुआ वो सारा जो इतिहास है उनके पास उन्होंने देखा हुआ है। तो आइए मैं चाहूंगा कि अभी जो खास टूरिस्ट प्लेस जो फेमस है दुबई में, खास टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए जो चीजें बनाई है उनके बारे में थोड़ा बताइए।
1: जी, वहाँ पर एक्चुअली जैसे कि सब लोग जानते ही हैं कि दुबई सी के अंदर पूरा का पूरा सिटी बना हुआ है। अभी वहाँ पर रिसेंटली कुछ समय पहले एक पाल्मा बीच एरिया बना है जो पाम की शेप में है, बिल्कुल सी के अंदर। वो घूमने के लिए बहुत अच्छा है। मिराकल गार्डन है, मतलब वहाँ पर वैरायटी ऑफ फ्लावर्स जितना भी हम सोच सकते हैं सब वैरायटीज ऑफ फ्लावर्स हैं।
0: अच्छा।
1: और उनको इतने अच्छे से उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है कि मतलब वी कैन स्पेंड होल डे देयर। बटरफ्लाई गार्डन है, मतलब बच्चों के लिए तो बहुत बहुत सारा एक्टिविटीज है वहाँ पर। फिर एक दुबई फ्रेम है, आजकल उसमें मूवीज में बहुत आता है दुबई फ्रेम करके। और वहाँ दुबई के सब सब प्लेसेस जो क्रीक बोला जाता है, सी साइड पे थोड़ा एरिया डेवलप कर दिया जाता है, उसको वो लोग डेकोरेट करते हैं और इट्स अ फन टाइम। मतलब वीकेंड्स में आप चले जाओ बिकॉज अब रोड में और कोई तो एक्टिविटीज होती नहीं है, तो सब फैमिलीज कलेक्टिवली वहां पर कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स कर लेते हैं। और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ये
0: जी
1: बुर्ज
0: जी जी
1: खलीफा, सब मतलब घूमने के लिए ही, वो तो है ही टूरिस्ट प्लेस, तो कितने भी दिन आपके पास हो डिपेंड्स ऑन मनी एंड टाइम कि कितना हम
0: जी जी
1: स्पेंड कर
0: जी जी
1: सकते हैं वहां पर।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया। मुझे लगता है कि बहुत सारे प्लेसेस है दुबई में, अगर आप एक बार चले जाते हो तो जितना आप खर्चा कर सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो, उतना आपको जो है फन है वहां पर, उन चीजों को आप देख सकते हैं।
1: एक
0: तो
1: चीज
0: बेस्ट
1: इसमें
0: टूरिज्म
1: और
0: प्लेस।
1: ऐड करना चाहूंगी
0: जी
1: कि
0: जी
1: वहां की हॉस्पिटैलिटी इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। यस, क्योंकि
0: अच्छा
1: हम लोग बहुत सारे रिव्यूज देखे हैं लेकिन
0: हाँ
1: 5 स्टार्स में भी वो फैसिलिटी

0: एवरीथिंग आई हैव सीन,
1: अरे वाह,
0: मतलब 3 साल पहले जब हम लोग यहाँ आए तब तक जो भी बना था, उसके
1: हाँ
0: बाद
1: हाँ
0: माई डॉटर वॉज देयर, तो
1: हाँ
0: वो बताते हैं तो पता चल जाता है कि हाँ ये चीज भी नई आई है वहां पर ना।
1: जी जी जी जी आपको उनमें से जो स्पेशल लगते हैं कि ये तो देखना ही चाहिए, ऐसा कुछ है?
0: सब सब चीजें ही बहुत अच्छी हैं, कुछ ऐसा स्पेसिफिक बोल ही नहीं सकते क्योंकि जो भी मिस किया वो गया। बाकी मॉल्स हैं ना, तो मतलब दुबई मॉल है और ये मिराकल गार्डन इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, वहाँ का वहाँ पर इवन इंडियन जो टेम्पल्स बने हैं वो भी देखने के लिए बहुत अच्छे हैं। जैसे अमृतसर का यहाँ पर गोल्डन टेम्पल बोला जाता है, वहाँ पर एक गुरुद्वारा बना हुआ है,
1: अच्छा
0: वो इंडियंस जाते हैं तो वो घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। और अभी रिसेंटली एक टेम्पल कृष्णा लक्ष्मी नारायण टेम्पल वहां पर बना है, उसके वीडियोस देखो तो बहुत बहुत सुंदर बना हुआ है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: जी
1: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया, और चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब बात करते हैं फिर से एजुकेशन वाली बात। तो एजुकेशन में अगर आपको काम करने का मौका मिल जाता तो आप किन चीजों पे ज्यादा फोकस करते, कैसे काम करते, थोड़ा सा बताएं। जी
0: जी मुझे एक्चुअली छोटे बच्चों के साथ बहुत बहुत अच्छा लगता है, एंजॉय करने को मिलता है,
1: जी
0: और उन
1: जी
0: लोगों के साथ इंटरेक्शन करने से हमारा अपना पेशेंस और हमारी अपनी कैपेबिलिटीज भी हमें पता लगती हैं धीरे धीरे कि हाँ हमारे अंदर ये क्वालिटी है। तो मुझे अगर चांस मिलेगा तो मैं छोटे बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करना चाहूंगी। और जो चीज हम लोग उनको बताते भी हैं, रिसेंटली हमने ऑब्जर्व किया कि
1: जी
0: जब हम
1: जी
0: छोटे बच्चों को कुछ बताते हैं ना तो वो लोग बहुत इंटरेस्टिंगली सुनते हैं। हम लोगों को ऐसा लगता है कि वो लोग फोन में हैं, क्योंकि आज के टाइम में देखो तो डिजिटल डिटॉक्स के इतने सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं वो आदत ना उनमें खुद ही डाल देते हैं। लाइक बच्चे ने खाना नहीं खाया है तो 6 मंथ के बच्चे के हाथ में हम फोन दे देते हैं और वो खाना खा लेता है, और बाद में एक एज के बाद हम लोगों को ये चीजें प्रॉब्लम करने लगती हैं कि देखो फोन पे ही बैठा है। फिर हम टीचर से कंप्लेन करते हैं कि आप इनका फोन छुड़वा दो। तो ये एक रूटीन में होती हैं ये चीजें लाइफ में, तो अगर हम बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उनके साथ एक्टिविटीज करेंगे, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, लर्निंग इज एवरीवेयर ना, तो मुझे लगता है कि वो चीज को चेंज किया जा सकता है। तो आई ऑलवेज प्रेफर स्मॉल किड्स।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया कि आप अगर एजुकेशन में होते हैं तो छोटे बच्चों को जो है पढ़ाने के लिए आप हमेशा आगे रहते हैं। और अभी आपको क्या मौका मिला है, अभी आप उन चीजों को, आपका जो ये पैशन रहा है एजुकेशन के साथ बच्चों को सिखाना या बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, तो वर्तमान में आप जो है कैसे इन चीजों को कर रहे हैं? जी
0: कुछ समय पहले से मैं स्टार्ट करूंगी कि कुछ 10-15 ईयर्स बिफोर कुछ ऐसी एक्टिविटीज थी जो हम लोग अपनी फैमिली की पार्टीज में बच्चों के साथ और कोई जैसे डांस प्रोग्राम हो रहा है तो वहां करते
1: जी
0: थे।
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: वो चीज हमारे को यहाँ पर बहुत हेल्प की, यहाँ पर आए तो हमें कुछ ऐसी सर्विस करने का चांस मिला कि हम बच्चों को कुछ एंटरटेन करें, उनको कुछ स्लो लर्निंग प्ले वे मेथड में सिखाएं। तो वो चांस मिला तो कुछ 2 ईयर्स से हम लोग बच्चों के साथ वो प्रैक्टिस करते हैं। छोटी छोटी चीजें बोलते हैं करने को, लेकिन जब हम उस उनको साथ उनको दिखता है ना कि हम लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो वो लोग उस चीज को और ज्यादा इंटरेस्टिंगली करते हैं। शायद पेरेंट्स बीइंग अ पेरेंट हम बच्चों को उस चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब बीइंग अ टीचर मतलब जो हमारा टीचर का रोल होता है उसमें अगर हम किड्स को कोई बात समझाते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं, उनको लगता है कि हाँ हमारे लिए ये इम्पोर्ट हम मतलब उनके लिए हमारे लिए वो लोग इम्पोर्टेंट हैं, तो उसमें बहुत बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट्स मिलते हैं। हमारे 2-3 बच्चों के तो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं, तो वो लोग शेयर करते हैं कि हाँ मतलब इतने हमें खुशी होती है कि अपने पेरेंट्स के को भी मतलब छोड़ के वो हम लोगों के साथ भी इतना इंटरेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स के साथ बच्चे हर चीज इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो बहुत मतलब बच्चों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है
1: जी
0: इसमें, और फोन से वो लोग खुद ही डिटैच होते जा रहे हैं। मतलब उनको हमें
1: जी
0: फोर्स नहीं करना पड़ता है कि आप फोन नहीं यूज करो,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि उन
1: बिल्कुल
0: क्योंकि उनको अपने इंटरेस्ट की चीजें करने को मिलती हैं, तो वो लोग अपने आप ही डिटैच हो जाते हैं उनसे।
1: बिल्कुल बिल्कुल

0: कहीं ना कहीं फॉल्ट हमारा ही होता है कि हम लोग उनको टाइम नहीं देते हैं, चाहे लाइफ टाइम के हिसाब से बिजी लाइफ है, जो भी है, जॉब, कोई भी रीजन हो सकता है, बट हम लोगों को ही थोड़ा इस पे ध्यान देना पड़ेगा।
1: जी अर्चना जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि बच्चों के साथ आपको जो है बड़ा रुचि, अच्छा लगता है और आप उन चीजों को करके बेहद खुशी महसूस करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जिस कार्य को करके आपको खुशी मिलती है उसी में आपका प्रोफेशन बन जाए तो आपका लाइफ जो है बहुत ही अच्छी तरह से सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो हर व्यक्ति चाहता है कि अपने लाइफ में सब कुछ हो। अगर सेटिस्फेक्शन नहीं हो तो कोई मतलब नहीं बनता, इसीलिए आप उन चीजों को करें जिसमें आपको खुशी मिलती है। तो निश्चित तौर पे आप ऐसे ही करियर के बारे में तलाश कीजिए, और ये जो छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम जो है ये आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं, ये भी बहुत बड़ा बिजनेस आपका बन सकता है, आपका हॉबी भी। तो देखना है कि आपको कैसे, आप जिस जगह पे रह रहे हो वहां पर क्या फैसिलिटीज है, क्या चीजें हैं, तो आप एक बार सोच के देखिएगा। और नेट पे भी आप सर्च कर सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के कौन कौन से छोटे छोटे कोर्सेस अवेलेबल हैं, 6 महीने के हैं, साल भर के हैं या 2 साल के हैं, जिसमें आपको स्पेशलाइजेशन करके आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छे एनजीओस बने हुए हैं जो खास इस एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो वहां पर भी आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अर्चना जी, मैं चाहूंगा कि अब इस ब्रेक में आपका पसंदीदा एक गाना हम सुनाना चाहेंगे, तो आपका कौन सा गाना जो बहुत ही अच्छा लगता है आपको? वैसे बहुत सारे गाने होंगे लेकिन इस वक्त आपको कौन सा गीत याद आ रहा है, 2 लाइन उसकी गुनगुनाइए।
0: तार मन के तुम्हीं से जुड़े ही रहे। आई लाइक दिस सॉन्ग, दिस इज द लेटेस्ट सॉन्ग बाय हरीश मोयल।
1: जी जी जी, जी. चलिए इस स्पिरिचुअल गीत को
0: हार्ट।
1: जी जी जी, ये बहुत ही प्यारा सा आध्यात्मिक गीत आपने याद कराया है हरीश मोयल जी का, तो आइए इस गीत को सुनते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो 1 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: सा ध प ग रे सा रे ग ग प ग ध प ग ग।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
2: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। बीके अर्चना जिससे बात हो रही है और बहुत ही प्यारा सा सूदिंग आध्यात्मिक गीत आपने सुना हरीश मोहल की आवाज में। और मुझे लगता है कि अगर आपने पहली बार इस गीत को सुना है, अगर ध्यान से सुनेंगे तो आप निश्चित तौर पे कनेक्ट भी हुए होंगे। तो आइए आपके मन को और खुशी प्रदान करते हैं। अगर आप करियर के बारे में मतलब पार्ट टाइम करियर के बारे में सोच रहे हो तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है बच्चों को पढ़ाने का, एजुकेशन वाला। तो ये चीजें आप अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं। और आप जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश संस्थाएं हैं, स्कूल है, कॉलेज स्कूल है, एनजीओस हैं, उनसे जुड़कर भी आप जो है पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। तो आइए मैं फिर से आपको बीके अर्चना जी से जोड़ना चाहूंगा। बीके अर्चना जी, मैं अभी चाहूंगा कि ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर सबसे पहला आपका कैसे जुड़ना हुआ और फिर आपको यहाँ ऐसी क्या चीजें मिली जो आप कनेक्ट अभी तक है?
3: मुझे 5 ईयर्स हो गए हैं। 2018 में मैंने स्पिरिचुअलिटी को ज्वाइन किया।
2: जी, जी जी।
3: और फ्रॉम द फर्स्ट डे इट चेंज्ड माय लाइफ। पहला दिन मतलब जैसे ही मैंने एंटर किया तो ऐसा लगा कि पीछे की लाइफ तो डिलीट हो गई है। तो इट वॉज अ मैजिक फॉर मी। और मतलब जो भी रियलाइज नहीं होता था कि ये सब चीजें हमारी लाइफ में कमी है, मतलब कुछ और होना चाहिए, ऐसा कभी फील नहीं होता था। और सिर्फ जस्ट एक मेडिटेशन सीखने के पर्पज से जो हमने एंटर किया था, और ये मालूम ही नहीं था कि इतना सब कुछ मिल जाएगा कि मतलब हम लोगों को ऐसा लगता है कि अब हम देना शुरू कर दें, मतलब सबको बताएं कि क्या क्या वंडर्स होते हैं स्पिरिचुअलिटी में। और किसी भी फील्ड में ले लें, स्टडीज करना है, घर के कुछ भी सिचुएशंस है, मतलब हमारी पूरी वोकैबुलरी चेंज हो जाती है। हमें जो चीजें पहले प्रॉब्लम्स लगती हैं वो अब वो सिचुएशंस बन जाती हैं। जो चीज हमें शायद कभी लाइफ में लगती है कि बहुत बड़ी थी, इसको कैसे डील करें, उसमें लगता है कि ठीक है, एक पॉज देते हैं हम अपने को, एक मिनट साइलेंस, और कुछ सोचते हैं, क्योंकि हम सोचते नहीं हैं और हम लाइफ में परेशान होते जाते हैं। तो उसको जब हम रुक कर सोचना शुरू करते हैं तो अपने आप वो चेंजेस आने लगते हैं। और ये पॉज लेना नॉर्मली लाइफ में इतना इजी नहीं होता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद हम लोगों का ये हैबिट बन जाता है। और हमें एकदम से रियलाइजेशन होने लगता है कि नहीं, ये गलत स्टेप है, इसको चेंज करना है और इसको राइट कैसे करना है। तो वो डायरेक्शंस अपने से मिलती जाती हैं, हमारे अंदर इनर पावर्स आती जाती हैं और मैजिक देखने को मिलता है, तो हमें अपनी लाइफ मूवी की तरह दिखने लगती है।
2: यस। चलिए, बहुत ही अच्छा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। और अभी बच्चों के लिए वर्तमान में आप किन बच्चों के साथ जुड़कर उनको एजुकेट कर रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, जिन बच्चों से आप ज्वाइन वो जुड़कर काम कर रहे हैं। जी
3: जी, हमारे यहाँ पे ब्रह्म कुमारी संस्था के अंडर जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो डेली क्लासेस अटेंड करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, उनके ही किड्स हैं। और उनसे जुड़े और जिन जिनको पेरेंट्स को लगता है कि हाँ, यहाँ जाकर कुछ लर्निंग है, कुछ चेंजेस आ सकते हैं, तो उनसे हमने स्टार्ट किया था। कुछ 5 और 6 स्टूडेंट्स थे, लेकिन वो धीरे धीरे ऑन एंड ऑफ, क्योंकि एग्जाम्स हैं, वेकेशंस हैं, तो वो लोग ऑन एंड ऑफ आते हैं, नहीं आते हैं, लेकिन मतलब वो जुड़े हुए हैं, ऑलवेज कहीं देखते हैं, तो उनको एक लाइवली फीलिंग होती है सबसे मिलके, उनसे मिलके दूसरे लोगों को इतना अच्छा लगता है। तो उनके जब पेरेंट्स दूसरे पेरेंट्स से बात करते हैं तो आगे होके पूछते हैं कि आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं, हम वहां पर अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, तो सुन के बहुत अच्छा लगता है। रिसेंटली हमारे यहाँ एक प्रोग्राम हुआ समर कैंप, तो उसमें भी बच्चों के लिए इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि पेरेंट्स आर विलिंग टू सेंड दैट। और उनको ये विश्वास है अंदर से कि जो अंदर हमारे संस्कार हैं, जो हमारे अंदर कैपेबिलिटीज हैं, वो हम बच्चों की कैसे बाहर निकालें, उनकी लाइफ को कैसे, मतलब उनको श्योर है पेरेंट्स को भी कि यहाँ से ही बच्चे आगे अपने लिए अच्छी गाइडेंस पा सकते हैं।
2: जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया। और अब तक आप कितने बच्चों को पढ़ा चुके हैं?
3: एक्चुअली ऑन एंड ऑफ आते हैं, कभी 5 कभी 10। हमारा एक बहुत छोटा सा यहाँ पर सेंटर है, हम लोग वहाँ जाते हैं। लेकिन हाँ, मतलब जो हमने अभी प्रोग्राम किया उसमें काफी बच्चे थे, मतलब सेंटर के जो
2: समर वेकेशन वगैरह आप करते हैं क्या?
3: जैसे समर कैंप हुआ वहाँ पर ना,
2: जी,
3: तो उसमें हम लोग पार्टिसिपेट किया, सब लोग ने मिलके टीम वर्क। जी
2: चलिए अर्चना जी, काफी अच्छी बातें आपने बताया। और मैं चाहूंगा कि जाते जाते बच्चों के साथ आपका जो इंटरेक्शन होता है, तो एक दो एग्जांपल्स दीजिए क्या आपको लगा और किस तरह से बच्चों को आपने उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखा, वो थोड़ा सा एक दो एग्जांपल दो चार बच्चों का आप सुनाइए।
3: हमारे पास शुरू शुरू में एक बच्चा आया, तो जैसे ही वो एंटर किया तो कभी भी वो बैठता नहीं था, मतलब उसको एक सेकंड भी, जैसे होता है ना बॉयज का थोड़ा,
2: हाँ बिल्कुल, कुछ
3: चुलबुले रहते हैं बहुत, तो वो एक सेकंड के लिए भी बैठते नहीं थे। लेकिन अभी वो उनको अच्छा लगता है, वो कभी मिस भी कर देते हैं तो उनको लगता है कि नहीं हमें मिस नहीं करना है। एक बहुत अच्छा, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन वो बच्चा कुछ क्लासेस ज्वाइन किया हुआ था, तो उसको उसने खुद अपना एक्सपीरियंस फोन करके बताया कि दीदी मैंने ऐसे ऐसे फॉलो किया जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं, तो उससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ, मेरा नेशनल लेवल में सिलेक्शन हो गया। तो वी वर सो हैप्पी ना, क्योंकि जब वो बोलता था ना कि दीदी हम लोग भूल जाते हैं, तो हम उनको कॉल कर करके बीच में फोन करके कि ठीक है आप भूल जाते हो, लेकिन जिस टाइम आपकी क्लासेस होंगी उससे जस्ट 10 मिनट्स बिफोर वील मैसेज यू और वील कॉल यू। तो ऐसे ऐसे जैसे मतलब उनको भी लगा कि हाँ हम लोग उनकी ग्रोथ में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो धीरे धीरे उनका इंक्लाइनमेंट इधर होने लगा, तो बहुत अच्छा। और कुछ चीजें जैसे हम लोग यहाँ क्लासेस में फॉलो करने को बोलते हैं कि आप ऐसा करो तो आपको ऐसा बेनिफिट होगा, तो दो तीन बच्चे और भी स्टूडेंट्स हैं, मतलब आगे जाके उनको खुद आगे होके पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो लोग बिल्कुल बोलते नहीं थे,
2: जिनसे
3: कुछ बात नहीं निकलती थी, लेकिन आज आगे होके वो खुद बोलते हैं कि हाँ हमें ऐसा करना है या हमें पार्टिसिपेट करना है, तो देख के अच्छा लगता है और हमें भी थोड़ा अंदर से मोटिवेशन होता है कि हाँ हमें भी कुछ नया करना चाहिए, क्योंकि अगर वो करना चाहेंगे तभी ही हम लोग का एफर्ट्स दिखाई देंगे ना, नहीं तो कुछ बेनिफिट लगता नहीं है फिर। इसलिए जैसे जैसे वो डिमांड करते हैं वैसे वैसे सप्लाई बढ़ता जाता है। और ये टीम वर्क होता है, वो लोग मतलब दोनों का मिलके ही होता है जो भी काम है।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए विके अर्चना जी, बहुत ही अच्छा लगा आपका एक्सपीरियंस सुनकर, और बड़ा खुशी हुआ कि हमें जो पसंद है उन चीजों को जब हम करते हैं तो उसमें हम ये नहीं देखते कि वे पैकेज कितना बन रहा है, कितना टाइम जा रहा है, या क्या चीजें, कितना पेशेंट हमें रखना पड़ रहा है, लेकिन आपका हॉबी है तो वो चीजें सारी जो है जीरो हो जाती है। आप उसे करके खुशी फील करते हैं, उस कार्य को कर उस जगह उपस्थित होकर आपको खुशी मिलती है, जो खुशी जैसी खुराक और कहीं नहीं मिल सकता। खुशी जैसी खुराक बोले जाता है कि भाई बहुत बड़ी जो चीज है वो है खुशी की खुराक, उसका आप अनुभव करते हैं, इसीलिए आपको जो है किसी भी तरह का तनाव या टेंशन नहीं होता। तो ये बहुत अच्छी बात आपने शेयर किया कि बच्चों के साथ आपको बहुत अच्छा लगता है और उसके लिए आप टाइम निकालते हैं और बच्चों के साथ काम भी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा करूंगा कि वीके अर्चना जी को सुनकर आपको बच्चों के साथ कितना उनका लगाव है ये आप समझ गए होंगे, और छोटे बच्चों के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आप अपना करियर भी बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत सारे ऑप्शन जो हमने बीच बीच में आपको बता दिया है, फिर भी आप इंटरनेट के माध्यम से जो है बच्चों के साथ जुड़ने के कौन कौन से करियर है आप टाइप करेंगे तो बहुत सारी चीजें आएगी, और बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो सिखाते भी हैं, तो आप उनसे सीखकर भी आप इसमें करियर बना सकते हैं। तो जरूर मैं चाहूंगा कि आपको अगर बच्चों के साथ अच्छा लगता है, और जो लोग घर पे हैं और जो लगता है कि उन्हें कुछ पार्ट टाइम करना है, तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ा जो है करियर का ऑप्शन बन सकता है और खुशी का भी टाइम हो सकता है। तो इसीलिए आप इस पर, अगर आप घर पे हैं और पार्ट टाइम जॉब की सोच रहे हैं, तो ये जो है बहुत ही अच्छा आपका करियर ऑप्शन हो सकता है, एक बहुत ही अच्छा टाइम खुशी वाला जो है टाइम हो सकता है आपका, तो आप इस पे जरूर काम कीजिएगा। तो चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में जाते जाते बीके अर्चना जी को मैं कहूंगा कि एक छोटा सा मैसेज जरूर कोट करें सभी के लिए। जी
3: मैसेज तो यही है कि जो मैंने अपनी लाइफ में अनुभव किया है कि जब हम खुद स्ट्रांग हैं तो जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सिचुएशंस में चेंज होके बहुत स्लोली ऐसे निकल जाती हैं कि हमें पता भी नहीं चलता है। तो अपनी अपनी जो स्थिति है, स्वस्थिति अगर अच्छी है तो परिस्थिति कुछ भी नहीं रहती है, बहुत कम रुई जैसा निकल जाता है वो ना।
2: बिल्कुल,
3: तो ये मैसेज देना चाहूंगी। तो हमें खुद को ही स्ट्रांग करना है और खुद को स्ट्रांग करने के लिए स्पिरिचुअलिटी में आना एक बहुत बड़ा पार्ट होता है लाइफ का।
2: बिल्कुल,
3: मतलब अगर हमें 100% अंदर से हैप्पीनेस को फील करना है तो एक बार एक्सपीरियंस करके जरूर देखें।
2: बीके अर्चना जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया कि जिस चीज को करने से हमें खुशी मिलती है उन चीजों को जरूर करना चाहिए, एक्सपीरियंस लेना चाहिए और फिर उसके बाद उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में करियर ऑप्शन कार्यक्रम में हमने प्राइमरी एकदम किंडर गार्डन या फिर कहे एलकेजी या फिर सीनियर जूनियर बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ाने की बात हमने की और ड्रॉप आउट बच्चों के भी स्कूल या उनको फिर से जो है एक चार चार महीने का, छः छः महीने का एनजीओ जो है अपने संस्था में उनको रखकर उनको ट्रेन करते हैं और फिर वापस उनकी जो है टेस्ट करके उन्हें वापस मेन स्ट्रीम में स्कूल से जोड़ा जाता है। तो राजस्थान में ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जिन्हें हम जानते हैं, प्रधान एक संस्थान है, दूसरा दशक एक संस्थान है और अजिम जी प्रेम जी का एक फाउंडेशन है। ये सारे लोग ड्रॉप आउट बच्चों के लिए काम करते हैं जिनका स्कूल छूटा हुआ है, तो वो ऐसे ही बच्चों को ढूंढते हैं और फिर उनका टारगेट रहता है कि हर चार महीने का एक एक ग्रुप बनाए, तो 50-100 बच्चों का वो लिस्टिंग करते हैं, जो बच्चे मिल जाते हैं उनके माता पिता से बकायदा लिखावट करके फिर वो बच्चों को अपने पास रखते हैं और फिर उन्हें कहाँ उनको प्रॉब्लम आ रहा है तो उनको पूरा ही मना एजुकेशन देते हैं, ऑलराउंड एजुकेशन देते हैं कि समाज में कैसे काम होता है, आप क्यों पढ़ना है, आपको इस तरह की बातें समझा कर उन्हें फिर से उनका एग्जाम्स लेकर फिर उन्हें जो है उनकी जहाँ तक उनकी IQ है EQ है उस अनुसार जो है फिर उनको मेन स्ट्रीम में वापस जोड़ते हैं और 10th एंड 12th तक जो है वो फॉलो अप भी करते हैं ताकि बच्चों का लाइफ बन सके। तो ऐसे बहुत सारे एनजीओस हैं जहां पर आप जुड़ के अपने करियर को भी एक नया मुकाम दे सकते हैं और साथ ही साथ आप किसी को किसी का जीवन बदलने में, किसी का जीवन बनाने में आपको एक बहुत बड़ा जो है आपका सहयोग होता है। तो इस तरह का काम है ये। मैं चाहूंगा कि आपका अगर एजुकेशन में खास कुछ अलग करना है तो ऐसे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए काम जरूर कीजिए। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर से एक बार अर्चना जी को ढेर सारी खुशियां। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, कुछ नई बातें, कुछ नए ट्रेड के बारे में, कुछ नई यात्रा के बारे में आपसे जरूर बात करेंगे और आशा करूंगा कि आज हमने एजुकेशन के साथ साथ दुबई की यात्रा भी अर्चना जी से किया है तो अच्छा लगा होगा आपको, है ना। तो चलिए मित्रों, फिर मिलते हैं। सलाम नमस्ते, हमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

सुनहरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज
1: सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झकास रेडिओ स्टेशन
0: पुणेरी आवाज
1: ऐकत रहा 107.8 FM
0: आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
3: नमस्कार रेडियो श्रोतागण, प्रस्तुत है आपके पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो पुणेरी आवाज पर एक खास कार्यक्रम ज्ञान चिंतन। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त अंकिता। आज मैं आपसे सहयोग की शक्ति इस विषय के बारे में बात करना चाहती हूँ। सहयोग यानी मिलकर काम करना एक ऐसी अद्भुत ताकत है जो हमें अकेले से कहीं ज्यादा हासिल करने में मदद करती है। यह सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक जीवन शैली है जो व्यक्तिगत और सामूहिक सफलता की कुंजी है। सोचिए, एक बड़ा सा प्रोजेक्ट है और आपको उसे पूरा करना है। अगर आप अकेले कोशिश करेंगे तो शायद बहुत ज्यादा समय लगेगा और थक भी सकते हैं। लेकिन अगर कई लोग मिलकर उस प्रोजेक्ट पर काम करें, अपनी विशेषज्ञता और कौशल साझा करें, तो क्या होगा? काम आसान हो जाएगा और बहुत जल्दी पूरा भी हो जाएगा, वो भी बेहतर तरीके से। यही है सहयोग की शक्ति। सहयोग सिर्फ बड़े काम पूरे करने के लिए नहीं है बल्कि यह हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी बहुत जरूरी है। जब परिवार के सदस्य एक दूसरे का हाथ बटाते हैं तो घर का माहौल खुशनुमा रहता है और हर चुनौती का सामना आसानी से होता है। एक टीम के रूप में काम करने से नए विचार आते हैं, समस्याओं का बेहतर समाधान मिलता है और उत्पादकता बढ़ती है। हर व्यक्ति की अपनी एक विशेषज्ञता होती है और जब ये विशेषज्ञताएं मिलती है तो असाधारण परिणाम मिलते हैं। समाज में सामुदायिक कार्यों में सहयोग से हम अपने आसपास के माहौल को बेहतर बना सकते हैं, जरूरतमंदों की मदद कर सकते हैं और एक मजबूत समाज का निर्माण कर सकते हैं। सहयोग से न केवल बड़े काम पूरे होते हैं बल्कि इसके कई और भी फायदे हैं। जब हम किसी की मदद करते हैं या कोई हमारी मदद करता है तो विश्वास और अपनापन बढ़ता है। सहयोग करते समय हम दूसरों के अनुभवों और ज्ञान से बहुत कुछ सीखते हैं जिससे हमारा दृष्टिकोण व्यापक होता है। जब जिम्मेदारियां बढ़ जाती है तो किसी एक व्यक्ति पर काम का बोझ कम पड़ता है जिससे तनाव भी कम होता है। इतिहास गवाह है कि महान उपलब्धियां हमेशा सहयोग से ही हासिल हुई है। बड़े बड़े आविष्कार, सामाजिक आंदोलन और राष्ट्रों का निर्माण, ये सब तभी संभव हुए जब लोगों ने एक साथ मिलकर काम किया। याद रखिए, अकेले हम केवल एक बूंद है लेकिन मिलकर हम एक महासागर बन सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर सहयोग की शक्ति को अपनाएं और एक बेहतर, अधिक एकजुट और सफल दुनिया का निर्माण करें। धन्यवाद। रेडियो श्रोतागण, अगले ज्ञान चिंतन में हम आपसे फिर जुड़ेंगे। तब तक बने रहे रेडियो पुणेरी आवाज। खुश रहो, खुशियां बांटो।
4: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
5: जैसे सरकार ने नियम बनाया कि टीचर्स स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठा सकते, पहले उठा देते थे ऐसे ही, थोड़ा सा रूलर मारा, किसी ने चौक मारा, किसी ने थोड़ा, फिर लॉ बन गया कि नॉट अलाउड, उस दिन के बाद बंद हो गया। तो हम लॉ सरकार क्यों बनाए? हम अपने लिए, खुद के लिए लॉ बनाएंगे ना, कि मेरे लिए और जो मेरा एनवायरमेंट है वहां पे ये चीज कितनी हानिकारक है। हम एक दर्द का एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां हीलिंग होनी चाहिए। और फिर जब एक ने दूसरे को डांटा, दूसरे ने तीसरे को डांटा, तीसरे ने चौथे को डांटा, तो फिर पांचवे ने तो इरिटेट होके बात कर ही लेनी है।
4: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस। राइट, मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
2: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लिनिया इज जक्सटापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री।

0: गोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज, माय नेम इज फ्रैंकी।
2: नो
1: सेबेस्टियन।
2: नो
1: गोल्डी सोल्डी।
2: नो एंथनी गोंसाल्विस।
0: ओह यस।

0: अहो ऐकलत का रेडिओ पुणेरी
1: विथ ब्रह्मा कुमारी। नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। वेलकम सिस्टर।
2: ओम शांति।
1: एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन।
2: थैंक यू।
1: बीइंग डिवाइन की एक बड़ी अच्छी पॉइंट लगी लास्ट टाइम मुझे कि किस तरह हम भी खुश रहें और अगले को कैसे महसूस कराएं, उसको भी खुशी दें। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो छोटा बड़ा, ही इज माई ड्राइवर, ही इज माई कुक, ये हमारा बॉस है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बीवी है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरे से उम्र में बड़ा है, ये उम्र से छोटा है, ये सारी बातें इतने जन्मों जन्म से यहाँ भरी हुई है मेरे अंदर, वो थोड़ा कहीं ना कहीं वो आ जाता है।
2: वो आ जाता है क्योंकि बहुत समय से वो हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन चुका है। वो सच भी है कि कोई हमसे बड़ा है, कोई हमसे छोटा है, सच है। कोई हमसे उम्र में बड़ा है, छोटा है, वो भी सच है। कोई औहदे में बड़ा है, छोटा है, कोई रिश्ते में बड़ा है, छोटा है, वो सच है। इट्स नॉट दैट इट्स नॉट ट्रू, इट्स ट्रू। बट व्हेन दैट बिकम्स माय कॉन्शियसनेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन दैट बिकम्स माय आइडेंटिटी, देन अ लॉट ऑफ थिंग्स विल चेंज।
1: दैट्स अ लवली पॉइंट। मतलब व्हेन दैट बिकम्स माय आइडेंटिटी, मतलब एज एन एक्टर अगर मैं कोई डाकू का रोल कर रहा हूँ और घर पे आके भी डाकू बनता रहूँ, तेरी आइडेंटिटी ही मैं तो डाकू हूँ जी, डाकू हूँ जी। आई मीन इट्स सो ब्यूटीफुल,
2: दैट बिकम्स माय आइडेंटिटी ना। आप मालिक हैं, एक आपके यहाँ कोई ड्राइवर है। दिस इज अ फैक्ट, दिस इज द ट्रूथ, नोबडी कैन डिनाई दैट दिस इज द ट्रूथ। लेकिन जब आप उसके बारे में सोचते हैं

0: या उसके साथ व्यवहार में आते हैं, अगर ये रोल्स जो हम प्ले कर रहे हैं ये हमारी कॉन्शियसनेस, ये हमारी आइडेंटिटी बन जाए, तो वो हमारी सोच, बोल और व्यवहार पे फर्क डाल देगी।
1: सही बात।
0: एक होता है कि हम रोल प्ले कर रहे हैं कि ये ड्राइवर का रोल प्ले कर रहा है, मैं मालिक का रोल प्ले कर रहा हूं। फिर आप कहीं जाएंगे, कोई और आपसे पोजीशन में बड़ा होगा, आप किसी से छोटे होंगे, वो भी हो सकता है। तो हर जगह हम अलग अलग रोल्स प्ले कर रहे हैं, लेकिन जब हमारा रोल हमारी आइडेंटिटी या कॉन्शियसनेस बन जाती है तो हमारी सोच और व्यवहार में बहुत फर्क आ जाता है। एंड दैट्स व्हाई दैट ट्रू आइडेंटिटी द कॉन्शियसनेस में रहे के हुए माए बहुत सारी चेन पे उसका फर्क पड़ जाएगा। अगर हम सारा दिन में अपने इस इनर प्रोसेस को देखें तब हमें समझ में आएगा कि ट्रू आइडेंटिटी पता होना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। एवरी थॉट वी क्रिएट, सारा दिन में अब देखो, जैसे ही आप एक थॉट क्रिएट करते हैं, जस्ट क्रिएट एनी थॉट जस्ट नाउ, जैसे ही आप एक थॉट क्रिएट करेंगे, इमीडिएटली जो सेकेंड चीज फॉलो होगी, व्हाट विल दैट बी?
1: जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ बहुत गर्मी है,
0: हाँ ठीक है, तो दिस इज अ थॉट। तो जैसे ही एक थॉट क्रिएट की, सेकेंड चीज क्या फॉलो होगी?
1: व्यवहार में मैं बोलूं पानी दो, कहीं से पंखा
0: लाओ, व्यवहार में आएगा, लेकिन बीच में एक स्टेज मिस हुई है।
1: क्या?
0: पहले एक थॉट क्रिएट होती है, जैसी थॉट क्रिएट होती है वैसा आप फील करते हैं।
1: ओके,
0: सपोज आप किसी से मिलते हैं, आप एक थॉट क्रिएट करते हैं वंडरफुल पर्सन। जैसे ही थॉट क्रिएट की वंडरफुल पर्सन, यू फील नाइस मीटिंग दैट पर्सन।
1: उल्टा नहीं होता
0: क्या?
1: पहले मैंने फील किया कि गर्मी है या वंडरफुल है।
0: इसी सीन में अलग अलग लोग अलग अलग थॉट क्रिएट करेंगे। किसी और को यहीं पे ठंडक लग रही होती है, डिपेंडिंग ऑन रेफरेंस टू व्हाट दे आर यूज्ड टू।
1: और वो वंडरफुल पर्सन नॉट वंडरफुल लगे किसी को।
0: किसी को, यस एब्सोल्युटली। इट विल फर्स्ट, द माइंड विल फर्स्ट क्रिएट अ थॉट। आपके सामने कोई खाने की चीज आई, आप एक थॉट क्रिएट करते हैं पहले उसके बारे में, फिर अच्छा फील होता है, वाह आज आइसक्रीम है, यू फील नाइस।
1: पुराना टेस्ट याद आता है फिर।
0: हाँ, वो रीजन हम देखेंगे क्यों वो हो रहा है, लेकिन थॉट जो क्रिएट करेंगे वो फील होगा फिर। इसीलिए कई बार हम अपने आप को थॉट लेवल पे नहीं चेक कर पाते, हम फीलिंग लेवल पर चेक करते हैं। हाउ एम आई फीलिंग टुडे? तो समटाइम्स वी से आई एम फीलिंग वेरी लो टुडे, है ना? जैसे हमें ये लगे आई एम फीलिंग वेरी लो टुडे, आई नीड टू ओनली पॉज एंड थिंक, क्या क्या सोच रहे थे आज सारा दिन? जो सोच रहे थे वो फीलिंग में ट्रांसलेट हो चुका है।
1: ओके,
0: आई एम फीलिंग वेरी नाइस टुडे, क्या सोच रहे थे आज? द सेकेंड स्टेज है फीलिंग, दिस इज आवर इनर वर्क। देखिए ना, इनर वर्क पे हमें अब अटेंशन चाहिए ताकि सब कुछ, हमारा जो परफॉर्मेंस है वो परफेक्ट चले। जैसी थॉट वैसी फीलिंग। अब जैसी फीलिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो हमारा एटीट्यूड बन जाता है। किसी के प्रति हमने बार बार वही थॉट क्रिएट की, वैसा ही फील किया उनके बारे में, तो हमारा एक जनरल एटीट्यूड उनके बारे में क्या हो जाएगा? ये है ही ऐसे, या ये है ही ऐसे, बहुत अच्छे, दिस इज माई एटीट्यूड नाउ। सो थॉट, फीलिंग, एटीट्यूड, ये इनर प्रोसेस है, ये अंदर हो रहा है, बाहर नहीं दिख रहा किसी को। डिपेंडिंग ऑन ये तीन स्टेजेस जो अंदर हुई, थॉट, फीलिंग, एटीट्यूड, फिर आप व्यवहार में आएंगे।
1: थॉट, फीलिंग, एटीट्यूड,
0: अंदर बन गया, ये बाहर नहीं दिखता, इसको हम कहेंगे संकल्प। संकल्प, फिर उससे कैसे हमने महसूस किया और क्या हमारी वृत्ति बनी, एटीट्यूड हमारा बना, उस एटीट्यूड से हमारा नजरिया, दृष्टि भी बनती है, पर्सपेक्टिव। फिर हम व्यवहार में आते हैं, व्यवहार में बहुत बाद में आ रहे हैं, तीन चार चीजें अंदर हो चुकी हैं सारी, थॉट, फीलिंग, एटीट्यूड, पर्सपेक्टिव, सब यहां हो गया। फिर व्यवहार में आए, टाइम बीता बीच में। पहली चार स्टेजेस के बारे में हम कई बार अवेयर ही नहीं होते, हम सिर्फ कौन सी स्टेज को देख रहे होते हैं, मैंने कैसा व्यवहार किया। अब अगर मुझे अपने व्यवहार को चेंज करना है तो मुझे ये इनिशियल स्टेजेस पर चेंज कर

0: थॉट, फीलिंग, एटीट्यूड, एक्शन, ये पूरी हमारी अंदर की फैक्ट्री है कि कैसे ये मैकेनिज्म वर्क करता है। हु एम आई और वो आई के अंदर सारा दिन क्या हो रहा है, अगर हमें ये मैकेनिज्म नहीं पता होगा तो हम अपनी फैक्ट्री का पूरी तरह से ध्यान नहीं रख पाएंगे। और हम इस फैक्ट्री से निकलता हुआ जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेंगे। अगर कोई मालिक कहे कि मेरी फैक्ट्री से ये निकल रहा है, सामने वाला कहे तो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, क्या करूं मुझे तो पता नहीं है, तो अपने आप निकलता जा रहा है। आज हमारे बोल अपने आप निकल रहे हैं, हमारे एक्शंस अपने आप हो रहे हैं, कहीं किसी का हाथ अपने आप उठ रहा है, किसी मुंह से अपने आप निकल रहा है। ये जो अपने आप प्रोडक्ट्स बाहर निकल रहे हैं, दिस इज बिकॉज वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट इनर प्रोसेस दैट इज गोइंग इनसाइड। सो नाउ लेट्स टेक इट स्टेप बाय स्टेप। थॉट, फीलिंग, एटीट्यूड, पर्सपेक्टिव, नजरिया, एक्शन। एक्शन मीन्स वर्ड और बिहेवियर, एनीथिंग, एक्शन। अब कोई भी चीज अगर एक्शन में आ गई, फिर कोई एक्शन हमने बार बार रिपीट किया तो वो हमारी बन गई आदत,
1: संस्कार, हैबिट,
0: आदत बन गई। तो आदत भी कहां से बनी, स्टार्टिंग फ्रॉम
1: थॉट।
0: थॉट अगर थॉट में नहीं आती तो आदत में नहीं आएगी। आदत को बदलना है, कहां बदलना पड़ेगा, चेंज इट एट द लेवल ऑफ थॉट। अब वी हैव सो मेनी हैबिट्स, सारी हमारी आदतों का जो पैकेज है उसको हम कहेंगे इनकी पर्सनालिटी। ये व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व इज अ पैकेट ऑफ ऑल माय हैबिट्स, दिस इज द सम टोटल, हु एम आई, दिस इज माय पर्सनालिटी। कहां से बनी पर्सनालिटी, थॉट। अब ये पर्सनालिटी हर स्टेप पे कर्म में जा रही है, तो नेक्स्ट स्टेज क्या बनेगी, थॉट, फीलिंग, एटीट्यूड, एक्शन, रिपीटेड हैबिट, हैबिट मींस कर्म, हैबिट, ऑल माई हैबिट्स पुट टूगेदर, पर्सनैलिटी। अब ये पर्सनैलिटी सारा दिन में इतना कुछ कर रही है, नेक्स्ट स्टेज क्या बन रही होगी,
1: मेरा फ्यूचर,
0: मेरा फ्यूचर विच मीन्स माई डेस्टिनी, मेरा फ्यूचर, क्योंकि मेरा कर्म, मेरी पर्सनैलिटी, मेरा फ्यूचर मतलब मेरा भविष्य।
1: तो थॉट से लेके सीधा
0: डेस्टिनी तक,
1: जिसले सारे का मैं पता नहीं सा, सीधा नीचे से लेके ऊपर।
0: अगर शुरू का नोट ठीक नहीं रहा,
1: हाँ, तो पूरा एंड तक साफ बराबर नहीं आएगा।
0: अब अगर डेस्टिनी में कुछ चेंज करना चाहते हैं, पर्सनालिटी में कुछ चेंज करना चाहते
1: हैं, तो आपको अपना प्रॉपर सा को ठीक करो, तो ऊपर का सा भी,
0: बीज,
1: हाँ, रे भी ठीक आएगा, ग भी आएगा, म भी,
0: ऑटोमेटिकली सारा कुछ ठीक आ जाएगा। आज हम अपनी डेस्टिनी को ठीक करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, वो भी हम बाहर कर रहे हैं कि डेस्टिनी मेरी कैसे बदल जाए, मैं क्या पहनूं, घर में क्या टांगूं, क्या लटकाऊं, क्या ऐसा करूं जिससे मेरी डेस्टिनी बदल जाए, मेरी पर्सनालिटी चेंज हो जाए, मेरी आदतें बदल जाए। आदतों को भी हम बाह्य लेवल पर चेंज करने की कोशिश करते हैं, लाइक न्यू ईयर डे है, बर्थडे है, आज से आई विल डू दिस, थोड़े दिन के बाद इट विल गो बैक टू द सेम,
1: न्यू ईयर से कर लेंगे।
0: वेरी रिसेंटली आफ्टर लास्ट ईयर 31st December, तो 5th January को न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था फर्स्ट पेज पे। वो आर्टिकल एक इंटरव्यू था उन लोगों का जो सिगरेट और टबैको बेचते हैं, वेंडर्स जो है, तो उनका आर्टिकल था। तो उन्होंने कहा हर साल के पहले 5 और 6 दिन हमारा जो बिजनेस है
1: तो
0: बिल्कुल डिक्लाइन हो जाता है। कहते लेकिन हमें कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि हमें पता होता है कि 6-7 तारीख तक
1: डबल हो जाएगा,
0: सारे वापस आ जाएंगे। दिस इज हाउ मच पावर वी हैव ऑन चेंजिंग आर हैबिट। अगर हम उसको बाहर के लेवल पर करेंगे, सिर्फ कि आज से मुझे ये नहीं करना है, उसके पीछे की कॉन्शियसनेस क्या थी, थॉट क्या थी, अंडरस्टैंडिंग क्या थी, एटीट्यूड क्या बनाया, उसको नहीं चेंज किया, सिर्फ हैबिट पर एक्सटर्नली वर्क किया, पुरानी आदतों पर वापस चले जाएंगे। तो डेस्टिनी, पर्सनालिटी, हैबिट, व्यक्तित्व, बात करने का तरीका, एक्शन, कर्म, ये सब को बाहर नहीं चेंज करना, इनसाइड। अब इनर स्टेज पे अगर एक भी स्टेज पे अगर गलती हो गई तो डेस्टिनी पर असर पड़ जाएगा। इफ आई कीप दिस फॉर्मूला इन फ्रंट ऑफ मी, माय थॉट लीड्स टू माय
1: डेस्टिनी।
0: कितने ध्यान से सोचेंगे, मेरी सोच मेरा भविष्य बना रही है।
1: घंटों घंटों डेली लोग सारेगामा जब गाना सीखते हैं,

0: लेके बैठे रहते एक ही स्वर, ताकि वो एंड का सा करेक्ट आए ऊपर तक, ऊपर से नीचे नहीं आते।
1: अभी हमने क्या सोचा था, हम एक्चुअली ऊपर से नीचे जा रहे हैं जीवन में। हम क्या कहते हैं, भाग्य अच्छा होगा, मतलब भाग्य अच्छा होगा, मेरे साथ सब अच्छा होगा, तब मुझे अच्छा फील होगा, आई फील गुड अबाउट माई लाइफ। तो हमने सोचा अगर भाग्य अच्छा तो सोच अच्छी। तो प्रोसेस प्लांट में वी वर ट्राइंग टू गो बैकवर्ड्स। ट्रूथ इज सोच अच्छी तो भाग्य अच्छा,
0: सोच अच्छी तो फिर कर्म अच्छे, फिर कर्म अच्छे तो भाग्य अच्छा।
1: तो वी हैव टू गो इन द राइट ऑर्डर। तो नाउ इट्स इम्पोर्टेंट कि हमारी हर सोच कितनी प्योर और डिवाइन हो, ताकि हमारा भाग्य वैसा बने। अब जैसे आपने कहा, हमारी सोच भी किस आधार से बनती है?
0: करेक्ट,
1: राइट। क्योंकि सोच भी एक एनर्जी है जो हमने क्रिएट की। एवरी थॉट वी क्रिएट इज एनर्जी। तो वो एनर्जी का भी सोर्स क्या है? तो वो सोच के तीन फैक्टर्स है, जिसको हम कहेंगे तीन क्राइटेरिया, किस बेसिस पर हमारी वो सोच क्रिएट होगी। क्योंकि कई बार हम अपनी थॉट्स को चेंज करना चाहते हैं। लॉट ऑफ पीपल वी डूइंग पॉजिटिव थिंकिंग कोर्सेस। दुनिया में भी लोग किसी भी बात के लिए कहते हैं पॉजिटिव सोचो ना, पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव कैसे सोचो, बात ही ऐसी थी, मुझे चिंता तो होनी थी, बात ही ऐसी थी, डर तो लगना ही था, पॉजिटिव कैसे सोच सकते हैं इसमें? इसका मतलब थॉट लेवल पर भी चेंज ऐसे नहीं आ सकता जब तक थॉट से भी हम थोड़ा सा पीछे नहीं जाएंगे। कि थॉट क्रिएट करने का भी क्राइटेरिया कौन? तीन। फर्स्ट, इन्फॉर्मेशन। जो आपने कहा कि पेरेंट्स कुछ कह रहे थे, छोटे बच्चे ने सेम बात कहने शुरू कर दी, तो उसने थॉट कहाँ क्रिएट की? की बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन जो उसको पेरेंट्स से बच्चे को मिली।
0: इन्फॉर्मेशन भी मिली, उनका एटीट्यूड भी देखा।
1: वो इन्फॉर्मेशन, एटीट्यूड भी तो एक इन्फॉर्मेशन है ना। इन्फॉर्मेशन सिर्फ वो नहीं होता जो हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। इन्फॉर्मेशन मीन्स हर चीज जो हम अंदर लेते हैं। ये हर चीज जो हम अंदर ले रहे हैं अपनी इन सारी कर्म इंद्रियों के द्वारा। इन्फॉर्मेशन कैन ऑल्सो बी वाइब्रेशंस जो हम अंदर ले रहे हैं, वो हमारी सोच का हिस्सा बनेंगी। अगर मुझे आपसे अभी नेगेटिव वाइब्रेशन आ रही हो, आप मेरे बारे में कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, अंदर नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है, आई एम कंज्यूमिंग दैट नेगेटिव वाइब्रेशन एंड आई विल क्रिएट अ नेगेटिव थॉट। द इन्फॉर्मेशन जो हम अंदर लेते हैं वो बहुत बड़ा सोर्स है हमारी सोच का। तो जो हम कुछ दिन पहले देख रहे थे कि हम मीडिया से क्या लेते हैं, हम पढ़ते क्या हैं, हम देखते क्या हैं, हम सोशल मीडिया पे देखते क्या हैं, दिस ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल।
0: सेलफोन्स हैं, लोग हैं, अखबार है,
1: एवरीथिंग इन्फॉर्मेशन। तो जैसी मेरी इन्फॉर्मेशन वैसे मेरी सोच। इसलिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम जब आते हैं, फर्स्ट चीज जो हमें समझ में आती है कि सुबह सुबह हम अपने अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन भरते हैं।
0: अच्छा,
1: सुबह सुबह, क्योंकि जो हम अंदर भरेंगे फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, उसी से हमारी थॉट्स क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। तो कहां हम पहले अखबार पढ़ते थे, या आजकल लोग न्यूज चैनल भी ऑन कर देते हैं, तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी क्या है? उसमें अगर वायलेंस है, टेरर है, पेन है, डिवेस्टेशन है, अटैक्स है, नेचुरल कलामिटीज है, एक्सीडेंट है, पॉलिटिकल केओस है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, न्यूज वही दिखा रही है ज्यादा, और हमने अंदर भर लिया सुबह सुबह। सुबह सुबह उठे थे, ब्लॉटिंग पेपर एकदम क्लीन था, ग्रहण करने की शक्ति हाईएस्ट थी, इन्फॉर्मेशन कौन सी अंदर भरती है?
0: सो सैड सिस्टर, मैं लोगों को देखता हूँ सुबह उठ के न्यूज पेपर एंड सिगरेट टूगेदर। एक तो यहाँ मन को भी भर रहे हैं, लंग्स को भी भर रहे हैं, बाहर के वातावरण को भी खराब कर रहे हैं।
1: आजकल तो साथ में न्यूज चैनल पे टीवी पे भी चलता है।
0: हाँ, वो भी साथ साथ, ऊपर साथ में कप ऑफ चाय भी चल रही है, नहा भी बाद में रहे।
1: क्यों? इम्पैक्ट ऑफ टीवी चैनल विल बी मोर देन द न्यूज पेपर ऑल्सो।
0: उसमें सब कुछ है, साउंड है,
1: सेंस ऑर्गन्स को कितना वो कैप्चर कर रही है।
0: साउंड भी है, विजुअल्स भी है, इम्पैक्ट्स हैं।
1: इम्पैक्ट, आप उस सीन को फील करते हैं ना। सेम थिंग अगर कहीं कुछ हुआ है, आप उसको अगर अखबार में पढ़ते हैं कि यहाँ पे फ्लड्स आए, यहाँ पे एक टेररिस्ट अटैक हुआ, ये भी एक न्यूज है, बट इसको अगर हम अखबार में पढ़ेंगे तो उसका कितना इम्पैक्ट होगा, और उसी को अगर हम
0: विजुअली देखेंगे और साउंड भी,
1: एंड पूरा जो इमोशंस का हमें मिलता है ना वाइब्रेशन, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, न्यूज़पेपर से वो नहीं मिलेगा. न्यूज़पेपर से सिर्फ क्या मिलेगा, सो मेनी पीपल अफेक्टेड, सो मेनी पीपल लॉस्ट लाइफ, सो मेनी पीपल एक्सीडेंट, सो मेनी पीपल इंजर्ड. लेकिन टीवी पर जब उसको देखेंगे वो इंजरी एक्चुअली दिखेगी, वो डेड बॉडीज दिखेगी, रोते. नाउ वी फील कि ये नॉर्मल है, मतलब टीवी है देखेंगे, अर्ली मॉर्निंग भरा है अपने आप को, एंड जैसी इंफॉर्मेशन वैसी थॉट्स, ये हमारा भोजन है सुबह का, इसके बेसिस पे सारा दिन की ऊर्जा निर्माणित होगी. तो सुबह सुबह कौन सा भोजन अंदर डालेंगे, दुनिया में क्या हो रहा है हमें पता लगना है, हमें जानना भी है, हम देखना चाहते हैं तो देखना भी है. सुबह सुबह सुबह सुबह कुछ अच्छा नहीं भरेंगे तो फिर पॉजिटिव थिंकिंग जो हम कह रहे हैं वो होगी कैसे फिर. देन वी कांट जस्ट से टू ईच अदर थिंक पॉजिटिव. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. वेयर इज द पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन रॉ मटेरियल दैट्स गॉन इन. सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि हम क्या देख रहे हैं, कितना देखते हैं उसको, कितना सुनते हैं. कई बार इतना स्टैटिस्टिक्स है इस पर कि किसी और शहर में, किसी और देश में हुआ सीन कुछ हुआ which was a big trauma, लेकिन उसका असर सामने व्यूअर के ऊपर उतने दर्द का हो सकता है. जैसे मूवी देखते हैं तो लोग रोते हैं ना, लोग रो सकते हैं ना उस सीन को देखते हुए. उस इंफॉर्मेशन का इम्पैक्ट उतना होता है कि वो सीन देखने वाले के अंदर वो सेम इमोशन क्रिएट कर देती है.
0: सही बात है.
1: तो यहाँ इमोशन क्रिएट हो गया पहले,
0: लिविंग दैट,
1: but you started creating that.
0: You live that moment.
1: So it's you don't just live that moment.
0: You create.
1: You have created that emotion. We have created that emotion here. Now that scene is not there, it's here. वो अब मेरी सोच का, फिर मेरी फीलिंग का, फिर धीरे धीरे मेरे एटीट्यूड का, मेरे कर्म का, मेरा भाग्य का हिस्सा बन सकती है. क्योंकि वी हैव नॉट लर्नड के डिटैच होकर कैसे उसको देखना है. हम मूवी के सीन के अनुसार रोते हैं, हंसते हैं, डरते हैं, सब कुछ सीन के अनुसार हम करते हैं. मतलब हमारा इमोशन सीन के इमोशन के साथ जुड़ गया. कितना इम्पैक्ट है ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन द कॉन्शियसनेस इनसाइड. वी नीड टू बी सो केयरफुल. एक इंटरव्यू था, पैनल डिस्कशन था, तो उसमें कुछ टीवी सीरियल्स जो बनाते थे वो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर भी थे, तो जो एंकर थे उन्होंने कहा कि आप जो दिखा रहे हो वो समाज में होने लग गया है ज्यादा, यू नो, लाइक सपोज डिवोर्स और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स और एनीथिंग, कि जो हिंदी सीरियल में आप टीवी पे दिखा रहे हो वो समाज में होने लग गया है. तो उन्होंने वहां से कहा, हम वो दिखाते हैं
0: जो समाज में
1: जो
0: होता
1: समाज
0: है.
1: में हो रहा है. सो नाउ इट वॉज विच वे इज ट्रू, कि जो समाज में हो रहा है वो दिखा रहे हैं, या जो वो दिखा रहे हैं वो समाज में हो रहा है. तो फाइनल जब डिस्कशन पूरा हुआ तो उसका जो रिजल्ट निकला वो ये कि समाज में कुछ कुछ जगह कुछ कुछ परसेंटेज में वो होता है. उसको हम उठाते हैं और हम एक सीरियल या एक मूवी बनाते हैं, उसको करोड़ों लोग जब देखते हैं तो वो कई लाखों के जीवन में होने लग जाता है. पहले वो कुछ लोगों के जीवन में हो रहा होता है.
0: मैं एक जगह पढ़ रहा था सिस्टर कि एक नेगेटिव और वायलेंट थॉट एक आदमी क्रिएट करता है तो जो वीकर ब्रेन कहे, उसने तो किताब में तो वीकर ब्रेन लिखा, दूसरा बंदा उसको तुरंत कैच करता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर मॉब वायलेंस, और जो सड़कों पे जो होता है वायलेंट लोग हो गए, लाठी, ये वो. ही रोड लाइक दिस. अभी मेरे समझ में ये बात,
1: इन्फॉर्मेशन, दैट्स व्हाई प्ले सो मच
0: यहाँ तो ना role. टीवी ना कैमरा ना न्यूज़पेपर ना कुछ
1: right.
0: एक आदमी की स्ट्रांग थॉट और दूसरे का वीक.
1: दैट्स व्हाई वी सेड इवन वाइब्रेशंस भी तो इन्फॉर्मेशन है ना. वाइब्रेशन भी इन्फॉर्मेशन है,
0: उनको उनको भी रोकना पड़ता है,
1: इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है उसको भी रोकने के लिए। अब आपने कहा वो इन्फ्लुएंस किसको करेगा, वीकर माइंड को। तो वीकर माइंड को मुझे अब क्या बनाना है, स्ट्रॉन्गर माइंड बनाना है। स्ट्रॉन्गर माइंड इसलिए बनाना है ताकि दूसरे की वाइब्रेशन मुझ पर प्रभाव ना डाले। अब स्ट्रॉन्गर माइंड बनाने के लिए इन्फॉर्मेशन फिर सारा दिन कौन सी डालनी है, फिर बेटर, प्योरर, पावरफुल, पॉजिटिव, स्ट्रॉन्गर इन्फॉर्मेशन जो मुझे पावरफुल बनाए वो इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में फर्स्ट चेंज लाने के लिए थॉट पे हमें चेंज लाना है। फर्स्ट चेंज हम करते हैं कि सुबह कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन अंदर नहीं भरनी है। दिन में भी बहुत ध्यान रखना है कि अंदर क्या जा रहा है, लेकिन सुबह सुबह नेगेटिव कुछ नहीं भरना। लेकिन नेगेटिव तो बंद किया, जैसे बहुत सारे भाई बहन कहते हैं अच्छा हमने न्यूज़पेपर बंद कर दिया, हमने टीवी चैनल सुबह नहीं देखते, हमें
0: नेगेटिव सोचना है।
1: नेगेटिव सोचने को हमें चेंज करना है, लेकिन नेगेटिव इन्फॉर्मेशन बंद किया तो कोई प्योर इन्फॉर्मेशन डाला? आप घर पे बैठे हैं, आपने टीवी देखना बंद किया सुबह, अखबार पढ़ना भी बंद किया, लेकिन उसकी जगह डाला कुछ और?
0: नहीं,
1: दैट हैज टू बी डन। इफ आई वॉन्ट अ प्योर थॉट आई विल हैव टू फिल माई सेल्फ विद प्योर इन्फॉर्मेशन। तो अगर हमें ये छोटा सा परिवर्तन भी लाना है तो हमें दिन की शुरुआत को, जिसके लिए हम कहते हैं ज्ञान, डिवाइन नॉलेज, डिवाइन संस्कार चाहिए ना, तो डिवाइन नॉलेज हम अपने अंदर भरे। तो इन्फॉर्मेशन विल इन्फ्लुएंस थॉट्स। सेकेंड चीज जो इन्फ्लुएंस करती है वो है पास्ट एक्सपीरियंसेस। पास्ट में हमारे साथ कुछ हुआ वो रिकॉर्ड हो गया यहाँ पर। जब सेकेंड टाइम स्टिमुलस सामने आएगा तो उस स्टिमुलस के सामने जो मेरी पास्ट इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड है उसके आधार से थॉट क्रिएट हो जाएगी।
0: मेमोरी बैंक में भरा पड़ा है।
1: इसीलिए मेमोरी बैंक भी बहुत ध्यान से क्या उसमें स्टोर हो रहा है। नहीं तो क्या होगा, जो पास्ट की इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड है हर बार जब स्टिमुलस आएगा सेम क्वालिटी ऑफ थॉट क्रिएट होती जाएगी एंड वी विल मेक द पास्ट इनटू आवर प्रेजेंट एंड देन इनटू आवर फ्यूचर। बट इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पास्ट में किसी के साथ कुछ बात हुई, हमने हर्ट क्रिएट की, नेक्स्ट टाइम हम उनको मिलने से पहले ही एक थॉट क्रिएट कर लेंगे, इस बार पता नहीं क्या होगा जब उनसे मिलेंगे। पास्ट एक्सपीरियंस। तो इन्फॉर्मेशन हुई, पास्ट एक्सपीरियंस हुआ, एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर माई बिलीफ सिस्टम। हम क्या बिलीव करते हैं, क्या हम मानते हैं। जैसे हमने कई बार देखा है एंगर इज नेचुरल, टेंशन तो होती है, ये हमारा बिलीफ सिस्टम था। तो अगर मेरे को लगता है कि गुस्सा तो नेचुरल है, ये मेरा बिलीफ है, तो कोई भी परिस्थिति आएगी तो मेरी सोच कौन सी क्रिएट होगी?
0: नेचुरल जो है।
1: तो बिहेवियर में क्या आएगा, और वही मेरी डेस्टिनी बन जाएगी। अब अगर हमने अपनी बिलीफ को चेंज किया कि नहीं गुस्सा तो अननेसेसरी है, तकलीफ देता है बहुत सबको, पेशेंस
0: सबको क्या
1: है? मुझे यस। अब मैंने अपने बिलीफ को चेंज करना है, हैबिट को नहीं चेंज कर सकते। पहले हम क्या करते थे, हैबिट को चेंज करते थे। हमें दुनिया में सिखाया जाता था 1 से 10 गिनो गुस्सा टल जाएगा, पानी पी लो बीच में गुस्सा टल जाएगा। कहाँ टलता था, पूरा गुस्सा आ गया करके फिर 1 से 10 याद आता था, फिर पानी याद आता था, बिकॉज वी वर ट्राइंग टू डू इट एट द लेवल ऑफ हैबिट। बिलीफ सिस्टम को चेंज करना था कि नहीं, पेशेंस इज नेचुरल, पीस अच्छी लगती है हर एक को, संस्कार हर एक की अलग अलग है। अंडरस्टैंडिंग को चेंज किया, परिस्थिति आई, सोच बदली, कर्म बदला, भाग्य बदल गया। अब बिलीफ में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बिलीफ है वो है हु एम आई, मैं कौन हूं। वो आंसर उस बिलीफ का हमारी सोच बनेगी, हमारी फीलिंग, हमारा व्यवहार, हमारे संस्कार, हमारा भाग्य। इसीलिए हु एम आई का आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हु एम आई फिल इन द ब्लैंक में कोई रॉन्ग आंसर लिख दिया जो सच नहीं है तो उसका असर भाग्य तक जाएगा। एंड दैट्स व्हाई वी नाउ नीड टू फाइंड आउट द ट्रू आइडेंटिटी दैट हु एम आई।
0: Lovely, sister. That's wonderful. अगले एपिसोड में हो हम आई को कंटिन्यू करते हैं।
1: थैंक यू।
0: ओम शांति, ओम शांति।
2: आ एवरी थॉट इज फॉलोड बाय अ फीलिंग, फीलिंग्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिवेलप आ एटीट्यूड। attitude comes out into action. Any action done repeatedly becomes a habit. All our habits put together is our personality. Our personality creates our destiny. If we try to bring a change in our habits, personality or destiny on an outer level, then there are chances that we revert to our old self. Change needs to be created in the consciousness, thoughts and attitude, and then brought into habit. The quality of thoughts is based on three input factors: information, past experiences and belief system. Everything we read and hear through media and people influences the quality of our thoughts. Let us avoid reading and watching negative news early morning. Past experiences, if stored unresolved in the memory, will push us into creating the same quality thoughts always. We will think and behave with people based on unpleasant past experiences with them, which will create a negative present and future.
1: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 0999 559 660.

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गलती तो गलती हुई ना, दूसरे की गलती को अगर पहली बात हमें कोई राइट भी नहीं है, लेकिन दूसरे की गलती को चेक करने का आपको हक तब है जब आप बिल्कुल परफेक्टली राइट पर है। आप भी गलती करके दूसरे की गलती को सुधारें तो उसकी दूसरे के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस चीज का पड़ेगा ही नहीं। एंड इसीलिए हम सब लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, बट इट्स नथिंग इज रियली वर्किंग, इट वोंट वर्क दैट वे, क्योंकि हम खुद वो गलतियां या उससे भी बड़ी गलतियां कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो खुशियां बांटो।
1: भारत की गाथा को लेकर चलते हैं अब पश्चिम बंगाल की ओर, जो कि भारत के पूर्व में स्थित एक राज्य है। पश्चिम बंगाल पड़ोस में नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम, बांग्लादेश, उड़ीसा, झारखंड और बिहार, और इसकी राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल की मुख्य भाषा बांग्ला। यहाँ नृत्य, संगीत तथा चलचित्रों की लंबी तथा सुव्यवस्थित परंपरा रही है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राममोहन रॉय, बंकिम चंद्र चटर्जी, भूदेव मुखोपाध्याय, स्वामी विवेकानंद जैसे मौलिक सामाजिक चिंतकों की भूमि रही है।
2: A galaxy of eminent speakers are scheduled to address us, and it gives us great pleasure to once again invite Swami Vivekananda to speak. His subject for today, Why We Disagree.
3: I will tell you a little story. You have heard the eloquent speaker who has just finished. Let us cease from abusing each other. And he was very sorry that there should be always so much variance. But I think I should tell you a story which would illustrate the cause of this variance. A frog lived in a well. It had lived there for a long time. That would do credit to our modern bacteriologists. In this way, it went on and became a little sleek and fat. Well, one day, another frog that lived in the sea came and fell into the well. Where are you from? I am from the sea. The sea? How big is that? Is it as big as my well? And he took a leap from one side of the well to the other. My friend, said the frog of the sea, how do you compare the sea with your little well? Then the frog took another leap and asked, is your sea so big? What nonsense you speak to compare the sea with your well. Well then, said the frog of the well, nothing can be bigger than my well. There can be nothing bigger than this. This fellow is a liar, so turn him out. That has been the difficulty all the while. I am a Hindu. I'm sitting in my own little well and thinking that the whole world is my little well. The Christian sits in his little well and thinks the whole world is his well. The Mohammedan sits in his little well and thinks that is the whole world.
1: चलिए अब जानते हैं कुछ यहाँ की भूगोल के बारे में। पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्व में बांग्लादेश, पश्चिम में नेपाल, उत्तर पूर्व में भूटान, उत्तर में सिक्किम, पश्चिम में बिहार, झारखंड, दक्षिण पश्चिम में उड़ीसा तथा दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है। पश्चिम बंगाल का इतिहास भी अनोखा है। भारत के प्राग ऐतिहासिक काल के इतिहास में बंगाल का विशिष्ट स्थान है। सिकंदर के आक्रमण के समय बंगाल में गंगा रीदई नामक साम्राज्य था। गुप्त तथा मौर्य सम्राटों का बंगाल पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। बाद में शशांक बंगाल प्रदेश के नरेश बने। ऐसा कहा जाता है कि उसने 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उत्तर पूर्वी भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद गोपाल ने सत्ता संभाली और पाल राजवंश की स्थापना हुई। पाल शासकों ने विशाल साम्राज्य का निर्माण किया और लगभग 4 शताब्दियों तक राज्य किया। पाल शासकों के बाद बंगाल पर सेन राजवंश का अधिकार हुआ, जिन्हें बाद में दिल्ली के मुस्लिम शासकों ने परास्त किया। 16वीं शताब्दी में मुगल काल से पहले ही बंगाल पर अनेक मुस्लिम राजाओं और सुल्तानों ने शासन कर लिया। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बंगाल का पहला मुस्लिम विजेता था। मुगलों के पश्चात आधुनिक बंगाल का इतिहास यूरोपीय तथा अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियों के आगमन से आरंभ होता है। सन 1757 में पलासी के युद्ध ने इतिहास की धारा ही मोड़ दी, जब अंग्रेजों ने पहली बार बंगाल और भारत में अपने पांव जमाए। सन 1905 में राजनीतिक लाभ के लिए अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में लोगों के बढ़ते हुए आक्रोश को देखते हुए 1911 में बंगाल को फिर से एक कर दिया गया। इससे स्वतंत्रता आंदोलन की ज्वाला और तेजी से भड़क उठी, जिसका पटाक्षेप 1947 में देश की आजादी और विभाजन के साथ ही हुआ। 1947 के बाद देशी रियासतों के विलय का काम प्रारंभ हुआ। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना। 1956 की सिफारिशों के अनुसार पड़ोसी राज्यों के कुछ बांग्ला भाषी क्षेत्रों का पश्चिम बंगाल में विलय कर दिया।

नवजागरण काल के दौरान भारत में कई प्रभावशाली व्यक्तित्व ने समाज उत्थान के लिए कार्य शुरू किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, श्री अरविंद आदि कुछ प्रमुख नाम हैं। विधवा विवाह, बाल विवाह की समाप्ति और स्त्री शिक्षा को लेकर जागरूक रहे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। वे स्वयं दार्शनिक, शिक्षा शास्त्री, लेखक, अनुवादक, मुद्रक, प्रशासक, सुधारक एवं मानववादी थे। फिर उल्लेख में आते हैं राजा राम मोहन रॉय। यूरोपीय संस्कृति से प्रभावित और तात्कालिक भारतीय समाज की कुरूतियों, सामाजिक व्यवस्था से निराश, जमींदारी प्रथा, छुआछूत की प्रथा, सती प्रथा, महिलाओं की अशिक्षा आदि को लेकर ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर दूर किया। रूढ़िवादिता को दूर करने के प्रयास और सामाजिक जागरूकता को लेकर उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की।

इस गीत के बोल भी आजादी की लंबी लड़ाई में सदा साथ दिया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई की बात की जाए तो गरम दल नेशनल कांग्रेस से संबंध रखने वालों की सूची में अग्रणी नाम सुभाष चंद्र बोस का आता है। आजाद हिंद फौज की स्थापना करना, जय हिंद का नारा जन जन की आवाज बना देना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह युवा वर्ग में जोश की तरह छा गया। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने एक बड़ी सी संगठन को तैयार किया था। गरम दल के एक और क्रांतिकारी जो मात्र 19 साल की उम्र में ही आजादी की लड़ाई में शहीद हुए वो कोई और नहीं खुदीराम बोस थे। 19वीं शताब्दी के एक और ऐसे महान आध्यात्मिक गुरु जिन्होंने भारतीय दर्शन को विश्व प्रसिद्ध कर दिया, हिंदू धर्म के पुनरुद्धारक रूप में भारत में और औपनिवेशिक भारत में राष्ट्रवाद की अवधारणा के लिए विशेष योगदान दिया स्वामी विवेकानंद। विश्व धर्म 1893 संसद में भारत का प्रतिनिधित्व करने वे शिकागो गए और भाषण में सिर्फ एक आवाज गूंज उठी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, मेरे प्रिय अमेरिका के भाइयों और बहनों। सिर्फ इतना ही नहीं, राष्ट्रगान जनगणमन, राष्ट्रगीत वंदे मातरम, रविन्द्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चैटर्जी भी भारत की इसी भूमि की देन हैं। छोटे आकार के बावजूद पश्चिम बंगाल से भारत के सकल घरेलू उत्पादन का लगभग छठा हिस्सा

पश्चिम बंगाल की आर्थिक व्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य के 4 में से 3 व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। यहाँ पटसन, कपास, कागजों की मीलों का प्रमुख केंद्र भाटापारा है। सुंदरवन भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। यहाँ के नरभक्षी बाघ बंगाल टाइगर के नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध है। पूर्ण सुंदरवन 102 द्वीपों का समूह है, जिसमें से 48 बस्ती है। यह लगभग 9630 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल तक फैला हुआ है। लगभग 40 लाख लोग सुंदरवन में रहते हैं। यहाँ अधिकतर लोग 60 से 120 वर्ष पहले आकर बसे और यह लोग पूर्णतः वनों से मिलने वाले साधनों पर आश्रित हैं। इन लोगों की जीविका खेतीबाड़ी, मत्स्य पालन, लकड़ी और शहद संग्रहण से है। यहाँ की संस्कृति भी बहुत खास है। बंगालियों ने हमेशा से ही साहित्य, कला, संगीत और रंगमंच नाटकों को संरक्षण दिया है। बांग्ला साहित्य का आविर्भाव 12वीं सदी से पहले हुआ। हिंदू धर्म के एक सघन भावात्मक स्वरूप चैतन्य आंदोलन को मध्यकालीन संत चैतन्य, जो 1485 से 1533 के दौरान रहे और काफी प्रेरित किया, जिन्हें 19वीं सदी के आरंभ तक बांग्ला कविता के परिवर्तित विकास को आकार दिया। इसके बाद पश्चिम के साथ हुए संपर्क ने एक धूर्त बहुमुखी सृजनात्मक युग की शुरुआत की। आधुनिक युग में अन्य साहित्यकारों के साथ नोबेल पुरस्कार विजेता कवि रविन्द्रनाथ टैगोर, जो 1861 से 1941 के दौरान आए और जिनका योगदान आज भी भारतीय साहित्यिक परिदृश्य पर छाया हुआ है,

0: पे
1: मनोरंजन की यह पहचान करने वाले और कलाकारी को समझने वाले लोग बंगाल में बहुत मौजूद हैं। रंगमंच यहाँ लोकप्रिय है तथा नए कलाकारों के साथ साथ पेशेवर कलाकारों द्वारा मंच प्रस्तुति उच्च कोटि की होती है। यात्रा खुले रंगमंच पर होने वाला पारंपरिक कार्यक्रम है, जिसकी कथा वस्तु अब स्पष्ट रूप से पौराणिक एवं ऐतिहासिक विषयों से समकालीन विषय वस्तु में परिवर्तित हो रही है और यह ग्रामीण एवं शहरी दोनों जगहों पर लोकप्रिय है। कथा काता एक धार्मिक जाप और लोक गीतों पर आधारित ग्रामीण मनोरंजन का एक पारंपरिक स्वरूप है। फिल्म उद्योग सुस्थापित मनोरंजन का एक आधुनिक लोकप्रिय साधन। बांग्ला फिल्मों ने भारतीय कथा वस्तु की उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किए। सत्यजीत राय, तपन सिन्हा, मृणाल सेन, अपर्णा सेन जैसे निर्देशकों के कार्य का विशिष्ट

पश्चिम बंगाल का संगीत बहुत मीठा माना जाता है। यहाँ पारंपरिक संगीत भक्ति और सांस्कृतिक गीतों के रूप में है। रविन्द्रनाथ टैगोर नजरुल गीती द्वारा लिखित एक संयोजित रविंद्र संगीत, जिसे विशुद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीत के साथ साथ पारंपरिक लोक गीतों में पिरोया गया है, बंगालियों के सांस्कृतिक जीवन पर यह सशक्त प्रभाव छोड़ता है।

यहाँ पर दृश्य कला परंपरा के अनुसार मुख्यतः मिट्टी की मूर्तियाँ, पक्की ईंटों, टेराकोटा की कृतियों और सज्जा चित्रों पर आधारित कोलकाता की इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस, द बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट और कोलकाता विश्वविद्यालय की विज्ञान प्रयोगशालाओं ने विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। 19वीं सदी की सुविख्यात भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान सभा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पश्चिम बंगाल में स्थित है। शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा स्थापित विश्व भारतीय विश्वविद्यालय भारतीयता एवं अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंधों के अध्ययन का विश्व प्रसिद्ध केंद्र है। पश्चिम बंगाल में श्रद्धा और सद्भावना से कोई त्योहार मनाए जाते हैं और उनका अंदाज देखने योग्य ही होता है। दुर्गा पूजा सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। इसके अतिरिक्त काली पूजा, सरस्वती पूजा, दीपावली भी धूमधाम से मनाए जाते हैं। बसंत पंचमी, लक्ष्मी पूजा, होली, शिवरात्रि, जन्माष्टमी हो या ईद और क्रिसमस, सभी त्योहार बड़े खुशी से मनाए जाते। बंगाल में आयोजित होने वाले मेलों में गंगा सागर मेला, किंदोली मेला, जाल पेश मेला, राश मेला तथा पोष मेला

त्योहार तो मना लिया, अब चले आपको ले चलते हैं बंगाल की गलियों में घुमाने। वैसे तो पर्यटन के हिसाब से यहाँ कई स्थान हैं, पर उनमें से प्रमुख का है हावड़ा शहर, जो कि पश्चिम बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। पर्यटक स्थलों में हावड़ा ब्रिज पर्यटकों को आकर्षित करता है। हावड़ा ब्रिज के अतिरिक्त पर्यटक यहाँ पर हावड़ा स्टेशन, महान बरगद का पेड़, बेलूर मठ, गारचुमोक, दक्षिणेश्वर काली मंदिर, विद्यासागर सेतु आदि देख सकते हैं, जो बहुत खूबसूरत है। ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। बंगाल का एक और शहर है जलपाईगुड़ी, जो कि खूबसूरत नदियों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ पर चाय के बगानों और जंगल बहुत सुंदर। यहाँ रहने वाले निवासी बड़े मिलनसार और हसमुख हैं। वो जलपाईगुड़ी में आने वाले पर्यटकों का स्वागत बड़े आदर और उत्साह के साथ करते हैं।

0: चलिए इसके बाद बात करते हैं पुरुलिया की, जो पश्चिम बंगाल का आभूषण के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ अटचला और चारचला शैली में बने मंदिर भी प्रसिद्ध हैं। इन मंदिरों के अतिरिक्त बगमुंडी, बिरचंदीनाथ, बुद्धपुर, चौरा और गनपुर पर्यटक स्थल है। अब चलते हैं वर्धमान। यहाँ धान के खेतों के अतिरिक्त विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों जैसे कर्जन गेट, कंचन नगर, 108 शिव मंदिर, मकर और कल्याणेश्वरी मंदिर है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के कुछ और महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र कोलकाता, दीघा, बोक्खाली सी रिजॉर्ट, सागर द्वीप, सुंदरवन, बंदेल, तारकेश्वर, हुगली, शांति निकेतन, दार्जिलिंग, कालिंगपोंग आदि। पश्चिम बंगाल घूमने के लिए समय कम पड़ सकता है, पर खूबसूरत जगहों की यहाँ कमी नहीं, इसीलिए हम अपने सफर को यहीं रोकते हैं। 29 राज्य, एक राष्ट्र, एक कहानी।
1: हमारे साथ जुड़े रहिएगा पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिव सरसु, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माइसेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ऐकलत का
1: ऐतिहासिक सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झक्कास रेडिओ स्टेशन पुणेरी आवाज ऐकत रहा 107.8 FM आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
2: नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना MP छत्तीसगढ़ से आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे और प्रसन्न भी होंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं, आज का हमारा विषय है सहनशीलता सफलता का आधार है। जैसा कि हम सभी देखते हैं कि किसी भी महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहनशीलता का दिव्य गुण धारण करना अति उपयोगी तथा आवश्यक है। विश्व इतिहास बताता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति, विभिन्न धर्मों की स्थापना, महान प्राप्तियों आदि में आने वाली कठिनाइयों, कष्टों, विघ्नों, रुकावटों आदि को सहन करके ही महान सफलताएं प्राप्त हो सकी है। महात्मा बुद्ध, क्राइस्ट, आदि गुरु शंकराचार्य, महर्षि दयानंद, सुकरात व मीरा आदि ने विरोधियों द्वारा डाले गए विघ्नों, अत्याचारों, अपमान आदि को सहन करके ही अपने अपने लक्ष्य को हासिल किया। कुछ ही को तो अपने जीवन का बलिदान भी देना पड़ा। यहाँ पर हम देखते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी शुभ भावना व एक रस अवस्था होनी चाहिए। हम ब्रह्मा कुमार कुमारिया सबसे महान व सर्वश्रेष्ठ आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना के निमित्त बने हैं, तो हमें अपेक्षाकृत अधिक विघ्नों, कष्टों, विरोध, अपमान आदि को सहन करके ही आगे बढ़ना है और हमें सहन करने की मानसिक स्थिति विकसित करनी चाहिए। हम स्वयं के 5 विकारों पर जीत पाकर निर्विकारी बनते हैं, फिर निराकार परमात्मा का सरल ज्ञान तथा सहज राजयोग दूसरों को सिखाते हैं। यह नया निराला अलौकिक अनुपम तथा सामान्य सोच से परे का ज्ञान होने के कारण परिवार व समाज इसका डटकर विरोध करते हैं, परंतु शिव परमात्मा के सहयोग के चलते हमें इतना कष्ट महसूस नहीं होता कि हम सहन ना कर सके। वैसे भी अल्पकाल की सुख शांति के लिए हम भक्ति के कष्टों, लौकिक परिवार व समाज के दुखदायी बंधनों आदि को भी सहन करते ही हैं। भले ही दुखी होकर करें, परमात्मा पिता ने सहनशीलता का वास्तविक अर्थ बताया है कि जब दुख, अशांति, तनाव, क्रोध आदि पैदा करने वाली विपरीत परिस्थितियों में भी व्यक्ति दुखी, अशांत न हो तथा सर्व के प्रति अपनी शुभ भावना व एक रस अवस्था बनाकर रखे, हाँ तभी वह सहनशील कहलाता है। एक तरफ हम देखते हैं कि सहनशीलता के क्या लाभ हैं, इससे लाभ भी हैं, जैसे शक्ति हमें कष्टों को सहन करते देख अन्य लोगों की शुभ भावना व कामनाएं, सहानुभूति व सहयोग प्राप्त हो सकता है। हमारे सत्मार्ग को देख अन्य लोग हमें मन, वचन व कर्म से सहायता भी देते हैं। जैसा कि यज्ञ की स्थापना में हम देखते हैं होता रहा है कि इससे हमारी आत्मशक्ति, आत्मबल व हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, जो हमें सफलता प्राप्त कराता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि इसके एक और लाभ है पवित्रता। सहन करने से हमारा जो है, हमारी जो सहनशीलता है अर्थात पवित्रता भी बढ़ती है। यदि कोई हमसे घृणा करता है, हमारे प्रति अपशब्द बोलता है, हमारी आलोचना आदि करता है, और यदि हम सहन नहीं करते हैं, तो स्वाभाविक है कि ऐसे व्यक्ति के प्रति हमारे मन में अपमान, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि विकार उत्पन्न होंगे ही होंगे। इन सब को सहन करके हम अपनी आत्मा को निर्विकारी बनाकर अपनी पवित्रता अर्थात शील को बढ़ा सकते हैं। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ। और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हैं। हमारा आज का विषय है सहनशीलता ही सफलता का आधार है। एक तरफ हम देखते हैं कि संतुष्टता तथा प्रसन्नता भी होनी चाहिए। परस्पर बातचीत में यदि किसी ने हमारा भद्दा मजाक या अपमान कर दिया तो तुरंत हमारे अंदर असंतुष्टता तथा दुख की महसूसता आ सकती है। ऐसी परिस्थिति में यदि हम सहनशीलता का गुण धारण करके यह समझे कि उस व्यक्ति का ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है, ऐसे पार्ट के लिए वह दया व रहम का पात्र है, इस प्रकार ज्ञान युक्त सहनशीलता के आधार पर अपने दुख व असंतुष्टता की फीलिंग को समाप्त करते हुए हम सदा संतुष्ट व प्रसन्नचित रह सकते हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि इसके लिए शांति भी बहुत जरूरी है। सहनशीलता को अगर इसका गुण अगर आने से क्यों क्या रूपी संकल्प समाप्त होते जाते हैं तथा मन शांत रहने लगता है। शांति आने से सहन करने की शक्ति अपने आप वृद्धि को पाती रहती है। सहन शक्ति आने से समाने की शक्ति, परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति व अंतर्मुखता आदि सभी शक्तियां अपने आप आ जाती है। इस प्रकार सहनशील आत्मा शीघ्र ही मास्टर सर्वशक्तिमान बन बाप समान स्थिति को प्राप्त कर सकती है। एक और हम देखते हैं सहनशीलता कैसे प्राप्त करें, ये भी हमें देखना है। तो इसके लिए एक मुख्य आधार है अमृत वेला। अमृत वेला यानी कि एकदम सुबह का जो समय होता है वो होता है अमृत वेला। सहनशीलता के महत्व को ध्यान में रखते हुए अमृत वेले में शिव बाबा से इस गुण की दिव्य किरणों को आत्मा में महसूसता के साथ भरते रहे। जब तक कि आत्मा इसका स्वरूप न बन जाए, इसके साथ संकल्प भी ले कि आज सारा दिन सहनशील बनकर रहना है और सायंकाल में बैठकर चार्ट में चेक भी करें कि कितनी सफलता मिली। सर्वशक्तिमान आत्मा बाप की याद से ही सहन शक्ति व कोई भी शक्ति आत्मा को प्राप्त हो सकती है, इसलिए याद को बढ़ाते रहना चाहिए। जब तक कि निरंतर याद ना बन जाए, यदि हम याद में हैं तो किसी भी परिस्थिति को सहज ही सहनशील होकर पार कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो मैं ज्योत्सना फिर से आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हुए चलते हैं। आज का हमारा विषय है सहनशीलता ही सफलता का आधार है। एक तरफ हम देखते हैं कि सहनशीलता में ये भी हमें देखना हिसाब किताब का चुप्तू होना। कोई भी व्यक्ति हमें कटु वचन बोलता है, अपमानित करता है, तो समझना चाहिए कि पीछे का कोई हिसाब किताब चुप्तू हो रहा है। यदि हम सहन नहीं करते बल्कि क्रोध में आकर के उल्टा बोल देते हैं तो हिसाब किताब बढ़ जाएगा। इसलिए निंदा आदि को समझना चाहिए कि हम पर फूल बरस रहे हैं, और यह भी समझना चाहिए कि वह माया की जो है माया के वशीभूत है। क्रोध अहंकार आदि के प्रभाव में आकर यदि हम उसकी आलोचना करते तो हमने माया से हार खा ली। हाँ, यहाँ पर हमें देखना है हमारा कर्तव्य तो उस व्यक्ति तथा अपने को माया से मुक्त करना है। याद रहे कि लड़ाई तो माया से है ना, हाँ, ना कि किसी व्यक्ति से। इस प्रकार हम माया पर जीत पाते जाए तो सहनशीलता का गुण अपने आप ही आएगा। शिव बाबा कहते हैं कि मरजीवा अर्थात पुरानी देह व दुनिया से जैसे मर चुके हैं, मरा हुआ कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। मरजीवा बनना मरना नहीं बल्कि माननीय बनना है। एक तरफ हमें ये भी देखना है कि कब तक हम सहन करें। कुछ लोग बार बार तंग करते व सताते रहते हैं। प्रश्न आता है कि कब तक सहन करें। यदि अपने आपने अगर उसे 9 बार सहन किया परंतु 10वीं बार सहन नहीं किया तो बाप दादा कहते हैं कि आपको सहनशीलता का खिताब मिल नहीं सकता। बाबा हमें क्या कहते हैं कि आपको

स्वमान दिया हुआ है, मैं उस स्वमान रूपी तिलक को धारण कर रही हूँ। हाँ, समस्याओं को ड्रामा का नजारा समझ उड़कर पार करना होता है। यह झुकना नहीं, उड़ना है। एक तरफ हमें ये भी देखना है, पूर्वज आत्मा जो होते हैं वो मानव सृष्टि चक्र के आदि अर्थात सतयुग की शुरू में ही हम आत्माएं धरा पर देवी देवता के रूप में आ जाते हैं। बाबा कहते हैं कि इस कारण तुम अन्य सभी मनुष्य आत्माओं के पूर्वज हो। लौकिक में जब बच्चे बड़े बूढ़ों के साथ शरारत करते हैं तो वे नाराज नहीं होते तथा कोई बात नहीं बोलकर सहन करते रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम सदा स्वमान में रहो, मैं पूर्वज आत्मा हूं। इससे आप ही सबका सब में अपने आप सहन होता रहेगा, सबकी बातें आप सहन करते रहोगे और सहनशीलता आपकी बढ़ती जाएगी। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। माई एनर्जी इज फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। इट्स ओनली अ लाइफ स्टाइल चेंज। दीज आर लाइफ स्टाइल चेंजेस। एनर्जी लाइफ है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जाओ अब तुम अपने घर जाओ। देखो मुन्नी बच्चे ज्यादा शरारत नहीं करते, जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: देखो रात बहुत हो चुकी, मैं कहता हूँ जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, छाया तो कैसे नहीं जाएगी, कैसे नहीं जाएगी।

0: में बत्ती, कान में झुमका, नाक में बत्ती, हाथ में जलती अगरबत्ती।
1: अरे नहीं यार, मगरबत्ती। अरे बोला ना अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती।
0: अगरबत्ती का छुआछा आग से बैठा पानी का।

0: चलता है, मांग में सिंदूर भरता है। माथे रोज लगाए बिंदी, इंग्लिश बोले मतलब हिंदी। इस पगड़े से बट पर वोट मतलब क्या? माथे रोज लगाए बिंदी, इंग्लिश बोले मतलब हिंदी। हिंदी में अलजेब्रा शान पीएबी।
1: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। When we have understood कि every thought that we create, just the other day, एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़ सेल्स है, जस्ट द ब्रेन, ओके, 10,000 करोड़ सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 करोड़ सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी। 10,000 crore cells in the brain into 10,000. This is the human network. So many switches connected to so many switches. अब जब इतने switches से connected होते हैं, तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा, तो उसका effect कितना लंबा जाएगा? तो जब brain में 10,000 crore cells connected to 10,000 cells, each cell connected to 10,000 cells in the body, and हर thought जो हम create कर रहे हैं, उसका brain पर असर पड़ रहा है। ब्रेन से फिर वो केमिकल सेक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितने आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: का सफर आरजे सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ख्वाबों के सफर में। मैं हूं आपका हम सफर सनी। जी हां, आज के इस एपिसोड में हम पी अक्षर वाले कुछ खास गाने आपको लेकर आए हैं। पी अक्षर वाले कुछ खास गाने आपके लिए लेकर आए हैं। जी हाँ, कहते हैं तेरा प्यार ही मेरी जान है, शायद इस हकीकत से तू अनजान है, मुझे खुद नहीं पता मैं कौन हूँ, क्योंकि तेरा प्यार ही मेरी पहचान है। तो आइए आज के इस शो में हम लोग पी अक्षर वाले कुछ खूबसूरत गीत सुनेंगे और साथ ही साथ कुछ नज़ाकत भरे शायरी भी आपको सुनाने वाले हैं। कहते हैं जब कोई नहीं था तो बहुत अनमोल थे हम, नए लोग मिल गए तो हमारी कोई औकात नहीं रही। जी हाँ साथियों, अक्सर कभी कभी ऐसा होता है जब कोई नहीं है तो ऐसा लगता है कि हम ही उनकी दुनिया है, जब कुछ लोग आ जाते हैं तो फिर लगता है कि हमारी कोई दुनिया ही नहीं। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज़ 107.8 एफएम। आइए ख्वाबों के सफर में आज के इस शो में पहला गाना, एक बहुत ही खूबसूरत गाना आपको सुनाने वाला हूं मैं। साहिर लुधियानवी साहब का लिखा, लता मंगेशकर और रफ़ी साहब का गाया हुआ, रोशन साहब का संगीत से सजा, फिल्म ताज महल। जी हाँ, 1963 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी और बहुत चली भी थी ये फिल्म। ताजमहल नाम बहुत ही पॉपुलर रहा और वैसे भी लोग ताजमहल देखने जाते हैं तो फिल्म भी उन्होंने देख ही ली। तो हाँ, इसमें एक बहुत ही खूबसूरत गाना है जो पी अक्षर वाला है। कई बार हम लोग जो है इतने भाव विभोर हो जाते हैं, समर्पण हो जाते हैं, तो हम अपने आप को निछावर कर देते हैं। तो ऐसे भाव विभोर होने पर साहिर लुधियानवी साहब ने एक गीत लिखा था, वो गीत है ये।

जी हाँ साथियों, इस गाने को आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही प्यारा सा मैसेज है। किस तरह से समर्पण भाव आ जाता है प्यार में, वो इसमें बताया गया है। चलिए मैं अब सीधे आपको ले चलता हूँ इस गाने की तरफ। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज़ 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

कोई नहीं याद करता वफा करने वालों को यहाँ, मेरी मानो बेवफा हो जाओ जमाना याद रखेगा। जी हाँ, कई बार हम लोग जो है वफा कर करके थक जाते हैं तो मन निराश हो जाता है, और जब मन निराश हो जाता है तो ऐसे ही कुछ भाव मन में उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन हमें हमेशा ही सकारात्मक भाव लेके चलना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक जो चीज़ें हैं वो कुछ पल की खुशी देती है। अगर आपको शाश्वत और निरंतर खुशी चाहिए तो आपको वफादारी बरकरार रखना होगा, चाहे उसके लिए आप अपने खास को भी कुर्बान कर दो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। जी हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोग करे हैं, कुछ लोगों ने इस तरह का काम किया है जिसकी वजह से वो इतिहास में अपने नाम को शुमार करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आपको ले चलता हूँ एक और खूबसूरत गीत की तरफ, और ये गीत है साहिल दानवी साहब का लिखा ही, मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुरी का गाया हुआ, खयाम साहब का संगीत से सजा सगुन इस एल्बम का, जो 1964 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का एक गाना है जैसे कि ये।

जी हाँ, जहाँ पर पर्वत हो, पेड़ हो, और वहाँ अगर शाम का बसेरा हो तो कितना अच्छा होगा। तो ये शब्दों को सुनकर ऐसा लगता है कभी कभी आपका मन भी ऐसे ही जहाँ में बसने का दिल करता है, क्योंकि कुदरत, पेड़ पौधे, ये सब कुछ हमें हमेशा ही आकर्षित करते रहे हैं। इनके आगोश में रहना, इनके संग रहना हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कुदरत के बिना जीवन संभव नहीं है। कुदरत है तो जीवन है। तो आइए ऐसे ही भाव भरा ये गीत जो मैंने आपको अभी थोड़ा सा सुनाया है, उस पूरे गीत को सुनते हैं और बहुत ही अच्छा सूदिंग अनुभव करते हैं। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज़ 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो,

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: चलिए, आशा करता हूँ आपको ये गाना बहुत पसंद आया होगा और बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो, और आपको भी उतना ही अच्छा लगा होगा, ऐसी शुभकामना करते हैं। ऐसा कहते हैं कि काश तुम ये समझ पाते कि इस कमबख्त काश से रोज कितना लड़ता हूँ मैं। जी हाँ साथियों, कभी कभी हम कुछ कहना चाहते हैं और नहीं कह पाते हैं। मन कह उठता है काश तुम कह पाते, और ये बात अंदर ही रह जाती है तो लड़ाई बहुत होती है। तो आशा करता हूँ आपने कभी ना कभी ऐसे फीलिंग से आप भी गुजरे होंगे। फासलों से अगर जीना सीख सकते हो तुम, फासलों से अगर जीना सीख सकते हो तुम, तो तुम्हें इजाज़त है हमसे दूरियां करने की। आप सुनाए हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर। जी हाँ, ख्वाबों का सफ़र, और मैं हूँ आपका हम सफ़र सनी। बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना अभी अभी। जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुरी की आवाज़ में। आइए अब एक और खूबसूरत गीत की तरफ मैं ले चलता हूँ, और इसे भी हसरत जयपुरी साहब ने ही लिखा है। ये गाना जो है आशा भोसले ने गाया है, बड़ा ही एक क्या कहते हैं सस्पेंस क्रिएट करता है इस गाने में, माना सस्पेंस का भाव है, कहीं ना कहीं कुछ रहस्य है जिसे रहस्य ही रहने दो, ऐसे भाव इस गाने में है। और आशा भोसले जी ने बड़े खूबसूरत ढंग से इस गीत को गाया है। शंकर जयकिशन का मस्ती भरा संगीत है। शिखर इस एल्बम का 1968 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, और उस समय ये गाने को बहुत लोगों ने पसंद किया था। आज भी ये गाना जब भी आप सुनेंगे तो उतना ही आपको पसंद आएगा, उतना ही खुशी आपको देगा। तो आइए, इस गाने का भाव मैंने जैसे आपको बताया, ये गाना का जो पहली लाइन है वो आपको जो है अपने आप में पूरी कहानी बता देता है, जैसे कि ये
2: पर्दे

जी हाँ, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, अगर उठ गया तो फिर रहस्य भी सामने आ जाएगा। तो आइए ऐसे ही कुछ भाव बड़ा आशा भोसले की आवाज में ये खूबसूरत नगमा अभी आपके लिए। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो।

वाह क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आशा करता हूँ आपको भी अच्छा लगा हो। कहते हैं हमें हिंदी शायरी का शौक कहाँ, हम तो लिखते हैं फक्त अंदाज तेरे। तेरे इश्क में दीवाना हूँ, तू है समा मैं तेरा परवाना हूँ। आप सुनाए हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 एफएम पर खाबों का सफर। आइए आगे बढ़ते हैं खाबों के सफर में और बहुत ही सूदिंग गाना आपने सुना और मुझे लगता है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और इस तरह के गाने जब हम लोग सुनते हैं तो कहीं ना कहीं जो है मन जो है बहुत ही खुशी से भर जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, अभी आपने जो गाना सुना था वो शिखर इस एल्बम से सुना था। इस फिल्म में जो कलाकार थे वो धर्मेंद्र, आशा पारेख, संजय कुमार, हेलन और जॉनी वॉकर ने काम किया था। और यहाँ पर एक व्यक्ति की मौत हो जाती है गलती से, एक लड़की पर इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने मर्डर किया है। तो ये मर्डर मिस्ट्री वाला फिल्म है जिसमें बाद में हीरो जो है उस लड़की को सही खूनी का पता लगाने में मदद करता है। तो इस तरह का ये कहानी है। आत्माराम जी ने इसे डायरेक्ट किया था और आत्माराम जी ने ही इसे प्रोड्यूस किया था। तो होलन सोल वो खुद ही इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रहे। जैसे कि मैंने कहा कि एक्टर्स के बारे में तो मैंने बता ही दिया, अब आइए आगे बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। ये गाना भी आपको बहुत ही सुख देगा, यानी सुकून देता है। और ये गाना अपने आप में बहुत ही कमाल का है और एक कमाल वाली फिल्म भी आई थी, जब जब फूल खिले। जी हाँ, नाम सुनकर भी बड़ा अच्छा लगता है, जब जब फूल खिले। और ये एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, शशि कपूर, नंदा, कमल कपूर, प्रयागराज, इन पर पिक्चराइज किया गया था। और उस समय ये फिल्म जो है बहुत ही हिट रही और इसके गाने भी सभी पॉपुलर रहे। और इसमें एक अमीर लड़की जो है एक राजा नाम के गरीब लड़के से, नाविक है, उसके प्यार में, फिर ये कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। लेकिन जब लड़की के पिता को ये बात मालूम पड़ता है तो वो इसके अगेंस्ट में काफ़ी कुछ जो है रुकावटें उनके अंदर पैदा करने की शुरू कर देता है। लेकिन फिर भी फिल्म में हैप्पी एंडिंग बताया गया है। सूरज प्रकाश जी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और इस फिल्म के जो कलाकार है वो मैंने बताया, शशि कपूर, नंदा, कमल कपूर इसके मुख्य हीरो रहे। तो इस फिल्म का ये गाना जो है जैसे कि ये

जी हाँ, पर देशियों से ना अखिया मिलाना, ये बहुत ही खूबसूरत गाना है। सैड है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम सभी को आकर्षित करता है, पकड़ के रखता है। मुझे लगता है कि आप जैसे ही गाने सुनेंगे गुनगुनाना जरूर शुरू कर देंगे। तो ये जो गाना है इसे आनंद बख्शी साहब ने लिखा था, और आनंद बख्शी का ये गाना जो है बहुत पॉपुलर रहा, जिसे मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था। कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध ये गाना है। तो आइए अब मैं बहुत ज़्यादा ना बोलते हुए सीधे आपको गाने की तरफ ले चलता हूँ। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज़ 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना, परदेसियों से ना किया मिलाना। आइए, कहते हैं वो शायर होते हैं जो शायरी लिखते हैं, हम तो बदनाम से लोग हैं, सिर्फ दर्द लिखते हैं। बहुत अजीब होता है कमबख्त इश्क का खेल, कोई एक भी थक जाए तो दोनों हार जाते हैं। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर, और मैं हूं आपका हम सफर सनी। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की तरफ जो पी अक्षर से शुरू होता है। जी हां, जैसे कि हमने एक अभी गाना सुना, उसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा 1967 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था पत्थर के सनम। ये फिल्म जो है बहुत ही हिट रही उस समय, और इस फिल्म के जो एक्टर्स थे महमूद, प्राण, मुमताज, वहीदा रहमान और मनोज कुमार। मनोज कुमार और वहीदा रहमान पर पिक्चराइज किया गया ये खूबसूरत फिल्म। इसमें एक और हीरोइन है मुमताज। मुमताज और वहीदा रहमान दोनों ही मनोज कुमार के प्यार में पागल होते हैं, लेकिन कहानी फिर बाद में जो है, प्यार तो किसी एक से होता है, यही सिद्ध करना होता है डायरेक्टर को। तो फिल्म में इस तरह के फिर आखिरी में प्यार एक से होता है, वही बात राजा नवाटे साहब ने इस फिल्म में बताया है। तो आइए, राजा नवाटे का ये फिल्म बहुत ही अच्छी रही उस समय, और बहुत लोगों ने इसे देखा भी, सुना भी, और इसके गाने जो है बहुत ही खूबसूरत है, और इसका टाइटल सॉन्ग जो है वो बहुत खूबसूरत है जो मैं आपको अभी सुनाने वाला हूँ। जी हाँ, जैसे कि ये

पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना। जी हाँ, ये गाना मजरू सुल्तानपुरी साहब ने लिखा है। मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में इसे गाया है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का बहुत ही अच्छा संगीत भी है इसमें। तो आइए, इस फिल्म का ये गीत मैं अभी आपको सुना रहा हूँ। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज़। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

जी हाँ, ये खूबसूरत गाना अभी आपको मैं सुनाने वाला हूँ। और ये जो फिल्म है मेरे लाल, एक बंगाली फिल्म का रीमेक है। बंगाली में इसका नाम था बादशाह, और उसी फिल्म को सत्यन बोस ने हिंदी में रीमेक किया और नाम दिया मेरे लाल। तो आइए, इस फिल्म का ये गीत मैं अभी आपको सुना रहा हूँ। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम लोग आखिरी मोड़ पे पहुंच गए हैं कार्यक्रम के, और आशा करता हूं आज के बहुत ही खूबसूरत गाने जो हमने सुनाए वो आपको पसंद आया होगा। और जाते जाते कहना चाहूँगा कि वो अक्सर मेरे चेहरे को चूम लेती है, वो अक्सर मेरे चेहरे को चूम लेती है, जिनके मैं पैर छूने के भी काबिल नहीं, जिनके मैं पैर छूने के भी काबिल नहीं। तो आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एक और गाना मैं आपको जाते जाते सुनाने वाला हूँ, हाउस नंबर 44। जी हाँ, 1955 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और इसमें पी अक्षर वाला गाना है जैसे कि ये।

जी हाँ साथी, ये बहुत ही खूबसूरत गाना है जिसमें एक बहुत ही सुंदर मैसेज हमको मिलता है, फैली हुई है सपनों की बाहें। साहिल दानवी साहब का लिखा, लता मंगेशकर का गाया, सचिन देव बर्मन का संगीत से सजा, ये खूबसूरत गाना आपके लिए जाते जाते मैं छोड़े जा रहा हूँ। और आशा करता हूँ आप सभी को आज के इस एपिसोड में जो बातें हमने की, जो फिल्म के बारे में हमने बताया, और ये जो फिल्म है हाउस नंबर 44 जो 1955 में रिलीज हुई थी, देवानंद, कल्पना, के एन सिंह, कुमकुम पर पिक्चराइज किया गया था, तो ओल्ड फिल्म थी, बहुत ही अच्छी थी फिल्म, और कहीं ना कहीं एक जो है गैंगस्टर की कहानी इसमें बताई गई थी और उसी पर ये फिल्म बनी थी हाउस नंबर 44। इसके डायरेक्टर थे एमके बर्मन। आइए आगे बढ़ते हुए मैं कहूँगा कि आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, ऐसी शुभकामना के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा, खुश रहो खुशियाँ बांटो।

नमस्कार, मैं हूं पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। माई एनर्जी इज फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। इट्स ओनली अ लाइफस्टाइल चेंज। दीज आर लाइफस्टाइल चेंजेस। एनर्जी लाइफ है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो।

0: विवेकानंद की पारिवारिक पृष्ठभूमि से आप परिचित हुए। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व अपने आप अलग थलग रूप से विकसित नहीं होता। व्यक्ति आज जो है वो उसकी वंश परंपरा और पारिवारिक तथा सामाजिक वातावरण का फल है। विवेकानंद को एक संस्कारवान परिवार मिला था, जिसके फल स्वरूप उन्हें उपयुक्त गुरु श्री रामकृष्ण देव मिले और उनके चहुमुखी व्यक्तित्व और शौर्य का विकास हुआ। उनकी प्रतिभा बचपन से ही दिखने लगी थी। निराला था उनका बचपन। बालक नरेंद्र नाथ की सभी बातें निराली थीं। वे चंचल, नटखट, शरारती तो थे पर साथ ही भावुक भी थे। अगर बालक नरेंद्र नाथ के मन में कोई बात घर कर जाती तो उसे पूरा किए बिना वे नहीं मानते। कभी कभी वे चुपचाप किसी सोच में उलझ जाते। उन्हें समय, भूख, प्यास का ध्यान नहीं रहता था। उनका सबसे ज्यादा मनपसंद काम था गाड़ी पर सवार होकर घूमने जाना। उस समय घोड़ा गाड़ी यानी बग्घी का जमाना था।
1: माँ की गोद में बैठकर गाड़ी में से दोनों ओर की चीजें देखते हुए एक के बाद दूसरा प्रश्न पूछते हुए बालक माता को हैरान कर डालता था।
2: माँ, माँ, उधर वह सुंदर बंगला किसका है?
3: वो तो मजुमदार महाशय का है। बड़े नामी वकील हैं वे।
2: अरे अरे देखो तो माँ, वो आदमी क्या बेच रहा है?
3: उस फल को जामरूल कहते हैं। एक दिन ना मैं तुम्हें वो फल खरीद कर खिलाऊंगी, ठीक है?
2: अच्छा माँ, माँ वो आदमी ऐसे फटे गंदे कपड़े पहनकर लोगों से क्या मांग रहा है?
3: अरे वो तो गरीब भीखमंगा है बेटा, लोगों से पैसे मांग रहा है।
2: क्यों, उसके पास पैसे नहीं है?
3: नहीं बेटा। अरे कोचवान, कोचवान जरा गाड़ी तो रोको जल्दी। लो बिले, उसे ये पैसे दे दो, भूखा लग रहा है।
2: हाँ दो, ये लो बाबा, कुछ खा लेना।
3: चलो चलो कोचवान चलो।
2: माँ लोग गरीब क्यों होते हैं? मेरे पास जब ढेर सारा पैसा हो जाएगा तो मैं इन सबको बांट दूंगा, कोई भूखा नहीं रहेगा।
3: हाँ बेटा, हमेशा मन में ऐसा ही दया भाव बनाए रखना, गरीबों की मदद करना।
2: अच्छा माँ।
3: ओ बिले, दो घड़ी चुप नहीं रह सकता, चुपचाप बैठे रहो।
0: गाड़ी से नरेंद्र को इतना प्रेम था कि रोज अपने घर के सामने बैठकर आते जाते हर एक गाड़ी को बड़े ध्यान से देखा करते। कोचवान का छाती फुलाकर बैठना, तेज दौड़ते घोड़े की लगाम को खींचकर उसे हांकने का कौशल, उसकी खास पोशाक, चपरास, जरीदार पगड़ी आदि का उसके बालक मन पर विशेष प्रभाव पड़ा। तभी तो एक दिन पिता के ये पूछने पर,
4: बड़ा होने पर क्या बनेगा नरेन, बोल तो।
2: घोड़े का कोचवान बनूंगा।
0: पिता हंसने लगे। कोचवान बनने की आशा से बालक ने अपने पिताजी के बूढ़े कोचवान के साथ मित्रता कर ली थी और मौका मिलते ही अस्तबल में जाकर वो सही और कोचवानों के कामों को देखा करता और हजारों सवाल किया करता। सईद से पूछता,
2: तुम रोज रोज घोड़े की मालिश क्यों करते हो?
5: भैया, इससे घोड़ा ताकतवर और तेज दौड़ने वाला बनता है।
2: अच्छा, तो मालिश करवाने पर मैं भी ताकतवर और तेज तर्रार बन जाऊंगा?
5: हाँ बेटा, खूब मालिश और कसरत करना, फिर देखना तुम्हारा शरीर कितना गठीला बन जाएगा।
1: बालक विवेकानंद को शरीर मजबूत बनाने का पहला पाठ शायद यहीं से मिला था। वो कोचवान से भी सवाल पूछता।
2: कोचवान जी, तुम हर दिन ये किस भगवान की पूजा करते हो?
6: बेटा, ये भगवान राम जी और सीता मैया हैं बेटा, और ये हैं हनुमान जी।
2: तुम इनकी पूजा क्यों करते हो? हमारे घर के पूजा घर में तो ये मूर्तियाँ नहीं हैं।
6: अरे तो क्या हुआ बेटा, मालकिन शिव शंकर की भक्त हैं, इसीलिए शिव पूजा करती हैं। पर वे रोजाना रामायण का पाठ तो करती हैं, यही उनकी पूजा है।
0: दत्त भवन में प्रायः प्रतिदिन दोपहर को रामायण तथा महाभारत की कथा होती थी। भुवनेश्वरी देवी स्वयं या कोई और महिला पाठ करती।

0: घर का काम खत्म कर दूसरी स्त्रियां पाठिका को घेर कर बैठ जाती। इसी छोटी सी महिला सभा में बालक नरेन शांत होकर माँ की गोद में बैठा रहता। अक्सर भुवनेश्वरी देवी बेटे को गोद में बैठाकर सीताराम की कहानी, महाभारत की कथा या अन्य पौराणिक कहानियां सुनाया करती।
1: इसमें संदेह नहीं कि पुराणों की कहानियों का बालक के मन पर गंभीर प्रभाव पड़ा था। सुदूर अतीत युग के धर्मवीरों की पवित्र जीवनियां सुनकर उसके शिशु हृदय में न मालूम भावों की क्या क्या लहरें उठा करती, जिससे वह अपनी स्वाभाविक चंचलता छोड़ घंटों मंत्र मुग्ध जैसा बैठा रहता था। रामायण सुनते सुनते नरेन का सरल शिशु हृदय भक्ति रस से परिपूर्ण हो उठता।
0: एक बार उनके घर के पास ही मेला लगा था। बालक नरेन अपने घर के पुराने नौकर रामू और दोस्तों के साथ मेला देखने गया था।
2: झूला झूला तान में झूला झूला प्यार ये प्यार प्यार से रसभरी जली मिले लो ये रसभरी जली मिले लो रसभरी जली मिले लो।
3: अरे अरे मुन्ना जरा इधर तो आ, झूला बाद में झूल लेना।
4: अरे तू इधर आ जा।
3: नहीं मुझे उस ऊंची चक्री पर नहीं घूमना, तू पहले इधर आ। ये देख कितनी सुंदर मूर्तियाँ बिक रही हैं। ये शिव की मूर्ति? नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, घर में है तो। ये किसकी है? लक्ष्मी नारायण की? नहीं ये भी नहीं, मुझे वह दिखाओ। ये कौन है?
5: राम जी और सीता मैया हैं।
3: दिखाओ दिखाओ। हाँ मुझे यही मूर्ति चाहिए। रामू काका, रामू काका इसे पैसे दे दो ना, मुझे यही मूर्ति खरीदनी है।
6: क्या करोगे बेटा इस मूर्ति का, चलो जलेबी खरीद देते हैं तुम लोगों को।
3: जलेबी वाले भी मुझे नहीं खाना, तुम खाओ, मुझे तो बस यही मूर्ति चाहिए।
6: ठीक है, अच्छा बाबा अब जिद कर रहे हो तो ले लो। लो भैया ये पैसे ले लो। अच्छा कितने का है? हाँ 2 पैसा? अरे नहीं ये तो 1-1 पैसे में बिकता है।
3: रामू काका मांग रहा है तो दे दो ना 2 पैसे, गरीब है बेचारा।
6: हाँ, गरीब है बेचारा, अरे बहू जी नाराज होंगी।
3: नहीं नहीं मैं माँ को समझा दूंगा, तुम तो ले लो।
6: अच्छा ले लो भैया 2 पैसे। हाँ नहीं तो लूट मार मचा रखा है, अब बच्चा जिद कर रहा है तो लेना ही पड़ेगा ना। हाँ चलो ठीक से कागज में लपेट कर बांध दो।
7: हाँ हाँ बांधता हूँ, रुक जाओ।
6: अरे मिट्टी का है ना, टूट ना जाए। चलो दे दो, चलो बेटा ले लो, चलो चलो चलो चलो।
1: मूर्ति लाकर नरेन ने मकान के छत पर एक सुनसान कमरे में उसकी स्थापना कर दी। रोज उस मूर्ति के सामने ध्यान मग्न होकर बैठा रहता बालक नरेन। सीताराम के प्रति बालक का यह प्रेम उनके पश्चिम देशीय कोचवान मित्र को बहुत आनंददायक लगा। सीताराम के बारे में बालक के हजारों प्रश्नों का जवाब वह प्रसन्नता पूर्वक देता था।
3: अच्छा राम जी को राक्षसों से डर नहीं लगता था?
8: नहीं बेटा, वे तो बहुत वीर और साहसी थे। मुनि वशिष्ठ के आश्रम में उत्पाद मचाने वाले सारे राक्षसों को राम जी ने मार भगाया था, और उस समय वे तुमसे थोड़े ही बड़े रहे होंगे।
3: अच्छा अगर मैं धनुष विद्या सीख लूं तो क्या मैं भी राक्षसों को मार सकूंगा?
8: हाँ हाँ मेरा राजा बेटा बड़ा होकर न जाने कितने राक्षसों से लड़ेगा, उन्हें मार भगाएगा।
3: पर राम जी जंगल में क्यों चले गए, मना क्यों नहीं किया, उन्हें डर नहीं लगा क्या?
8: बेटा राम जी माता कैकेयी को बहुत प्यार करते थे, और पिता दशरथ को तो वे देवता समान पूजते थे। इन दोनों का कहा भला वे कैसे न मानते। माता पिता की भक्ति करना तो कोई राम जी से सीखे।
3: अच्छा जंगल में वो लोग खाते क्या थे, उनके साथ क्या कोई रसोईया भी गया था?
8: नहीं बेटा, वे तो खाली हाथ ही चले गए थे। जंगल में फल फूल खाकर ही गुजारा करते थे।
3: अच्छा, राम जी इतना अच्छा धनुष चलाते थे तो वे सोने के हिरण को पकड़ क्यों नहीं पाए?
8: अब बेटा, अब वो कोई असली हिरण थोड़ा ही था, वह तो माया थी माया। और राम जी को रावण का वध करना होगा, लोगों को उसके अत्याचार से बचाना होगा। यह सब तो पहले से ही तय था, तभी तो यह माया हिरण का दिखना, सीता हरण और राम रावण का युद्ध हुआ।
3: अगर राम जी सीता को साथ ना ले जाते तब तो यह सब झंझट ही नहीं होता।
0: कोचवान किसी कारणवश शादी विवाह के खिलाफ था, उसने नरेन को समझाया।
8: अब क्या बताएं बेटवा, ये औरतें ही तो सारी मुसीबत की जड़ है। न जाती सीता मैया तो राम जी को इतना परेशान न होना पड़ता।
1: कोचवान ने विवाहित जीवन की अशांति का ऐसा जीता जागता वर्णन किया कि बालक नरेंद्रनाथ के सुकुमार चित्त पर उसकी छाप गंभीर रूप से अंकित हो गई। उसके मन में अनेक चिंताएं उठने लगी और बेचैन होकर आंखों में आंसू भरे वे माँ के पास आए। आंसू देखकर माँ ने पूछा,
9: क्या हुआ बिले, किसी ने कुछ कहा क्या?
3: माँ, मैं कभी शादी नहीं करूंगा।
9: क्यों, अचानक ऐसी बातें क्यों, क्या हुआ?
3: मुझे मालूम है शादी होने के बाद आदमी को अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है।
0: नरेन ने माँ को कोचवान से सुनी हुई सारी बातें कह दी।
9: ठीक है बाबा, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अभी कौन तेरी शादी करवा रहा है, जब बड़ा होगा तो देखी जाएगी। जा, अब जाकर खेल, ये कोचवान भी।
3: मेरी शादी की बात कौन कर रहा है, मैं तो दूसरी बात से परेशान हूँ।
9: अब कौन सी बात लेकर परेशान है?
3: मैं राम सीता की पूजा कैसे करूं? सीता तो राम की पत्नी थी ना।
9: अरे बिले, तू तो मुझे पागल ही कर देगा। तू और तेरे सवालों का जवाब देते देते तो मैं आ इधर आना मेरे पास, आजा, आंसू पोंछ ले। ला, मैं पोंछ देती हूँ। ले बेटा, आजा आजा मेरा बच्चा। राम सीता की पूजा न भी करो तो क्या है, कोई बात नहीं मेरा बच्चा।
0: नरेन कमरे से निकल आया। उसका मन अब तक शांत नहीं हुआ था। वो छत के कमरे से अपनी प्रिय राम सीता की मूर्ति को हाथों में उठा लाया और छत पर आकर खड़ा हो गया। संध्या हो चली थी। नरेन हाथों में मूर्ति लिए कुछ सोच रहा था। अंततः वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचा और कहा,
3: माफ करना राम जी, माफ करना सीता मैया, मैं आप दोनों का भक्त हूँ, श्रद्धा भी रखता हूँ, पर विवाहित जीवन वो मेरा आदर्श नहीं है, मैं आप दोनों की पूजा नहीं कर सकता।
0: कहते कहते वो व्याकुल हो उठा और मूर्ति को माथे से लगाकर नीचे फेंक दी।
1: दत्त भवन में अरसे से माने जाने वाले देशाचार और लोकाचार के छोटे छोटे नियमों को नरेन बचपन से ही नहीं मानता था। माँ के डांटने पर वो तुरंत उन नियमों का कारण पूछ बैठता।
9: ए, ए बिले, अरे अरे अरे, ये क्या कर रहा है? भात खाते खाते बदन पर हाथ लगा रहा था।
3: क्यों, क्यों नहीं लगा सकता, इस थाली में क्या बुराई है?
9: अरे वो भात की थाली है, झूठा है ना?
3: झूठा? भात थाली में डालने से थाली झूठी हो जाती है?
9: हाँ।
3: तो भात पेट में जाकर शरीर को भी झूठा कर देता है, फिर तुम मेरे झूठे शरीर को गोद में लेकर प्यार कैसे करते हो?
9: बिले बकवास मत कर, जो कहती हूँ सुना कर।
3: अच्छा माँ, तुम भी तो भात खाती हो, फिर उस झूठे शरीर से शिव जी की पूजा कैसे करती हो?
9: सुन लो इसकी बातें, चल खा लिया ना, चल चल उठ उठ, चल पानी पी ले। अरे अरे अरे अरे अरे अरे, बाएं से नहीं, दाहिने हाथ से गिलास पकड़।
3: क्यों, अब बाएं हाथ में क्या हुआ? खाना तो दाहिने हाथ से खाया ना, और फिर बाएं दाएं में क्या फर्क है?
9: बहुत फर्क है, कोई भी अच्छा काम बाएं से नहीं किया जाता, समझे? हमेशा दाहिने हाथ से ही पानी पिया जाता है।
3: नहीं, मैं तो बाएं से ही पीऊंगा, देखता हूँ क्या होता है। क्या तुम्हारे शिव जी नाराज हो जाएंगे?
9: ओह, अब तेरे साथ कौन मुंह लड़ाए, चल उठ जा, उठकर दोनों हाथों को अच्छी तरह धो ले। चल चल चल चल चल, आ जा।
0: बालक नरेंद्र का मन एक ही तरह के खेल कूद में नहीं लगता था, वो हमेशा वैचित्र में नए नए खेलों की इजाद करते रहते थे। उनके साथी भी प्रबल उत्साह के साथ अपने नेता के साथ नए खेलों में जुट जाते। एक बार नरेंद्र का मन पुराने खेल से ऊब गया। उन्होंने झिल्ली कागज का एक रंगीन लालटेन बनाया और उसके अंदर मोमबत्ती जलाकर दीवार पर तरह तरह की आकृतियां बनाकर दोस्तों का मनोरंजन करने लगे। शाम को जब घरों में लालटेन जलाया जाता तो वे भाई बहनों को दीवार पर हाथों की परछाई से कई तरह के जानवरों और चिड़ियों की आकृतियां बनाकर दिखाते थे।
1: इसी समय उनके मन में पाक विद्या सीखने का विचार आया। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि जिससे जितना बन सके रसोई का सामान इकट्ठा कर लाए। सभी एक दो आलू बैंगन आदि घर से ले आए। ज्यादातर सामान चूल्हा कड़ाही बर्तन और तेल मसाला नरेंद्र अपनी रसोई से मांग लाए। दोस्तों ने मिलकर बड़े उत्साह से खाना पकाया और उस अधपके भोजन को बड़े चाव से खाया। कहना ना होगा कि नरेंद्र ही प्रधान रसोईया बने और दूसरे बच्चों ने उनकी सहायता की।
0: यद्यपि बालक नरेंद्र नाथ शरारत करने में सबसे आगे थे, पर उनमें अशुभ या अन्याय की कोई मनसा नहीं होती थी। उनका सहज सरल स्वभाव सांसारिक कुटिलताओं से दूर रहता था। सत्यवादिता उनके जीवन का सार था। भले ही वे दिन भर विभिन्न खेलों और हास्य विनोद में मग्न रहते, पर रात को उन्होंने ध्यान करना शुरू कर दिया था। शीघ्र ही उन्हें कुछ अद्भुत दर्शन प्राप्त होते, जिक्र उन्होंने बड़े होने पर किया था। जैसे जैसे नरेंद्र की उम्र बढ़ी, उनकी मानसिकता में एक सुस्पष्ट परिवर्तन देखा गया। वे अब बौद्धिक कार्यों को प्राथमिकता देने लगे। उन्होंने पुस्तकों का अध्ययन प्रारंभ किया, नियमित रूप से अखबार पढ़ने लगे और किसी के साथ भी सार्वजनिक भाषण सुनने जाते, और जो कुछ सुनाते उसका सार अपनी मौलिक आलोचना के साथ अपने दोस्तों को सुनाते। वे लोग कुछ समझते कुछ नहीं समझते, पर नरेंद्र की बातें वे चमत्कृत होकर सुनते। इस तरह उन्होंने एक ऐसी तर्क शक्ति का विकास किया जिसका सामना कोई नहीं कर सकता था।
1: बचपन में एक बार नरेंद्र के साथ उनके एक सहपाठी की मारपीट हो गई थी। नरेंद्र टिफिन में मिठाई लाए थे। उनके सहपाठी ने, जो उनसे उम्र और ताकत में बड़ा था, नरेंद्र के हाथ से मिठाई छीन ली। मारा मारी शुरू हो गई। नरेंद्र मिठाई वापस नहीं ले पाए और भयंकर नाराज हो गए। मास्टर साहब को शिकायत करने पर उन्होंने समझाया,
5: छी छी छी छी छी छी नरेंद्र, तुम इतने बड़े घर के बेटे हो, तुम्हें एक मिठाई के लिए मारामारी करना शोभा नहीं देता। फिर वह लड़का किस घर का है, उसकी छीनी हुई मिठाई क्या तुम दोबारा खा सकते थे?
3: क्यों क्यों नहीं खा सकते थे? वह मुझसे ज्यादा बड़ा है, इसलिए मैं जीत नहीं पाया। नहीं तो क्या मैं उसे वह मिठाई खाने देता?
5: नरेंद्र, कहा ना, उसका छुआ तुम नहीं खा सकते।
3: क्यों, क्या है, क्या है उसके हाथों में? उसके साथ एक ही क्लास में पढ़ सकता हूँ, खेल सकता हूँ, तो उसका छुआ खा क्यों नहीं सकता?
0: नरेंद्रनाथ ने अपने संपूर्ण जीवन में ये सब आचार व्यवहार छुआछूत कभी नहीं माना। बड़े होने पर एक बार इस दाएं बाएं झूठा और छुआछूत के प्रसंग में भयंकर नाराज होकर कहा था,

आप लोगों का पूरा ध्यान इन्हीं तुच्छ विषयों में ही लगा है कि हम पानी किस हाथ से पिए, किस किस को हम छू सकते हैं और इन नियमों के भंग होने पर कौन कौन से प्रायश्चित होने चाहिए। पहले तो हम भगवान का निवास ऊपर स्वर्ग में या नीचे मानव हृदय में समझते थे, पर अब जान पड़ता है कि वे रसोई घर व रसोई के बर्तनों में निवास करने लगे हैं। हमारा सर्वोच्च लक्ष्य है उदार बनना और कूप मंडूकता को त्याग कर बाहर आना, आत्मसात करना और खुद को सार्वभौमिक बना देना। पर हम तो अपने को नित्य लघुतर बनाते जा रहे हैं और शास्त्रों के आदेश के विपरीत अपने को सबसे अलग करते जा रहे हैं। हम अपने देशवासियों से ही नहीं जुड़ पा रहे हैं, अलग अलग टुकड़ों में बंटकर आप क्या हासिल करना चाहते हैं? मुक्ति? मुक्ति अलगाव में नहीं जुड़ाव में है। अपनी मुक्ति चाहते हो तो इन संकीर्णताओं से ऊपर उठो, तभी तुम्हारी मुक्ति होगी, देश की, समाज की मुक्ति होगी, देश की, समाज की मुक्ति होगी।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे अपने कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
1: मेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर, ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माई कार इज इन माई कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटीफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू कर दे, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन, वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: सुबह सुबह पार्क में आने का मजा हम छुट्टियों में ही ले सकते हैं।
1: बाद में तो मम्मी जाने नहीं देंगी, कहेंगी बड़ी धूप है।
0: चलो चलो, आज की योग कक्षा मैं शुरू करूँगा।
2: ओहो, अच्छा जी, तो आप करेंगे? गुरुजी, कुछ आता भी है?
0: सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम जोरों से हंसी, हा हा हा हा
3: हा हा हा हा। बात जरूर मजाक में कही है पर बिल्कुल सच है।
1: वो क्या दीदी?
3: अरे यही कि हंसी एक बहुत ही प्राकृतिक और महत्वपूर्ण प्राणायाम है। इससे न केवल मन प्रसन्नचित रहता है बल्कि शरीर में प्रसन्नता के रसायन प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होकर शरीर को हल्का और चुस्त करते हैं।
2: मैं बताऊं, कई बार बहुत से लोग एक साथ आसपास खड़े या बैठे नजर आते हैं और बिना किसी बात के ठहाके लगाते दिखते हैं।
3: असल में हंसना तनाव भगाने का एक सबसे अच्छा तरीका है, जिसे लाफ्टर थेरेपी कहा जाता है।
0: लेकिन जब हंसी के साथ योग को मिला दिया जाता है तो
3: ये बन जाता है लाफ्टर योग। लाफ्टर योग सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। लाफ्टर योग हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, जिससे हम न केवल बीमार होने से बचते हैं बल्कि यह उच्च रक्तचाप, हृदय योग, मधुमेह, डिप्रेशन, अर्थराइटिस, एलर्जी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कमर दर्द, माइग्रेन से दर्द, मासिक धर्म संबंधी बीमारियां, कैंसर जैसी अनेक बीमारियों से आराम पाने में भी मदद करता है।
2: यह प्राचीन काल में भी था क्या?
3: अरे पहले इतना तनाव ही कहाँ था। लाफ्टर योग 1995 में भारत में डॉक्टर मदन कटारिया ने शुरू किया था।
4: हाँ, मैंने पढ़ा था इंटरनेट पर।
3: अपनी रिसर्च में डॉक्टर ने पाया कि ठहाके लगाने से शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बेहतरी होती है।
4: यह इस बात पर आधारित है कि हमारा शरीर नकली और असली हंसी में कोई भेद नहीं करता।
1: तो हो जाए, सब मिलकर जोर से हंसते हैं।

0: वो देखो दीदी, वहाँ योग कक्षा हो रही है। कोई मंच पर आकर सूर्य नमस्कार कर रहा है।
1: मेरे पापा कहते हैं सूर्य नमस्कार योग का एक ऐसा अंग है कि जिससे पूरे शरीर के सभी अंगों पर प्रभाव पड़ता है,
2: दोनों आंतरिक और बाहरी। यही नहीं, हृदय को, मस्तिष्क को, यकृत, आमाशय, किडनी, सभी मांसपेशियों वगैरह तक रक्त का संचार और अच्छी तरह से होता है। पर बात सुनो, ये यूं ही खड़े खड़े बातें करते रहोगे या कुछ करने का इरादा भी है?
3: मैं बताऊं, चलो सब मिलकर सूर्य नमस्कार करते हैं। वो देखो उधर, वहाँ कक्षा में चलते हैं। उन्होंने इन गर्मियों की छुट्टी में बच्चों के लिए एक खास कैंप लगाया है।
4: आओ आओ बच्चों, सब आ जाओ। ये लो, एक एक दरी ले लो और पीछे की तरफ एक एक के पीछे आसन लगा लो।
0: उधर होना
3: ठीक तो है,
5: सीधा तो करो दरी को।
0: मेरी तो सीधी है, तुम्हारी मेरे ऊपर आ रही है।
4: शांत हो जाओ बच्चों, देर मत करो और जल्दी से एक पंक्ति में बैठ जाओ। कुछ पल आंखें बंद करके धीरे धीरे अपनी सांसों को सामान्य करो।
2: आप सबसे पहले तो कुछ बता दीजिए इन बच्चों को सूर्य नमस्कार के बारे में।
4: ठीक है बच्चों, आपको सबसे पहले सूर्य नमस्कार के बारे में कुछ बताती हूँ। सूर्य नमस्कार योगासनों में सबसे श्रेष्ठ है। यह अकेला अभ्यास ही पूरे योग व्यायाम का लाभ पहुँचाने में समर्थ है। इसके अभ्यास से हमारा शरीर निरोग और स्वस्थ होकर तेजस्वी हो जाता है। सूर्य नमस्कार स्त्री, पुरुष, बाल, युवा तथा वृद्धों के लिए भी उपयोगी है।
2: कहते हैं जो लोग प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करते हैं उनकी आयु, बुद्धि, बल और तेज बढ़ता है। क्या यह सच है?
4: बिल्कुल सच। सूर्य नमस्कार की 12 स्थितियां या चरण होते हैं, पर इसके बारे में बातें और न करके आओ इसको करने का प्रयास करते हैं। सब सीधे खड़े हो जाओ। सब करोगे सूर्य नमस्कार?
6: जी हाँ, हम सब करेंगे।
2: और मैं आपकी मदद करती हूँ सब बच्चों के पोस्चर ठीक कराने में।
4: बहुत अच्छा, ठीक है चलो शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहला चरण है प्रणाम आसन। अपने आसन के किनारे पर खड़े हो जाएं। अपने दोनों पंजे एक साथ जोड़कर रखें और पूरा वजन दोनों पैरों पर समान रूप से डालें। अपनी छाती फुलाएं और कंधे ढीले रखें। श्वास लेते हुए दोनों हाथ बगल से ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को जोड़ते हुए छाती के सामने प्रणाम मुद्रा में ले आएं। दूसरा चरण है हस्त उत्थान आसन। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएं और पीछे ले जाएं। बाजुओं को कानों के समीप रखें। इस आसन में पूरे शरीर को एड़ियों से लेकर हाथों की उंगलियां तक सभी अंगों को ऊपर की तरफ खींचने का प्रयास करें। तीसरा चरण है हस्तपाद आसन। श्वास छोड़ते हुए व रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए कमर से आगे झुकें। पूरी तरह श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को पंजों के समीप जमीन पर रखें। चौथा चरण है अश्व संचालन आसन। श्वास लेते हुए जितना संभव हो दाहिना पैर पीछे ले जाएं। दाहिने घुटने को जमीन पर रख सकते हैं। दृष्टि को ऊपर की ओर ले जाएं। पांचवा चरण है दंड आसन। श्वास लेते हुए बाएं पैर को पीछे ले जाएं और संपूर्ण शरीर को सीधी रेखा में रखें। छठा चरण है अष्टांग नमस्कार। आराम से दोनों घुटने जमीन पर लाएं और श्वास छोड़ें। अपने कुलों को पीछे ऊपर की ओर उठाएं। पूरे शरीर को आगे की ओर खिसकाएं। अपनी छाती और ठुड्डी को जमीन से छुएं। अपने कुलों को थोड़ा उठा कर ही रखें। अब दो हाथ, दो पैर, दो घुटने, छाती और ठुड्डी जमीन को छूते हुए होंगे। सातवां चरण है भुजंगासन। आगे की ओर सरकते हुए भुजंगासन में छाती को उठाएं। कुहनियां मुड़ी रह सकती है, कंधे कानों से दूर और दृष्टि ऊपर की ओर रखें। श्वास लेते हुए छाती को आगे की तरफ धकेलने का सौम्य प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए नाभि को सहजता से नीचे की ओर दबाएं। पैरों की उंगलियों को भी नीचे की तरफ दबाएं। यह सुनिश्चित करें कि जितना कर सकते हैं उतना ही करें, अपने साथ जबरदस्ती ना करें। आठवां चरण है पर्वतासन। श्वास छोड़ते हुए कुल्हों और रीढ़ की हड्डी को निचले भाग को ऊपर उठाएं। छाती को नीचे झुकाकर एक उल्टे वी के आकार में आ जाएं। यदि संभव हो तो एड़ियों को जमीन पर ही रखें और रीढ़ के निचले भाग को ऊपर उठाने का प्रयास करें। खींचाव को गहराता हुआ अनुभव करें। नौवां चरण अश्व संचालन आसन। श्वास लेते हुए दाहिना पैर दोनों हाथों के बीच ले जाएं। बाएं घुटने को जमीन पर रख सकते हैं। दृष्टि ऊपर की ओर रखें। दसवां चरण हस्तपाद आसन। श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को आगे लाएं। हथेलियों को जमीन पर ही रहने दें। अगर जरूरत हो तो घुटने मोड़ सकते हैं, पर कोशिश करें कि वे न मुड़े। ग्यारहवां चरण हस्त उत्थान आसन। श्वास लेते हुए रीढ़ की हड्डी को धीरे धीरे ऊपर लाएं। हाथों को ऊपर और पीछे की ओर ले जाएं। कुल्हों को आगे की तरफ धकेलें। बारहवां चरण ताड़ासन। श्वास छोड़ते हुए पहले शरीर सीधा करें, फिर हाथों को नीचे लाएं। इस अवस्था में विश्राम करें और शरीर में हो रही संवेदनाओं के प्रति सजगता ले आएं।
2: वाह, कितनी अच्छी तरह से सबने सूर्य नमस्कार किया है। सच सच बताओ कैसा लग रहा है?
6: बहुत अच्छा, बड़ा मजा आया।
2: तुमने देखा, सूर्य नमस्कार एक आसन नहीं बल्कि 12 शक्तिशाली योग आसनों का एक जोड़ है,
4: जो एक उत्तम कार्डियोवैस्कुलर व्यायाम भी है। इसे करने से शरीर में हाथों पैरों के दर्द दूर होकर उनमें सबलता आ जाती है। गर्दन, फेफड़े तथा पसलियों की मांसपेशियां सशक्त हो जाती है और शरीर की फालतू चर्बी कम होकर शरीर हल्का फुल्का हो जाता है,
3: यानी मोटापा कम हो जाता है।
4: बिल्कुल, यही नहीं, सूर्य नमस्कार के द्वारा त्वचा रोग समाप्त हो जाते हैं। इस अभ्यास से कब्ज जैसे पेट के रोग समाप्त हो जाते हैं और पाचन अच्छा हो जाता है। इस अभ्यास से हमारे शरीर की छोटी बड़ी सभी नस नाड़ियाँ एक्टिव हो जाती है, इसलिए आलस्य, अति निद्रा, ये सब विकार दूर हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को इसके कुछ भाग को करने से मनाई है।
2: अच्छा, वो कौन कौन सी है?
4: सूर्य नमस्कार की तीसरी व पांचवी स्थितियाँ सर्वाइकल और स्लीप डिस्क वाले रोगियों के लिए वर्जित है।
2: अच्छा, कौन बताएगा सूर्य नमस्कार का शाब्दिक अर्थ क्या है?
1: सूर्य को नमस्कार,
7: सूर्य को अर्पण या नमस्कार करना है।
4: अरे वाह, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। यह योग आसन शरीर को सही आकार देने और मन को शांत व स्वस्थ रखने का बेस्ट तरीका है।
2: पर एक बात का ध्यान रखना चाहिए, सूर्य नमस्कार प्रातःकाल खाली पेट करना सही होता है।
4: बच्चों, तुमने ध्यान दिया? प्रत्येक सूर्य नमस्कार के चरण में 12 आसनों के दो क्रम होते हैं।
7: पहले एक तरफ से, फिर सब दूसरी तरफ से।
6: हाँ।
2: वैसे भी अच्छे स्वास्थ्य के अलावा एक तरह से सूर्य नमस्कार करके हम सूर्य का शुक्रिया करते हैं धरती पर जीवन के संरक्षण के लिए।
4: अब मुझे ये बताओ कि कौन कौन इसका रोज अभ्यास करेगा?
7: मैं
8: हम सब।
9: हाँ।
4: पर ध्यान रहे 12 सूर्य नमस्कार के पोज और दूसरे योग आसनों को करने के बाद योग निंद्रा में पूर्ण विश्राम जरूर करें। देखना आप सब पाएंगे कि योग के सब आसन आपके चुस्त दुरुस्त प्रसन्न और शांत रहने का मंत्र बन जाएंगे। एक ऐसा मंत्र जिसका प्रभाव दिन भर आपके साथ रहेगा।
6: थैंक यू, शुक्रिया, नमस्ते मैम।
4: अब से रोज आना यहाँ, ठीक है? अपने दोस्तों को भी लाना।
6: जी, मैं लाऊंगा अपने दोस्त।
1: दस कहाँ से, 4 तो हम ही हैं।

0: पावसाच्या थेंबात दडलेलं जुनं प्रेम, आठवणींचा ओलावा. कधी कधी विरहातलं मौन सुद्धा गाण्यापेक्षा जास्त बोलत.
1: अश्विनी ये ना, ये ना.
0: जीवन म्हणजे चालत राहणं, गाणं, हसणं आणि स्वप्न पाहणं.
2: वाऱ्यावरती गंध पसरला ना ते मनाचे.
0: आईचा आवाज म्हणजे मनाला शांती मिळवण्याचं संगीत. या सगळ्यांची सांगड कुठे बर घातली जाते? आपल्याच पुणेरी आवाज 107.8 FM वर. आनंदी रहा, आनंद लुटा. गाण्यांच्या सुरात दडलेली संस्कारांची गोडी, पिढ्यानपिढ्या चालत असलेल्या परंपरेचा गंध आणि मनाला स्पर्श करणारी भावांची संगती. आणि हे सगळं ऐका फक्त आपल्या पुणेरी आवाज 107.8 FM वर. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
3: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज. अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं. बने रहिए हमारे साथ.
4: आप सुना होगा कि बचपन ही चरित्र निर्माण का श्रेष्ठ समय होता है, क्योंकि उस समय बच्चों की मनोस्थिति कुछ ऐसी होती है जैसे कि कोमल टहनी, जिधर घुमाए उधर घूम जाए. मैं आरजे शांतनु आपका स्वागत करता हूँ यशस्वी भारत कार्यक्रम के एक और एपिसोड में. आज हम दोबारा मिल रहे हैं सोनाली खान जी के साथ. सोनाली खान जी नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित हैं. उन्होंने बच्चों के चरित्र निर्माण के लिए बहुत अहम भूमिका निभाई है. सेसमी का संसार वो पिछले एपिसोड में हमें ले जा चुकी हैं. हमने देखा किस प्रकार से उन्होंने बच्चों के मनोस्थिति में वैल्यूज या गुणों को किस प्रकार से बच्चों के जीवन में लाया जा सके, उसके लिए उन्होंने बहुत गहराई से काम किया है. सोनाली जी, स्टूडियो में आपका दोबारा स्वागत है और मैं आपसे एक और सवाल के साथ शुरू करना चाहूंगा आज.
5: तो क्या मैं ऐसा आपको एक सवाल पूछ सकता हूँ? आपको आज की डेट पे जो टेलीविजन पे या जो भी संचार माध्यम है, मीडियाज है, तो हाथ में आ गया है टेलीविजन, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सबके हाथ में एक मोबाइल है और उसपे यूट्यूब का टेलीविजन चल रहा है. क्या आपको लगता है हमारे पास ऐसे इनफ कंटेंट हैं या नहीं है या बहुत है जो कि हमारे देश को एक सही दिशा दे सके?
6: ऐसा सवाल पूछा कंटेंट तो बहुत है ना, हर प्रकार का कंटेंट है. अभी OTT कहते हैं, नेटफ्लिक्स है, देश विदेश का जो प्रोग्राम्स है हमारे स्क्रीन पे आता है, बच्चे हर प्रकार के प्रोग्राम्स देखते हैं. तो जो बच्चों का दिमाग है वो ऐसा है कि हर चीज को जैसे वो ले लेता है, फटाफट सीखने की कोशिश करता है. बच्चों का जो हम कहते हैं
5: स्लेट है, फ्रेश स्लेट है, कुछ भी अब्सॉर्ब करता है स्पॉन्ज की तरह.
6: पर एक इससे और भी बड़ी बात है कि जो पहले 5 साल है कोई भी मनुष्य के जिंदगी में, उस टाइम में जो दिमाग का जो बढ़ता है वो सबसे तेजी से विकसित होता है दिमाग इंसान का. तो उस टाइम में जितना भी आप डालो, आप 2-3 भाषाएं सिखा दो, कुछ भी सिखा दो, वो दिमाग ऐसे उसको, आपने सही कहा, स्पंज की तरह उसको एक चूस लेता है. आप यही सोचिए, जो बच्चा लेटा रहता है, फिर वो रेंगता है, फिर वो चलता है, जिसको बोलना नहीं आता है वो बोलने सीखता है. ये इतनी बड़ी बड़ी चीजें बच्चे करते हैं इस 5 साल में. तो अगर हम इस उम्र में बच्चों को सही तरह से परवरिश करें, यानी कि उनको उन चीजों से एक्सपोज करें जिनसे उनका दिमाग बढ़े तेजी से, और वो सारी चीजें मिले जिनसे उनकी सीख बढ़े, तो आप ही सोचिए वो आगे चल के किस तरह से वो अपने को पूरी तरह से संपूर्ण बना सकते हैं. तो ये क्वालिटीज बच्चों में, हर बच्चे का क्वालिटी अलग रहता है, तो उसमें अगर हम उन बच्चों को सही परवरिश करें, उनमें सही उनको दिशा दिखाए, तो वो जो उनके अंदर है वो सही तरह से वो पनप सकेगा और वो आगे चल के ऐसे इंसान बनेंगे जो आप जो कहते हो, अपने अपने देश की, अपने समाज की सही तरह से एक उससे जुड़ सके और एक तरह से पॉजिटिव एनर्जी बन सके.
5: जी, बच्चों के लिए कंटेंट है बहुत सारे, लेकिन क्या बच्चे वहां तक पहुंचते हैं? या उन कंटेंट तक पहुंचने के पहले उनके सामने कुछ ऐसे कंटेंट आ जाते हैं जो शायद उनके लिए नहीं बनाए गए। तो यहाँ पर आप, क्योंकि यू आर एन एक्सपर्ट, आप इस फील्ड पे बहुत समय से काम कर रहे हैं और आपने देखा भी होगा, फेस भी किया होगा और उसको कुछ इसके बारे में आपके अंदर विचार सागर मंथन चलता ही रहता होगा कि जो चीज जिसके लिए बनी हुई है उसके पास तक पहुंचने के पहले अगर कुछ और चीज पहुंच रहा है तो कैसे इस चीज को सॉल्व किया जाए।
6: तो इस दुनिया बदल गई है छात्र भाई। पहले हम लोग कहते थे कि बच्चों को फ्री मत दो, ये मत करो, वो मत करो, हम रोक नहीं सकते। वो एक है जो एक धारा है जो चल चुकी है, उसके आगे कुछ रोक नहीं दे सकते हैं। तो हमारे पास एक ही चारा है कि हम जो जो माता पिता है या जो बड़े जन है उनको समझाए कि किस तरह से बच्चों को वही दिखाए, वही दे जो उनके उम्र के लिए ही थी। जो आजकल हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं
5: जी,
6: अब हम चाहे उससे हम कहना चाहे पता नहीं वो क्या चीज है, वो साइबर सिक्योरिटी सिर्फ देश के लिए है, कोई संस्था के लिए है, कोई कंपनी के लिए नहीं, वो हमारे लिए भी है। हमको अपना साइबर सिक्योरिटी सोचना पड़ेगा, हमारे बैंक अकाउंट का, हमारे फेसबुक पेज का। कोई आपके आता होगा कई दिन की, कोई आपके दोस्त ने लिख दिया कि मेरा फेसबुक पेज हैक हो गया है, अगर इससे आपको कोई ईमेल मिले या कुछ मिले इसको जवाब मत देना। तो आप ही सोचिए शांतनु भाई कि हम ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी, इसको हम इसको अलग नहीं कर सकते, हमें इसको समझना पड़ेगा। तो यही है, चाहे आप माउंट आबू में हो, सिरोही रोड पे हो, आप चाहे वो मतलब ऐसे एरिया में काम कर रहे हो जहाँ हम सोचे कि हमारा साइबर सिक्योरिटी से क्या लेना, पर नहीं, इसमें हम सबको ही इसमें समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम बच्चों को ऐसी चीजें दिखाना चाहते हैं या ऐसी चीज से वो नहीं कि नहीं बच्चा देखे, तो हमें इससे बहुत कुछ को समझना पड़ेगा गौर से। और हमें एक तरह से हमारा काम है कि लोगों को सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे फोन में भी होता है सेफ्टी लॉक, कई चीजें हम उसमें कर सकते हैं जिससे बच्चों को दूसरी चीजें ना दे दिख पाए, तो वो हमें करना पड़ेगा। तो ये हमें समझना पड़ेगा और ये हमें करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे ऐसी चीज देखेंगे जो उनके लिए सही नहीं है। उनका दिमाग का ऐसा विकास नहीं हुआ है कि उसको समझ सके और उसको सही तरह से वो भी समझे कि भाई ये हमारे लिए नहीं है। क्योंकि हम भी बहुत चीजें देख लेते हैं पर हमें समझ आ जाता है कि भाई ये हमारे लिए नहीं है, पर बच्चों में वो क्षमता अभी नहीं है, इसीलिए हमें और सतर्क रहना।
5: इसमें आपने दो बहुत मुख्य बातें कही कि पहले तो ये समझना है कि साइबर सिक्योरिटी सिर्फ देश के लिए या संस्था के लिए नहीं, मेरे लिए है क्योंकि मुझसे ही देश है। और दूसरी चीज ये कि बड़ों को, मतलब अभिभावक को, पेरेंट्स को ये ध्यान देना होगा कि उनके बच्चे का विकास ऐसी चीजों से हो जिससे वो बच्चा शक्तिशाली बने, ना कि एडिक्टेड हो जाए या आधारित हो जाए, कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो जाए। फ्रीडम जो है, स्वतंत्रता जो है, वो एक शक्ति है, लेकिन इस चीज का ध्यान पेरेंट्स को रखना पड़ेगा। बट कहीं ना कहीं सुनाली जी, मुझे ऐसा लगता है इस चीज का ध्यान कंटेंट मेकर्स को भी रखना पड़ेगा कि क्या कंटेंट हम ऐसा क्रिएट करें जो कि बच्चों को भारत से जोड़े। आज जो कंटेंट है वो कहीं थोड़ा बहुत शायद भारत के नजदीक है, लेकिन भारत की जो भारतीयता है, जो भारत का वैल्यूज है, जो भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, मैं उसकी रूढ़िवादिता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ उसके उन ग्लोरियस मोमेंट्स की, वो जो स्वर्णिम पल है भारत के, जो भारत को आज भी विश्व पे एक अलग अनोखा देश बना के रखती है, उनसे जोड़ने की जरूरत है। आप इस पे क्या सोचते हैं?
6: हाँ, शांतनु भाई आपने सही ही कहा कि हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और करना चाहिए है ना, हमें भी तो देश को विकसित करना है, कोटी कोटी लोग हैं उनको खिलाना है, अपना साइंस का एक हर पद पे आगे चलना है। तो पर जो आप वैल्यू की बात करते हैं, जो एक तरह से हम बहुत इसके बारे में सोचते हैं कि मतलब जिस तरह से हम लोग कहते हैं सहानुभूति है या प्रेम है या ये जो भावनाएं हैं, ये ऐसी मूल भावनाएं हैं जो हमें इंसान बनाता है। पहले भारतीय होने से भी पहले हम इंसान, चाहे वो किसी देश के भी इंसान ना? तो ये कौन से वैल्यूज हैं जो हमें इंसान बनाता है, अगर हम इनको ही समझे तो फिर हम भारत के बड़े आसानी से बन जाएं।
5: बिल्कुल, बिल्कुल सही बात।
6: और ये अगर इंसानियत को ही हम नहीं पहचानेंगे तो फिर हम भेदभाव भी करेंगे, ऊंचा नीचा भी देखेंगे और लोगों को हम इस दृष्टि से देखेंगे कि वो हमसे नीचे हैं, हमसे अलग हैं तो इससे नीचे हैं, कोई और है तो उससे हमें दूर रहना चाहिए। पता नहीं आपने कहा कि मतलब ये तो बंगाली है या ये तो पंजाबी है, ये और देश के हैं, ये खाते कुछ और हैं, पर इससे तो इंसानियत से कुछ तो नहीं जुड़ा है। इंसानियत क्या है? तो अगर हम इंसानियत को ही अच्छे से समझे और उसकी जो हम वैल्यूज की बात करते हैं जो हमें इंसान बनाता है, तो वही तो हम सब बोल रहे हैं उसके बारे में, आप भी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ। तो हम अपना अंदर से सोचते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हो, स्कूल टीचर हो, एनजीओ में काम कर रहे हैं, कोई मतलब कंपनी में फैक्ट्री में काम कर रहा है, पर इंसान तो हम सभी हैं और खुश वही खुशी वही दुख हम सबको महसूस होता है। तो ये मेरा सोच है कि जहां जहां हम हैं अगर हम अपना काम सही से करें और किसी का बुरा ना करें तो वही हमें भारत में बना।
5: मैं एक्चुअली आपसे यही सवाल पूछने वाला था कि भारतीयता एक्चुअली है क्या, और आपने उसका इतना बखूबी मेरे सवाल पूछने के पहले ही जवाब दे दिया कि भारतीयता अर्थात अपने मूल्यों को पकड़ के रखना, और वो मूल्य कौन से, जो हर एक को समदृष्टि से देखे, हर एक को समान समझे, खुद में और दूसरे में कोई फर्क न करे, जो चीज मुझे पता है मुझे सुख देगी सामने वाले को भी देगी तो उसके लिए कोई फर्क नहीं करे। ये भारत का जो मूल मंत्र है, जो भारत की मूल परिभाषा है, वो आपने बखूबी हम सब सबके सामने रखा।
6: आपने मेरे से ज्यादा अच्छे से समझाया, शायद मैं अच्छे से समझा नहीं पा रही थी, पर आपने मेरी भावनाओं को इतने अच्छे से समझाया कि हाँ यही मैं कहना चाहती हूँ कि हमारा सुख दुख है और इंसान चलता ही रहेगा, पर हमें यही समझना है कि हम एक ही हैं, एक जैसे ही हैं।
5: और बच्चों को सिखाते सिखाते बड़ों को भी सिखाना पड़ेगा, और ये आपने किया है, चाहे वो कितने ही आपके एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स हैं या चाहे कितने ही आपके प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से एक जो विशेष मुझे याद आता है, बेल बजाओ, डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट, घरेलू हिंसा के अगेंस्ट। घरेलू हिंसा एक शब्द लोगों को पता भी नहीं था, जबकि वो उसके शिकार थे। ऐसे समय में आपने एक ऐसा प्रोजेक्ट क्रिएट किया बेल बजाओ, जिससे मैंने जो पहले कहा कि भारत की कई बेटियों को आवाज मिला, ये आइडिया कैसे आया आपके पास, क्या था इसके पीछे, आपने कुछ क्या आपने रूबरू कुछ अनुभव किए थे या क्या बना, कौन सी वो सीढ़ियां बनी जिसकी वजह से बेल बजाओ शुरू हुआ?
6: बेल बजाओ एक ऐसा मैं क्या कहूँ कैंपेन रहा है जो अपने में ही एक बड़ा कैंपेन बन गया। मतलब उसका जो आइडिया, उसका सोच जो था, हम जब इसको बना रहे थे तो पहले ऐसा नहीं था कि जो घरेलू हिंसा कम थी, मतलब उसको आप सही कह रहे हो कोई पहचानता ही नहीं था, मतलब है पर उसको कोई सामने रह के भी उसको कोई देख नहीं रहा था, महिलाएं उसको भुगत रही थी पर उसके खिलाफ कोई बोल नहीं रहा था। तो तब हम इस पे जब कैंपेन बनाना हमने सोचा तो बहुत सारे और भी कैंपेन हो चुके थे जहाँ पे इसके बारे में बात हुई है, किस तरह से महिला पीड़ित होती है, वो मतलब फिजिकल हो या शारीरिक हो या मानसिक हो, किस तरह से एक तरह से हिंसा होती है उन पर इसके बारे में मतलब एक तरह से बात हो रही थी, पुरुषों को एक तरह से समझना चाहिए और इस पे रोकना चाहिए। पर जब हमने इसके बारे में सोचा और हम कैंपेन बनाना चाह रहे थे तो हमने एक चीज भी देखा कि बहुत सारे पुरुष हैं जो महिलाओं की सहायता भी करते हैं, जो अपने को हिंसक नहीं समझते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इसको अलग से ही करें कि महिला और पुरुष दुश्मन नहीं है, हमें एक साथ ही काम करना है और पुरुष भी इसमें भागीदारी कर सकते हैं। ये महिला का खुद का ये प्रॉब्लम नहीं है कि हमारा जो घरेलू हिंसा है हमारा प्रॉब्लम है, हमें झेलना पड़ेगा, पुरुष हमें पीड़ित करते हैं तो हम बस उनके खिलाफ हैं। ये पूरा जो दृश्य है हमने इसको बदला कि महिला और पुरुष एक साथ ही जुटकर इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। तो बेल बजाओ ये ऐसा ही एक आवाज था कि पुरुषों को साथ लेकर हम ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, महिलाएं अकेली नहीं कर सकती। कई चीजें थी, हमने ये भी देखा कि जो लड़के जिनको बचपन में मारपीट की गई हो, उनसे दुर्व्यवहार किया गया हो, तो वो बड़े होकर वो भी हिंसक बनते हैं, ये रिसर्च ने दिखाया। तो लड़के भी बहुत तरह से इसमें सफर करते हैं, ना कि सिर्फ लड़कियां। ये एक था पॉइंट। तो हम किस तरह से लड़कों को, पुरुषों को साथ लेके चले, वो भी एक तरह से पीड़ित है इससे, महिलाएं नहीं सिर्फ। तो जो हम पुरुषवादी समाज की बात करते हैं, उसे पुरुष भी और महिलाएं भी पीड़ित है। तो यही विचार लेके हम आगे निकले थे और यही है बेल बचाओ का जो हम कहते हैं मूल बात। और जब जब वो जो कैंपेन बना, उसमें जहां एक घटना घटी कि एक पुरुष एक महिला को पर हिंसा कर रहा है और एक पुरुष उसको रोक रहा है, तो यही उसका मान्य था कि पुरुष ही आगे बढ़ सकता है जब वो हिंसा को रोके और महिलाओं का साथ दे। पर ये मतलब नहीं है कि महिलाएं हिंसा नहीं रोक सकती हैं, वो भी रोक सकती हैं। पर अगर एक साथ हम रोके तो शायद समाज और जल्दी बढ़े इस दिशा में। तो ये मेरा एक बहुत, मतलब क्या कहूँ, ये मुझे भी इस कैंपेन ने बहुत इंस्पायर किया और इसके बारे में बहुत लिखा गया, देश विदेश में इसकी चर्चा भी हुई, चाइना, पेरू, पाकिस्तान, इसमें इसके वर्जन्स भी बने, क्योंकि किसी ने इस तरह से देखा नहीं था कि एक सामाजिक स्तर पे ऐसी बात हो। तो आज तक उसने मेरा अपना भी सोच का ढंग बदल दिया, क्योंकि मेरे दिमाग में जो हम कहते हैं सहानुभूति जो आप कहते हो या एम्पति कहते हो, वो एक जो जो मनुष्य में होना चाहिए, उसके बारे में वो बात हम कर रहे थे कि जब तक हम वो अपने में ना लाए कि अगर मैं नहीं समझूं कि आप पे क्या गुजर रहा है तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं करूं। तो एम्पति की बात, सहानुभूति की बात जो हम कर रहे हैं, वहां से मेरे अपनी जो सोच की किस तरह से हम चाहे वो कैसा भी प्रॉब्लम उसको अगर हम झेलना चाहते हैं तो एक तरह से हमें इसको समझना पड़ेगा एक एम्पथी के तौर पे। और आज भी मैं कहती हूँ समाज में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है लैक ऑफ एम्पथी या सहानुभूति की कमी।
5: इतने साफ शब्दों में आपने बता दिया कि समाज का सबसे बड़ा समस्या जो है वो सहानुभूति की कमी है, एक दूसरे को ना समझ पाना, एक दूसरे के दर्द से नहीं रिलेट कर पाना, ये कितनी बड़ी असक्षमता है लोगों के अंदर आज, और जिसकी वजह से ही जो है समाज का स्ट्रक्चर या घर का स्ट्रक्चर वो चेंज होने लगता है। अगर बचपन में बच्चों को सही व्यवहार नहीं दिया गया है तो वही बच्चे आगे चल करके व्यवहारहीन हो जाते हैं, कुशल व्यवहार नहीं कर पाते, परिवार टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि एक सुखी संसार जो बन सकता है और जो उसकी नींव है समझ, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, वो खत्म हो जाती है। और सोनाली जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि महिलाओं पे हो रहे अत्याचार का समाधान सिर्फ महिलाओं को नहीं करना है, पुरुषों को भी करना है। और पुरुष जो अत्याचार कर रहा है वो कोई शक्तिशाली नहीं है, वो एक्चुअली अंदर से बहुत बिगड़ा हुआ है, अंदर में उसके भी बहुत बड़ा एक अत्याचार का अंश है जो उसकी यादगार है या जो उसके बचपन में कभी उसके साथ हुआ होगा। तो देखने के लिए जो अत्याचार कर रहा है और जिसपे हो रहा है, दोनों ही पीड़ित हैं, और दोनों के प्रति हमारी सहानुभूति होगी तभी हम दोनों को सुधार पाएंगे या दोनों को मदद कर पाएंगे। मैंने आपके इंटरव्यूज को जब पढ़ा तो मुझे एक चीज आया कि ये सवाल मैं आपसे पूछूं, मदद, सहयोग, सहायता, इन तीनों को आप कैसे रिलेट करते हैं?
6: तो आत्मनिर्भरता,
5: बिल्कुल,
6: आप जो भी करिए किसी को, आप उसको आत्मनिर्भर बनाए। आजकल वो बहुत बड़ा शब्द है, हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, पर ये एक सही ही बात है। किसी को आप, मतलब आप चाहे उसको शिक्षा दीजिए, आप उसको अपना काम करने का तरीका सिखाइए, आप उसको पैसे दीजिए, आप कुछ भी दीजिए, पर उसको आत्मनिर्भर, अब आप उसको मदद कहिए या सहयोग कहिए या सपोर्ट कहिए, पर दूसरी बात है कि किस ये करते हुए किसी को नीचा मत दिखा, है ना? क्योंकि एक तरह होता है कि मैं आपको मदद कर, मैं इतना बड़ा, मैंने आपकी की कुछ सेवा की, देखिए मैं कितना अच्छा, है ना? ये भी मत कर। तो इसलिए ये सहयोग, मदद, ये बड़े अच्छे शब्द हैं और आप इसको यूज करिए जैसे भी आपको करना है, पर उसका जो उसके पीछे जो आपका, क्या कहूँ, इंटेंशन है आपका, जो जहाँ आप इसको, मतलब आप इसको समझते हैं कि किसी को मैं मदद कर रहा हूँ इससे कि मुझे फायदा होगा, या किसी को मैं मदद कर रहा हूँ फिर कल ये किस तरह से मैं कर रहा हूँ कि वो जाके अपने आप ही आत्मनिर्भर हो, इससे मेरा क्या लेना, मैंने जो करना था कर लिया है ना। तो यही मैं कहना चाहूँ, मैं शब्द में नहीं भूलूंगी, क्योंकि शब्द, हम इंसान हैं, हम शब्द से ही अपने को समझा सकते हैं, चाहे किसी भी प्रकार से उन शब्दों का व्यवहार करें, वो शब्द हमें चोट भी पहुंच सकता है, शब्द में बहुत एक तरह से पावर है। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप किसी की मदद करें, किसी की का सहयोग करें, उसका उद्देश्य क्या है वो समझना चाहिए, वो आत्मनिर्भर हो, उसमें हमें कुछ मिल गया, एक पुरस्कार मिल गया, किसी ने हमें पहचाना, वो हमारा बोनस है, पर वो उद्देश्य नहीं है। तो वो जैसे हम बचपन में फर्स्ट आना चाहते थे, सर्टिफिकेट मिलना है, मेडल मिलना है, वही उद्देश्य था, पर ये मदद कुछ और ही चीज है, ये सहयोग कुछ और ही चीज है, वो फर्स्ट आना नहीं है। तो यही एक मेरी सोच है इसका।
5: बहुत सुंदर साथियों, आपने सुना होगा और मैं समझता हूँ ये बात आपके अंदर तक चली गई होगी कि चाहे हम किसी की मदद कर रहे हैं या उसको सहयोग दे रहे हैं या सहायता कर रहे हैं, भावना उसके पीछे हमारी क्या है, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। भावना क्या उसके पीछे वास्तव में उसको सहयोग करने की है या उसमें कुछ मेरा अपना स्वार्थ मिक्स्ड है, तो ये भावना को हमको चेक करना पड़ेगा। और जो सोनाली जी ने बहुत क्लियर शब्दों में, जैसे एक डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है कि ये दवाई है लेकिन साथ में ये करना जरूरी है, आप मदद भले करें लेकिन मदद के साथ साथ चेक करें कि भाई मेरे मदद के पीछे का उद्देश्य क्या है, क्योंकि वो उद्देश्य ही हमें उद्यमी बनाता है, वो उद्देश्य ही हमें राइट रास्ते पे चलते रहना सिखाता है। सोनाली जी, आपसे बात करते करते समय का पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता है और बातें करते रहे, लेकिन मुझे भी पता है आपने अपने व्यस्त समय से बहुत व्यस्तता को रखते हुए भी ध्यान में आपने हमारे लिए समय निकाला, इसलिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन एक रैपिड फायर राउंड खेलना चाहूंगा आपके साथ। रेडी फॉर इट?
6: रेडी।
5: तो एज यू नो रैपिड फायर राउंड है, तो आप ज्यादा से ज्यादा एक शब्द में या एक लाइन में ही उसका जवाब दे सकते हैं। सेवा क्या है?
6: अपने आप को देना।
5: वाओ। हिम्मत?
6: अंदर से आना।
5: उम्मीद किसे कहते हैं?
6: सुभाव।
5: ओह वेरी ब्यूटीफुल। शक्ति क्या है?
6: औरत।
5: भारत क्या है?
6: मेरा।
5: ओ सो स्वीट। एंड सोनाली कौन है?
6: आपके सामने जो है
5: वो
6: है
5: पारदर्शिता। जी के इस शब्द से कि वो है आपके सामने एक पारदर्शी व्यक्तित्व जिसके स्वरूप में कभी वो दिखते हैं कभी भारत दिखता है, ऐसे यशस्वी भारत की यशस्वी बेटी सोनाली जी को आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमारे बीच हमारे श्रोताओं से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत कुछ सिखाने के लिए बहुत कम समय में, ये गुणी नम्र गुणी मैं फिर से कहूंगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
6: अंतनु भाई आपका भी बहुत धन्यवाद, आज आपने मुझे इतना पॉजिटिव एनर्जी दिया और इतना जोश दिया, आज इससे मैं बहुत कुछ खुद भी ले जा रही हूँ, और अपने उन जो मैं प्रिंसिपल्स है या उन जिस दिशा में मुझे चलना है उसमें मुझे और भी एक तरह से मतलब जोश आया है आज आपसे बात करके, तो दोनों तरह से ही आपको भी कुछ मिला मुझे भी बहुत कुछ मिला आज ये बात करके आपसे, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।
5: थैंक यू सो मच सोनाली जी, उम्मीद करेंगे आप दोबारा हमारे श्रोता साथियों से जुड़े और ऐसे ही हम मिलते रहे, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
6: धन्यवाद आपका भी, आपने मुझे बुलाया, थैंक यू।
5: साथियों आपने सुना आज हमारे बीच यशस्वी भारत कार्यक्रम में भारत की एक यशस्वी बेटी सोनाली खान जी थे, जिन्होंने अपने छोटे बड़े पहलों से भारत की कई समस्याओं को सुधारने का, उनको समझाने का प्रयास किया है भारत को, जिसमें से एक विशेष था बेल बजाओ, घरेलू हिंसा। घर पे हिंसा ना केवल महिलाओं पे हो रहा होता है लेकिन कई बार बच्चे भी उसका शिकार हो रहे होते हैं क्योंकि वो उसे देख रहे होते हैं। आपके आसपास अगर कुछ ऐसा हो रहा है या आपके घर में ऐसा कुछ हो रहा है, आज एक दिन आप निश्चित करें कि इस चीज को मुझे समझना है, इसकी गहराइयों तक जाना है और मुझे मेरे घर को सशक्त बनाना है, स्वच्छ बनाना है, और जब मेरा घर सुधर जाएगा तो मेरा देश जो मेरा बड़ा घर है उसे भी मैं सुधारने में बहुत सक्षम हो जाऊंगा। 90.4 FM रेडियो मधुबन के साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा, हम दोबारा मिलेंगे साथियों एक नए मेहमान के साथ यशस्वी भारत कार्यक्रम में, आपका बार बार स्वागत

0: आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

हाल लाएगी हर दिन त्योहार, अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी, लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी। ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू, आप सच बोलेंगे। देयर इज नो रीजन, कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सुन रहे हो रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका हम सफर RJ संजय। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी श्रृंखला श्री कृष्ण की 16 कलाएं के 6 अध्याय में। आज हम जानेंगे वह अद्भुत कला जिसमें श्री कृष्ण का नृत्य प्रेम, आनंद और भक्ति का संगम बन जाता है। उसी का नाम है नृत्य माधुरी। सोचिए जरा, जब कान्हा मुरली की धुन पर नृत्य करते हैं तो केवल कदम ही नहीं छिड़कते, बल्कि वृंदावन की हर गली, हर कुंज, हर हृदय आनंद से झूम उठता है। गोपियों के साथ रासलीला, बाल्यकाल की चंचल क्रीड़ाएं और भक्ति के साथ उनका नृत्य, यही है नृत्य माधुरी का सार। यह कला हमें बताती है कि ईश्वर का नृत्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि भक्ति का उत्सव है। हर लय में छिपा है प्रेम, हर ताल में छिपा है आनंद और गति में छिपा है आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला दिव्य संदेश। तो आइए, आज के इस अध्याय में हम डूब जाए उस माधुरी में जो श्री कृष्ण के नृत्य को अमर बना देती है। तो दोस्तों, इसी गीत के साथ हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। तो सुनते हैं एक सुंदर और प्यारा गीत।

जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हमें नृत्य माधुरी का परिचय होना बहुत जरूरी है। कृष्ण का नृत्य केवल गति नहीं था, वह आत्मा की अभिव्यक्ति था। जब वे रासलीला में नृत्य करते तो वृंदावन की गोपियां उनके साथ लय से झूम उठती। उनका नृत्य भक्ति का उत्सव था, जिसमें हर जीव ईश्वर के प्रेम में डूब जाता। यही है नृत्य माधुरी, वह कला जिसमें हर कदम भक्ति का संदेश है, हर ताल में प्रेम का अनुभव है और गति आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला दिव्य संगम है। तो दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं हम एक सुंदर और प्यारा दूसरा गीत।

नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। भागवत पुराण में वर्णन आता है कि जब श्री कृष्ण ने रासलीला रची तो यह केवल एक नृत्य नहीं था, यह दिव्य अनुभूति थी। हर गोपी को लगता था कि कृष्ण केवल उनके साथ है। यह अद्भुत लीला हमें बताती है कि ईश्वर हर भक्त के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ते हैं, उनके सुख दुख में सहभागी बनते हैं और उनके आनंद को अपना आनंद बना देते हैं। राधा और श्री कृष्ण का नृत्य इस कला का सर्वोच्च उदाहरण है। यह नृत्य केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा का दिव्य संगम है। जब राधा और श्री कृष्ण एक साथ नृत्य करते हैं तो वह क्षण भक्ति का उत्सव बन जाता है। गोपियों की आंखों में प्रेम, उनके हृदय में भक्ति और उनके कदमों में लय सब मिलकर उस रासलीला को अमर बना देते हैं। इस कथा का अंश से यह संदेश मिलता है कि ईश्वर का नृत्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला सेतु है। हर ताल में छिपा है प्रेम, हर गति में छिपा है आनंद और हर लय में छिपा है भक्ति का अमृत। तो दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं एक सुंदर और प्यारा गीत। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जय श्री कृष्ण दोस्तों, नृत्य माधुरी हमें यह सिखाती है कि जीवन स्वयं एक नृत्य है। जब हम अपने अहंकार और मोह को त्याग देते हैं तो हम ईश्वर की लय में झूमने लगते हैं। कृष्ण का नृत्य हमें यह संदेश देता है कि सच्चा आनंद केवल ईश्वर के साथ एकत्व में है। जैसे रासलीला में हर गोपी को लगता था कि कृष्ण केवल उनके साथ है, वैसे ही जीवन की हर परिस्थिति में ईश्वर हमारे साथ है। उनकी लय हमें यह बताती है कि सुख दुख उतार चढ़ाव सब जीवन के नृत्य का हिस्सा है। जब हम इन सब को भक्ति और प्रेम से स्वीकार करते हैं तो जीवन आनंदमय हो जाता है। नृत्य माधुरी का दर्शन हमें यह प्रेरणा देता है कि जीवन को केवल संघर्ष या मोह का जाल न समझे, बल्कि उसे ईश्वर के साथ नृत्य की तरह देखे। हर कदम में भक्ति, हर ताल में प्रेम, हर गति में आत्मा का परमात्मा से मिलन, यही है नृत्य माधुरी का सार। तो दोस्तों, सुनते हैं एक सुंदर और प्यारा गीत।

जय श्री कृष्ण दोस्तों, श्रीमद् भागवत में एक श्लोक कहा गया है, रसे रम्य हरि वंदे। इस श्लोक का भावार्थ है कि रास लीला में श्री कृष्ण का नृत्य अद्वितीय और रमणीय है। यह नृत्य केवल कला नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम का उत्सव है। जब श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला में नृत्य करते हैं, तो हर गोपियों को लगता था कि कृष्ण केवल उनके साथ है। यही है ईश्वर का दिव्य संदेश कि वह हर भक्त के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ते हैं और उनके आनंद में सहभागी बनते हैं। नृत्य माधुरी हमें यह सिखाती है कि ईश्वर का नृत्य आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। हर ताल में प्रेम, हर गति में आनंद और हर लय में भक्ति का अमृत छिपा है। यह हमें बताता है कि जीवन स्वयं एक नृत्य है और जब हम अहंकार व मोह को त्याग कर ईश्वर के लय में झूमते हैं, तभी सच्चा आनंद प्राप्त होता है। इस श्लोक का दर्शन हमें यह प्रेरणा देता है कि भक्ति केवल पूजा या अनुष्ठान नहीं बल्कि प्रेम और आनंद का उत्सव है, जहाँ हर जीव ईश्वर के साथ एकत्व का अनुभव करता है। तो दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं एक सुंदर और प्यारा गीत।

0: तो श्रोताओं, यह थी छठी कला नृत्य माधुरी। यह कला हमें सिखाती है कि जीवन का हर क्षण ईश्वर की लय में नृत्य करने जैसा है। जब हम अपने अहंकार और मोह को त्याग कर भक्ति की धारा में बहते हैं तो जीवन स्वयं आनंद का उत्सव बन जाता है। अब हमारी श्रृंखला का अगला अध्याय होगा वाद्य माधुरी, यानी श्री कृष्ण की वाद्य यंत्रों की मधुरता। वह संगीत जो केवल ध्वनि नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला दिव्य संदेश है। मुरली की तान, मृदंग की लय और वीणा की मधुरता सब मिलकर कृष्ण की वाद्य माधुरी को अमर बना देते हैं। तो श्रोताओं, अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे कृष्ण के वाद्य यंत्र केवल संगीत नहीं बल्कि भक्ति का साधन है जो हर हृदय को प्रेम और आनंद से भर देता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, सुनते रहो, सुनाते रहो रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
2: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया। वो उन्होंने किया, मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

पास चाहे जो हो। अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं, एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पे असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चले होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस, कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत करते हैं। हमने, अगर आपको याद हो, पिछली कड़ी में बात की थी कि सिचुएशंस हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी हो जाती हैं और नो डाउट वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स लगती हैं। और जिस तरह से हमने देखा था कि आने वाला वक्त ये भी कह रहा है कि सिचुएशंस तो आती ही जाएंगी, और वो अगर हम एक चीज जिसे हमने धारण करने को कहा था, जिसे कहा था कि अपने जीवन में जरूर इम्प्लीमेंट करें, वो ये कि उन्हें सिचुएशन फील कैसे किया, वो मैंने क्रिएट किया।
1: तो यहाँ दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस होल लाइन इज वेरी इम्पोर्टेंट, वो मैंने क्रिएट किया। आई जस्ट हैव टू रिमेम्बर ओनली दिस। अभी तक ये हो रहा था कि हाँ, दर्द क्रिएट हुआ, टेंशन क्रिएट हुई या गुस्सा क्रिएट हुआ, लेकिन वो परिस्थिति ने क्रिएट किया।
0: सिचुएशन ऐसी थी,
1: आई अंडरस्टूड दैट द पेन इज गेटिंग क्रिएटेड। वो तो मुझे, क्योंकि वो मेरे अंदर क्रिएट होता है, तो मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है कि वो पेन क्रिएट हो रहा है क्योंकि आई एम गोइंग थ्रू द पेन। लेकिन क्रिएटर कौन था उसका? सो समवेयर व्हाई आई वाज फोकसिंग आउटसाइड, क्योंकि मेरे को लगा क्रिएटर बाहर बैठा है, यू नो दैट्स व्हाई यू सेड पेन हिट्स अस, बिकॉज क्रिएटर वाज आउटसाइड। लेकिन जो आपने अभी कहा, मैंने क्रिएट किया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ आ गई? सारी मेरे ऊपर आ गई। तो जो हमने, कई बार हम ऐसी थॉट्स क्रिएट करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि वो नेगेटिव हैं, लेकिन वो नेगेटिव थॉट फिर वो मेरे सारे दर्द का कारण बन जाती हैं उस सिचुएशन को फेस करने में। तो अगर हमें अपने आप को उस सिचुएशन से क्रॉस करना है और बहुत स्टेबिलिटी से क्रॉस करना है, तो कुछ एक बातें जो हमें बहुत मदद करती हैं वो है पॉजिटिव थिंकिंग। आई नो इट्स अ वेरी क्लीशेड वर्ड, आई नो इट्स अ वेरी क्लीशेड वर्ड, वेरी रेड, वेरी हर्ड, but still not practiced. What is the need of the hour? Let's start now. Let's not wait for the pain to
0: come in,
1: go out of control. Kyunki wo jo emotional pain hai, fir wo sirf emotional pain na rehkar mere par physical effect bhi le leta hai, meri relationships pe effect karta, koi na koi ailment sharir mein bimari ho jati hai, fir doctor kehta hai tension nahi lena, hoga, it won't happen at that time. To jabki ab मालूम है सिचुएशंस बाहर है, बट स्टिल इट्स नॉट दैट बैड, इट्स स्टिल नॉट बैड, आई कैन स्टिल टेक आउट सम टाइम टू वर्क ऑन माय सेल्फ, प्रोवाइडेड आई रिमूव दिस वन थॉट कि मेरे पास टाइम नहीं है। सी, आई एम नॉट रेडी टू टेक आउट दैट लिटिल बिट ऑफ टाइम। हाउ मच टाइम? 10 मिनट्स, 15 मिनट अपने लिए निकालना, 15 मिनट जिससे आपके पूरे दिन की, आपके पूरे जीवन की नींव खड़ी हो सकती है। अगर हम 15 मिनट निकाल कर सिर्फ साइलेंस में बैठकर अपने आप को देखें, अपनी थॉट्स को देखें, फिर आगे मेडिटेशन जब करते हैं तो परमात्मा से कनेक्शन जोड़े, अगर ये 15 मिनट में मेरा इतना क्लीनिंग और चार्जिंग प्रोसेस हो सकता है जिससे मैं बड़ी से बड़ी सिचुएशन को फेस कर सकती हूँ, हाउ मच इज 15 मिनट्स नाउ?
0: लेकिन ऑलरेडी जब सिचुएशन है, जैसा आपने कहा कि अब सिचुएशन आ गई है, और
1: लेकिन अभी भी उतनी बड़ी नहीं है, अभी भी उतनी बड़ी नहीं है कि मैं अपने ऊपर काम करना नहीं शुरू कर सकती, क्योंकि अभी भी मुझे क्या करना है, फर्स्ट स्टेज तो यही देखनी है कि आई एम क्रिएटिंग द रिस्पॉन्स। लेकिन अगर मैं अपने लिए समय निकाल कर थोड़ी देर साइलेंस में बैठकर उस पर कॉन्टम्पलेट नहीं करूँ, मनन नहीं करूँ, तो मुझे तो ये फैक्ट भी नहीं पता चलता कि आई एम क्रिएटिंग द रिस्पॉन्स। मुझे तो ये रियलाइजेशन भी नहीं है कि आई एम क्रिएटिंग द पेन। क्यों रियलाइजेशन नहीं? आई एम गोइंग वेरी फास्ट, ये इसलिए द फर्स्ट स्टेप हैज टू बिगिन विद टेकिंग आउट सम टाइम फॉर माय सेल्फ। बैठे भले वो परिस्थिति ही है, लेकिन बैठकर अपने बारे में जब सोचेंगे, व्हाट डू आई हैव अ चॉइस टू फेस दिस सिचुएशन, दिस कुड बी कॉल्ड द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेडिटेशन, नो प्रॉब्लम। परमात्मा से कनेक्शन अभी नहीं जुड़ रहा है, नो प्रॉब्लम, अपने से तो जोड़ना

0: शुरू करें, अपने से जुड़ेगा, हीलिंग होगी, तो परमात्मा से तो जुड़ना ही है, बिकॉज ही इज फाइनली द वन हु इज गोइंग टू यू नो गिव मी द पावर टू चेंज. लेकिन टाइम तो निकालना पड़ेगा, इलाज करवाना है तो डॉक्टर के पास जाना तो पड़ेगा ना इलाज करने के लिए, उसके साथ कनेक्शन जोड़ना तो पड़ेगा. कहीं डॉक्टर के पास जाने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन हाय मैं बीमार हूँ, हाय मैं बीमार हूँ, नाउ हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, हु इज रिस्पॉन्सिबल. आप खुद ही अपने आप को कहते हैं कि मेरे पास अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए टाइम नहीं है, और फिर कह रहे हैं हाय मैं क्या करूँ, मेरी किस्मत, मेरा भाग्य, अगेन द ब्लेम विल गो everywhere outside. तो meditation is definitely that connection जिससे मैं अपने आप को देखना शुरू करती हूँ, अपनी healing, क्योंकि meditation comes from the word healing, अपने आप को heal करना शुरू करती हूँ, अपने thoughts को देखना शुरू करती हूँ कि हाँ देखेंगे ही नहीं तो question ही नहीं है कि negative है या positive है, वो तो पता ही नहीं चलेगा. बाहर सिर्फ अपने actions को देख सकते हैं, thoughts को नहीं देख पाते हैं. तो थोड़ा सा समय अगर हम अपने लिए रोज निकालें, भले अभी भी कितनी भी बड़ी सिचुएशन है, बहुत बड़ी नहीं है, अभी भी उतना समय निकल सकता है, और अभी भी समय निकालेंगे तो उस सिचुएशन को राइट पर्सपेक्टिव में देख पाएंगे. समय नहीं निकालते.
1: एक बात मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, अभी जो हम बात ही कर रहे हैं ना सचिवानी की, जब सिचुएशन आती है तो हमारा कोई थॉट क्रिएट होता है, लेकिन अगर अवेयरनेस के साथ देखूं, मैं भी अगर देखूं, हमने जो हम कई दिनों से काम कर रहे हैं, हमारे सारे दर्शक और मैं शामिल होकर, समटाइम्स व्हेन द सिचुएशन, कई बार तो हम हैंडल करते हैं अपने आप को देखते हुए, कई बार देखते हैं कि वो फीलिंग पहले जनरेट होती है, थॉट की जहाँ फीलिंग ने हिट किया, चाहे वो हर्ट का था, चाहे वो एंगर का था, चाहे वो पेन का था, या चाहे वो रिजेक्शन का था, कोई भी एक फीलिंग ने हिट किया, उसके बाद थॉट आया कि
0: फीलिंग बिना थॉट के नहीं आएगी. हर्ट, पेन, जितने भी आपने फीलिंग्स बताई, हर्ट, पेन, एंगर, रिजेक्शन, उसने मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, हर्ट, उसे मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, एंगर, वन थॉट हैज टू गेट क्रिएटेड फर्स्ट.
1: लेकिन वो थॉट हमें दिख नहीं पाता,
0: पर फास्ट प्रोसेस है ना. क्योंकि मेरा एक स्पीड, इतनी फिफ्थ गियर में आपकी गाड़ी अगर सारा दिन चल रही है तो आपको कितना क्लैरिटी से दिखाई देगा सब कुछ. कभी तो स्लो डाउन करेंगे थोड़ा सा तो दिखाई देगा कि क्या प्रोसेस है अंदर जो चलता है. देखो इतना फास्ट होता कि ये भी नहीं रियलाइज होता कि पहले थॉट या पहले फीलिंग, ये भी नहीं रियलाइज होता अंदर से आ रहा है या बाहर से आ रहा है. यू नो लाइक यू सेड द फीलिंग हिट्स, अगेन फीलिंग डजंट हिट, आई क्रिएट, लेकिन बाय प्रोडक्ट ऑफ माय थॉट. इसलिए जहां मेहनत करने वाली बात है वो उस सीड पर है, उस बीज पर है. थॉट एक बार राइट क्रिएट हो गया, फीलिंग अपने आप राइट क्रिएट होगी, एक्शन अपने आप उसके बाद राइट होगा, लेकिन वो थॉट स्टेज तो हम इतनी फास्ट फॉरवर्ड में चले जाते हैं, पता नहीं चलता. तो अगर हम थोड़ा सा समय रोज बैठकर अपने थॉट्स को देखें तो हमें पता चलने लगेगा कि वी आर क्रिएटिंग द थॉट. तो इसलिए थिंकिंग को परिवर्तन करने के लिए, पॉजिटिव थिंकिंग में लाने के लिए मेडिटेशन इज द सॉल्यूशन. Because meditation means first thing self introspection, अपने आप को देखना. जब तक हम वो नहीं करेंगे तो उसको तो फिर हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसको कैसा करना है. लेकिन normally क्या होता है कि जब भी परिस्थिति आती है, my first response which has become very common, here is a change, what is the first response that gets created automatically? What is it?
1: Resistance.
0: Resistance. यहाँ से सिचुएशन आई, मैंने रेजिस्ट किया क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे कोई ना कोई डर है. फियर एक बहुत डीप रूटेड,
1: क्या होगा,
0: डीप रूटेड. अब जो आपने कहा क्या होगा, अब हम नॉर्मली समझते कि जब भी परिवर्तन होता है कुछ ना कुछ तो हमें डर लगता है. फियर इज वेरी डीप रूटेड. लेकिन डर ये लगता है हमें कि अब क्या होगा. एक्चुअली अगर आप और उसको गहराई से अपने आप को कभी भी देखना, नेक्स्ट टाइम जब डर लगेगा, फियर, इट्स नॉट फियर ऑफ व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, इट इज फियर ऑफ व्हाट विल आई लूज आउट ऑफ व्हाट आई हैव नाउ.
1: यस, लूजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट,
0: बिकॉज़ वी ऑलवेज थॉट दैट चेंज मींस फियर ऑफ अननोन, यू नो, कि आई डोंट नो कि इस चेंज से क्या होने वाला है. लाइक आई रिमेम्बर कि जब कंप्यूटराइजेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड, you know, into the offices, into the school system and everything. Oh, it was fear, fear everywhere.
1: There was so much of resistance.
0: Yeah, so much of resistance. कि जिस तरह से चल रहा है, ठीक चल रहा है ना, ये किस लिए अभी, ये क्यों
1: करेंगे? Human को replace कर देंगे, machine जो है, machine will take over. कितनी उनकी films बनी थी, कितना कुछ बना था.
0: तो ये fear किस बात का था? Fear इस बात का नहीं था कि ये क्या होगा इससे. Fear इस बात से था कि मेरी जो वर्तमान समय position है, मेरी जो अथॉरिटी है, मेरी जो पावर है, कहीं वो तो नहीं
1: लूज
0: कम हो जाएगी. तो वो फियर की वजह से मैं उस चेंज को रेजिस्ट करती हूँ. मुझे नहीं चाहिए, मैं जैसे हूँ वैसे ठीक हूँ. सो फियर ऑफ लूजिंग समथिंग. एंड नॉर्मली हम किस चीज़ों को खोने का डर रहता है हमें? पीपल, फियर ऑफ लूजिंग पीपल, पावर, you know, any relationship,
1: oh, yes,
0: any office, anywhere change is introduced, fear of losing power,
1: my position,
0: power. Position, yes, prestige, my personality, people, money, pay, all these, we call them the P's, power, position, prestige, people, pennies, dar. Aur ye dar mujhe us change ko resist karne ke liye karta hai. Aur jaise hi maine resist kiya, तो कौन सी एनर्जी फ्लो होने वाली है?
1: नेगेटिव.
0: नेगेटिव. सो इफ आई रेजिस्ट चेंज, देयर इज नो वे आई विल बी एबल टू थिंक पॉजिटिव नाउ. तो मैंने रेजिस्ट किया क्योंकि मुझे अंदर कोई ना कोई डर है कि मेरे ये सारे जो हैं पोजीशन, पावर, लोग जो हैं, इनमें से कोई मेरे से खो ना जाए. तो वो डर हमें रोकता है. तो अगर हमें इस सिचुएशन को बहुत आसानी से क्रॉस करना है, फर्स्ट स्टेप कम्स टू acceptance
1: of the situation.
0: Acceptance, स्वीकार करना कि ये होना है. Like जैसे ये सारी बातें हमने की, अब ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है ना. All these things, people, money, position, whatever, it's a part of my life. This is also all energy, like it's flowing in my life. ये एक river की तरह है जो flow करता रहता है. हम उस river को क्या करने की कोशिश करते हैं?
1: रुक,
0: रुक जाए, ये यहाँ रुक जाए. और वो रिवर को रोकने की कोशिश जो हम ये जीवन में हमारा जो बहता, ये सारी चीजें बहती हैं. दैट्स व्हाई इट्स चेंज, बिकॉज रिवर फ्लोइंग, नॉट इवन अ सिंगल यू नो मोमेंट इट्स गोइंग टू बी टू मोमेंट्स द सेम. फ्लोइंग रिवर मीन्स हर पल
1: अलग
0: अलग, हर पल परिवर्तन. तो ये जीवन में ये जो सारी बातें हैं, ये परिवर्तन है. 10 साल पहले मेरे जीवन में जो लोग थे, आज परिवर्तन है. 10 साल पहले जो मेरी पोजीशन थी, आज परिवर्तन है. वी आर नॉट क्वेश्चनिंग गुड और बैड. क्वेश्चन इज, हैज इट रिमेंड कांस्टेंट? नो. तो हम उसको क्यों रोकने की कोशिश करते
1: हैं? यहाँ आपने कहा एक्सेप्टेंस. प्रॉब्लम ये आती है, जैसे ही एक्सेप्टेंस कहती हूँ, मेरे जो सारे फियर्स थे, मैं उसको एक्सेप्ट करने लग जाती हूँ. कि अच्छा ठीक है, फिर मेरी अपनी पोजीशन तो जाएगी जाएगी, कोई आ गया, मेरे पैसा तो जा ही रहा है. ये जो फियर, ये जो एक्सेप्टेंस है, ये एक्चुअली एक्सेप्टेंस ना लाइक रहकर कई बार, मतलब जैसे एक्सेप्टेंस आप कहो कि सिचुएशन की एक्सेप्टेंस, तो उसके साथ के फियर के साथ जो लूज को, चीजों को लूज करने वाला फियर था, उसको एक्सेप्टेंस की बात सोच
0: लेते. तो फिर हमने फियर को एक्सेप्ट किया, सिचुएशन को थोड़ी एक्सेप्ट किया. सिचुएशन को नहीं एक्सेप्ट किया, मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि इस सिचुएशन में डर लगना तो नेचुरल है. हम अपने रिस्पॉन्स को भी नहीं कहेंगे, रिएक्शन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगेन बाय सेइंग कि ये सिचुएशन में ये तो नेचुरल ही है ना. सो वी
1: एक्सेप्ट, ऐसा तो होगा ही, ये होगा, ये होगा, अब चलो मैं एक्सेप्ट, उसको रेजिस्ट नहीं करता हूँ. ठीक है, अब हो गया है ये, तो ठीक है, मेरी नौकरी भी जाएगी, मेरी पोजिशन चली जाएगी.
0: सो दिस इज अ होल सीरीज ऑफ नेगेटिव थॉट्स व्हिच हैज स्टार्टेड. तो ये जो रिवर जो फ्लो कर रहा है, If I try to stop it, it's like एक डैम बिल्ड कर देना, you know, ये यहीं रुक जाए, पानी जैसा आगे नहीं फ्लो करे, ये यहीं का यहीं रुक जाए. अब जैसे ही हम उस पर एक डैम बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, तो डैम के दूसरी तरफ क्या क्रिएट होगा? प्रेशर. और ये प्रेशर जो है, दिस आई एम क्रिएटिंग, दैट इज वाई वी से सेल्फ क्रिएटेड. अपना प्रेशर खुद ही क्रिएट किया हुआ है इन्होंने. क्यों क्रिएट किया हुआ है? क्योंकि ये बहती हुई चीजों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं. अब बह रही हैं चीजें, व्हाट कैन आई डू, हाउ डू आई एक्सेप्ट, एंड व्हाई शुड आई एक्सेप्ट. मोस्ट इम्पोर्टेंट इज एक्सेप्ट करना, लेकिन क्यों एक्सेप्ट करना? अगर मुझे पसंद नहीं आ रही है सिचुएशन, तो क्यों एक्सेप्ट करना? हैव यू सीन अ रेस्लिंग मैच? हाँ, तो वो जूडो या सुमो या जो भी वो रेस्लर्स होते हैं, आप कभी भी देखना उनकी जो मैच होता है वो कैसे स्टार्ट होता है, दैट इज चेंज फिलोसफी. दो लोग सामने से आते हैं, फर्स्ट दे बाव डाउन, राइट, दिस इज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट, देन दे एम्ब्रेस ईच अदर. कभी भी देखना, इट ऑलवेज द मैच विल स्टार्ट लाइक दैट. पहले आप बाव डाउन करते हैं, फिर आप एम्ब्रेस करते हैं, फिर आपका आगे शुरू होता है जो गेम आपने करनी है. दिस इज बेसिक चेंज फिलोसफी, कि जब भी आपके सामने वो परिवर्तन आए, वो सिचुएशन आए, पहले आप उसको एम्ब्रेस करते हैं. दिस जूडो और रेसलिंग, व्हाट डू दे डू, आप पहले एम्ब्रेस करते हो और एम्ब्रेस करने से आप कैच कर लेते हो कि इसका मोमेंटम क्या है,
1: इसकी ताकत कितनी है.
0: हाँ. और फिर उस ताकत को मैं कैसे फेस करने वाला हूँ. अगर ये यहाँ से करेंगे ना इसको, तो आई वुडंट नो हाउ टू हैंडल
1: फियर ऑफ अननोन रिमेन्स,
0: फियर ऑफ दैट. सो नॉर्मली द चेंज फिलोसफी गोज कि फर्स्ट यू एम्ब्रेस, राइट, देन यू कैच द मोमेंटम कि इसके अंदर क्या है. लेकिन अगर आप उसको रेजिस्ट करेंगे तो आपको उसका मोमेंटम तो पता ही नहीं चलेगा कि वो किस फ्लो से आ रहा है. और जब तक हम उसके मोमेंटम को कैच नहीं करेंगे, तब तक हमें ये नहीं समझ में आएगा कि अब इसको मैंने किस तरह से,
1: अपने शत्रु से पहले हाथ मिलाओ, उसके बाद उसका जांचो कि कितना है उसमें पोटेंशियल,
0: and then see what I can do, because finally life is what it's like this only. Na ye jo situations hum bol rahe hain, ye kya hai, hamara match hi to chal raha hai na sara din ke andar, lekin jab hum wo situation ko hi
1: bada maan
0: lete hain aur apne aap ko ekdam chota kar lete hain, that means one side has said sorry, main aapke sath nahi match khel sakta, I have already accepted defeat, mere jeevan mein to yahi likha hai. To matlab kya kiya, maine to uske sath ट्राई भी नहीं किया,
1: गिव अप कर,
0: ट्राई ही नहीं किया. सो ऑलवेज एक्सेप्टेंस, एंड एक्सेप्टेंस मीन्स ये है, दिस इज इट, नाउ व्हाट. आवर प्रॉब्लम इज ऐसा क्यों, ऐसा कैसे. अभी हमारे बोलने से या हमारे उस तरह से सोचने से क्या हो जाता है, जैसे ही वो क्यों, क्या, कैसे, इसमें चले जाते हैं, परमात्मा शिव बाबा हमेशा हमें बताते कि ये जो क क क हर टाइम खड़ा करते हो ना, इसको पहले फुल स्टॉप करो. क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, तो पूरा माइंड कहाँ किस तरफ चला गया, क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस. एंड देन बाबा ऑलवेज सेज क्वेश्चन मार्क बहुत क्रुकेड मात्रा है, बहुत टेढ़ी है, फुल स्टॉप ऐसा है. नाउ व्हाट, नाउ व्हाट. लेट्स से आप मेरे से अच्छी तरह से बात नहीं कर रहे, छोटी सी सिचुएशन है, आई नो सिचुएशंस आर वेरी बिग, बट लेट्स टेक अ वेरी स्मॉल सिचुएशन. आप मेरे से ठीक से बात नहीं कर रहे, आप मुझे अब्यूज़ भी कर सकते हैं, आप बुरा भला कह रहे हैं, शायद 10 लोग आसपास सुन रहे हैं, आप इंसल्ट कर रहे हैं. ना ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा करना चाहिए, इनको यही बात कहनी थी अलग से कह देते, ये कोई बोलने का तरीका है क्या, इस तरह से बात की जाती है. सो हु एम आई ट्राइंग टू कंट्रोल, I'm trying to control you, and I'm going into क्यों, क्या, कैसा. The next acceptance means हाँ जी, ये इस तरह से मेरे से बात कर रहे हैं, अब मेरा response क्या.
1: Insulted,
0: आपसे बुद्धि हटाऊंगी, तब तो बुद्धि को अपने ऊपर लेकर आऊंगी कि हाँ, how am I supposed to face this. लेकिन जब तो मेरा मन आपके अंदर ही अटका हुआ है, आप ऐसे क्यों, आप ऐसे कैसे, आप
1: और आपने मेरी इंसल्ट कर दी, इतने सारे लोगों के सामने कर दी, आपने मुझे ये कह दिया, आपने मुझे ये कह दिया, मुझे ये समझ लिया, मुझे ये समझ, यू नो, किसने समझा,
0: आपने किया, आपने किया, जो सही है या गलत है, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट, बिकॉज़ बाय गोइंग इनटू दैट देयर इज नो रिजल्ट. अगर मैं समझू के ओके, यू, आई फील आई शुड टेल यू, आई विल टेल यू कि आई डोंट थिंक कि जो आपने मेरे साथ किया वो ठीक, लेकिन वो मैसेज भी आप तक कन्वे करने के लिए पहले मेरी स्टेट ऑफ माइंड कैसे होनी चाहिए. लेकिन अगर मैंने आपको रेजिस्ट किया, तब मेरे अंदर आपके प्रति इतनी कहें घृणा भर जाती है, इतनी नफरत भर जाती है, कि बैठकर क्लैरिटी से फिर उसको वो
1: नहीं हो पाता.
0: तो इसलिए अगेन आई विल हैव टू कम बैक टू माई सेल्फ. लेकिन आपसे हटकर, मतलब सिचुएशन से हटकर अपने तक आने का जो प्रोसेस है, वो सिर्फ तब होता है कि मैं पहला वो फुल स्टॉप, जो आपने कहा ना फुल स्टॉप लगाना, फुल स्टॉप इज एक्सेप्टेंस. तो जो वो रिवर फ्लो कर रहा है, आई ओनली हैव अ फ्यू ऑप्शंस विद दैट. एक तो उसको रोकने की कोशिश करे, प्लीज मत जाओ, यू नो आई ट्राई टू स्टॉप यू, या प्लीज बदल जाओ, प्लीज अच्छे हो जाओ, प्लीज मेरे से ठीक से बात करो. दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. वी आर ट्राइंग टू स्टॉप द रिवर, कि हम दूसरों को ब्लॉक करते हैं. दूसरा है, कई बार ऐसे हो जाता है कि आप जैसे हैं मैं आपके ही प्रभाव में
1: वैसी होती जाऊं,
0: बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं. तो देन व्हाट हैपेंड कि रिवर वाज फ्लोइंग, मैं रिवर के साथ ही फ्लो होकर चली गई. जैसे आपने कहा ना, एक्सेप्टिंग द पेन, दिस इज फ्लोइंग विद द रिवर. हाँ, सिचुएशन खराब है तो मेरा भी खराब होना उसके साथ ये जायज है. दूसरा गुस्सा कर रहा है तो मेरा भी गुस्सा करना जायज है. ये क्या हुआ? Flowing with the river.
1: Oh, so you have to continue to stand and let it go.
0: Yeah.
1: I would have said otherwise, ki flow with the river.
0: No, flow with the river is then that means always getting influenced. Flow with the river मतलब फिर मेरी identity कुछ भी नहीं हुई ना, मेरे पास फिर भी कोई control नहीं हुआ. सामने river जो जो लेकर आता गया मैं उसके साथ ही बहती गई. आज रिवर इस तरफ जा रहा है, कल उस तरफ जा रहा है, परसों उस तरफ जा रहा है, तो मैं भी उसके साथ.
1: और मैं बेचारी अपने आप को कहती गई, मजबूर, कॉम्प्रोमाइज सब कुछ करती गई. मैं तो आई स्टैंड वेयर एवर आई वाज स्टैंडिंग
0: एंड आई लेट द रिवर फ्लो.
1: ओह यस.
0: नीदर स्टॉप द रिवर, क्योंकि वो मेरे बस की बात नहीं है. नीदर फ्लो विद द रिवर बिकॉज दैट्स नॉट गुड फॉर मी. आई विल जस्ट I don't know where I will
1: reach. And that's not what I wanted.
0: That's not what I want.
1: You know, it's very important. If I wanted to flow with the river, if this was the right direction I was feeling, I should go. Otherwise, I should stay where.
0: So, if I can look at that river flowing, na lekin.
1: हाँ.
0: मुझे ये दिखाई देना चाहिए ना अपने जीवन के अंदर, चाहे वो परिस्थिति है, वो परिस्थिति चाहे लोग हैं, चाहे कुछ भी है, मुझे ये दिखाई देना पड़ेगा कि ये है स्थिति, ये है परिस्थिति. परिस्थिति के साथ मुझे स्थिति को बह नहीं जाना है. मुझे परिस्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि वो भी मेरे हाथ में नहीं है. मुझे अपनी स्थिति को परिस्थिति के प्रभाव से न्यारा रखना पड़ेगा. और वो तभी समझ में आएगा, तभी कर पाएंगे, जब पहले फंडामेंटल ये रियलाइजेशन बैठ जाएगी कि ये है परिस्थिति, ये है मेरी स्थिति. ये परिस्थिति अलग, मेरी स्थिति मैं क्रिएट करता हूँ. परिस्थिति स्थिति नहीं क्रिएट करती. Sthiti, I am the creator. Even this one thought, if I keep telling myself every time,
1: I am creative.
0: Day in and day out, every morning, every evening, tell myself, every thought, I am the creator. I am the creator. I am the creator. And I have a choice. Har sankalp meri rachna hai, to mere paas choice hai. Kaise sankalp create karne hai? Kyunki jo sankalp main create karunga, uske baad?
1: Feeling.
0: Bilkul. Feeling. हमने पहले भी देखा था, बट आई थिंक इट्स गुड टू ऑलवेज गो ओवर इट ऑल ओवर अगेन, कि जैसे ही हम एक संकल्प क्रिएट करेंगे, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद द थॉट. लेकिन जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि ऑटोमैटिक, जो आपने कहा ऑटोमैटिक हो जाता है, दैट इज अ फीलिंग. कि संकल्प क्रिएट हुआ और मुझे उसका फीलिंग या उसका अनुभव होना शुरू हो जाता है. और जो फीलिंग्स मेरी आपके प्रति, परिस्थिति के प्रति या पूरी दुनिया के प्रति, जो फीलिंग्स मैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्रिएट करती आई हूँ, दैट डेवलप्स माय एटीट्यूड. सो एटीट्यूड या कहें वृत्ति जो मेरी है कि दुनिया ऐसी ही है, ये तो ऐसे ही है, ये एटीट्यूड कैसे बना? क्योंकि कई बार मैंने वो थॉट क्रिएट किया, बार बार मुझे वो फीलिंग आई आपसे मिलने के बाद या आपके कोई व्यवहार से, तो मेरा एटीट्यूड क्रिएट हुआ, ये तो ऐसे ही है, मुझे पसंद नहीं है. तो थॉट, फीलिंग और एटीट्यूड. और ये जो एटीट्यूड मेरा क्रिएट हो गया, उसके बाद आई कम इनटू एक्शन. अब हम सिर्फ एक्शन वाली स्टेज को देखते हैं कि मैंने ऐसा बोला या मैंने ऐसा व्यवहार किया. हम ये थ्री स्टेजेस को, जो इनर प्रोसेस है, ये स्किप कर जाते हैं कि ये एक्शन बना कैसे. इट वॉज बेस्ड ऑन थॉट, फीलिंग एंड एटीट्यूड. और फिर जो एक्शन हम बार बार रिपीट करते हैं, एक पर्टिकुलर बात करने का तरीका, यू नो, जैसे कई लोगों को आदत है ऊंची आवाज में जोर से बोल दिया या जोर से किसी को ऐसे डांट दिया. उनको अगर कभी आप कहो के द सेम थिंग कुड हैव बीन सेड इन अ प्रोबेबली अ डिफरेंट वे, दे विल से ओह इट्स माय नेचर, बिकॉज दे डोंट इवन रियलाइज नाउ वेदर दिस इज यूजफुल फॉर मी और इट इज डैमेजिंग फॉर मी. इट्स माय नेचर, एंड नेचर मतलब मैं ऐसा हूँ. अब मुझे चेंज होने के लिए नहीं कहना. तो ये नेचर कैसे बनी? बचपन से थोड़ी ऐसे थे, लेकिन कई बार गुस्से से बोला, फिर गुस्से से बोला, फिर ऊंची आवाज में बोला, थोड़े दिन के बाद वो मेरी हैबिट. तो जो एक्शन हम बार बार रिपीट करते वो मेरी हैबिट. नाउ ऑल योर हैबिट्स पुट टुगेदर इज योर
1: पर्सनालिटी. आई रिमेम्बर दैट.
0: यस ऑफ कोर्स. दिस इज अ डीप प्रोसेस व्हिच शुड ऑलवेज बी देयर ऑन द स्क्रीन ऑफ द माइंड. कि ये जो मेरी ओवरऑल पर्सनालिटी है दिस इज बिगिनिंग विद माई थॉट. मेरा पूरा जो आज व्यक्तित्व है वो मेरी सोच से स्टार्ट होता है. और ये व्यक्तित्व ये पर्सनालिटी संबंधों में आता, कर्म क्षेत्र पर आता, व्यवहार में आता, संबंध संपर्क में आता. एट एवरी स्टेप आई एम क्रिएटिंग माई डेस्टिनी. वाई माई डेस्टिनी? बिकॉज जो मेरा व्यक्तित्व होगा वैसे मेरा कर्म होगा, वैसे मेरा आपसे बात करने का तरीका होगा. और जैसा कर्म मैं करूँगी उसी का रिजल्ट मुझे मिलेगा. नाउ वी नो दिस, आई मीन वी डोंट नीड टू लर्न इट फॉर द न्यू टाइम. बचपन से मुझे सिखाया गया कि जैसा कर्म हम करेंगे उसका रिजल्ट हमें मिलेगा. और हमारा कर्म किस आधार पर बेस्ड है? सोच पर. हमें किसी ने ये तो बता दिया कि जैसा कर्म आप करोगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन ये नहीं किसी ने बताया कि आपका कर्म आपके सोच से स्टार्ट होता है. और फिर किसी ने यही नहीं सिखाया कि राइट तरीका सोचने का क्या है. And I was talking to someone and they said, why didn't they teach us how to think? How to think. And then we were just discussing and we said, as a child, we are taught how to talk, how to drink, how to eat, how to walk, not taught how to think. No one taught us. So, wo apne aap hi develop hota gaya. And for aaj, jab hum usko seekhne ki koshish karte hain, to hume lagta hai, oh, ye to bahut mushkil hai, ye to over a period of time. सेट हो गया. बट इट्स नॉट ट्रू. आज भी हम स्टार्ट करें तो इट विल चेंज.
1: हमारा एक थॉट कि हम थिंकिंग को शुरू करें हमारी
0: डेस्टिनी, ये भी हमारी डेस्टिनी को चेंज कर देगा.
1: बिल्कुल. और जिस तरह से हमने आज सिचुएशन को देखते हुए किया कि बिंदी लगाने वाली बात थी कि फुल स्टॉप. थैंक यू सो मच. ओम शांति.
0: ओम शांति.
1: वंडरफुल. सो लेट्स ट्राई टू एक्सपीरियंस इन द रियल सेंस व्हाट इज मेंट बाय पॉजिटिव थिंकिंग. पॉजिटिव थिंकिंग सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं जैसा कि कह रही है शिवानी, लेकिन इम्प्लीमेंट और अनुभव नहीं कर रहे थे. लेट्स ट्राई टू डू दैट. अगर कोई समस्या आती है, कोई सवाल है आपके पास, आपके जीवन में कोई सिचुएशन है जिसका हल आप तलाश रहे हैं, साथ मिलकर भी कर सकते हैं. आपका स्वागत करते हैं. आप हमें फ़ोन पर संपर्क करें या फिर ईमेल भी कर सकते हैं. हमारे फ़ोन नंबर है 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555, 0999-744-555. हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही, लेकिन अभी हमें वो एम्पावरमेंट का सोर्स से जुड़ने का तरीका एक बार फिर जानना है. हमें देखना है कि जो भी सिचुएशन है उसमें जैसे हम हैंडल करेंगे उसके लिए हमें ताकत कहाँ से चाहिए. और इसके लिए आपके साथ हम अगली कड़ी में ज़रूर होंगे. फिलहाल आपसे विदा ले रहे हैं. ओम शांति.

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता सिंह का नमस्कार। प्रार्थनाएं नदियों के पवित्र जल की तरह होती हैं। वो जहां बहती हैं अपने आसपास को शुद्ध और पवित्र कर जाती हैं। एक ऐसा ही जीवन जो प्रार्थना की तरह जन्मा, एक जीवन जो प्रार्थना की तरह गूंजा, एक जीवन जो प्रार्थना की तरह संपन्न हुआ, वो जीवन था मदर टेरेसा का। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त सन 1910 को वर्तमान मैसिडोनिया के स्कोपजे शहर में हुआ। माता पिता के धार्मिक संस्कार उनमें इतने गहरे पड़े कि जब वो बचपन में गिरजाघर जाती तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता जैसे कोई अज्ञात शक्ति उन्हें किसी महान कार्य के लिए बुला रही है। 18 साल की उम्र में उन्होंने सिस्टर्स ऑफ लॉरेटो डबलिन में शामिल होने का फैसला कर लिया। उसके बाद उन्होंने आयरलैंड में अंग्रेजी भाषा सीखी और 6 जनवरी 1929 को कोलकाता में लॉरेटो कॉन्वेंट पहुंची। लेकिन गरीबी, बीमारी और लाचारी देखकर उनका मन हमेशा अशांत होता रहता था, इसलिए उन्होंने आजीवन दीन दुखियों की सेवा का मन बना लिया। इसके लिए पटना से उन्होंने आवश्यक नर्सिंग की ट्रेनिंग ली और 1948 में वापस कोलकाता आकर स्थान के अभाव में एक झोपड़ी से ही सेवा कार्य आरंभ किया। धीरे धीरे उनके सेवा का क्षेत्र व्यापक होता गया और साथ ही कुछ विरोध भी, लेकिन उनके सामने आते ही उनके विराट व्यक्तित्व के सामने विरोधी नतमस्तक हो जाता। एक बार काली मंदिर के पुजारी बहुत बीमार हुए, लेकिन वो मदर टेरेसा के पास जाने में बहुत झिझक रहे थे, क्योंकि उन्होंने धर्मशाला के कमरे से उनके सेवा कार्य चलाने का बहुत विरोध किया था। जब मदर टेरेसा को मालूम हुआ तो वो स्वयं उनके पास गईं, उनकी सेवा की और वो स्वस्थ हो गए। मदर टेरेसा का प्रेम देखकर पुजारी ने कहा, मैंने आजीवन मां काली की सेवा की, लेकिन उनके साक्षात दर्शन मैंने आज किए हैं।

एक स्वप्न कि अकाल मुक्त हो विश्व, न कोई प्यासा रहे न भूखा सोए। एक स्वप्न कि स्वच्छंद मेघों और स्वतंत्र विचारों से भरा हुआ विश्व हो, जहां मानवता मुक्त पंछियों की तरह उड़ान भरे। यही स्वप्न आंखों में लिए मदर टेरेसा ने 1950 में कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। आरंभ में शिक्षा के कार्य के साथ साथ उन्होंने रोगियों की सेवा का कार्य अपने हाथ में लिया, जिनमें कुछ कुष्ठ रोगी भी सम्मिलित थे। धीरे धीरे ये कार्य इतना विस्तृत हुआ कि उनकी मृत्यु के समय तक 123 देशों में 610 मिशनरियां काम कर रही थीं, जिनमें एचआईवी एड्स, कुष्ठ और तपेदिक के रोगियों की सेवा होती। कहते हैं, प्रार्थना करने वाले हाथों से कहीं अधिक पवित्र होते हैं सेवा करने वाले हाथ, और उनके हाथ तो सेवा भी करते और प्रार्थना भी। एक बार एक इंटरव्यू करने वाले ने उनसे पूछा, मां, जब आप प्रार्थना करती हैं तो ईश्वर से क्या कहती हैं? मदर ने जवाब दिया, मैं कुछ नहीं कहती, सिर्फ सुनती हूं। उस व्यक्ति को ज्यादा कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा, तो फिर जब आप सुनती हैं तो ईश्वर आपसे क्या कहता है? मदर ने कहा, वो भी कुछ नहीं कहता, सिर्फ सुनता है। कुछ देर मौन छा गया। इंटरव्यू करने वाले को समझ में नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या कहे। थोड़ी देर बाद इस मौन को तोड़ते हुए मदर ने खुद कहा, क्या आप समझे जो मैं कहना चाह रही थी? मुझे माफ कीजिएगा, मेरे पास आपको समझाने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। सच ही तो है, ईश्वर की भाषा अनंत मौन की भाषा है। उस महामौन से अपने मौन संवाद की भला वो क्या व्याख्या करती? संभवतः वो मौन उनके अंतर मन का स्वरहीन संगीत रहा हो, जिसमें वो प्रेम, दया और करुणा के विशुद्ध स्वर पिरोती रहीं।

मौन का फल है प्रार्थना, प्रार्थना का फल है विश्वास, विश्वास का फल है प्रेम, प्रेम का फल है सेवा, और सेवा का फल है शांति। इस प्रार्थना को जीती मदर टेरेसा का विश्वास था कि मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। इसीलिए पीड़ित मानवता के प्रति करुणा से ओतप्रोत मदर टेरेसा ने सारी दुनिया के दुखियों को अपने ममतामयी आंचल की छाव में समेट लिया। मदर टेरेसा की निस्वार्थ सेवाओं से प्रभावित होकर उन्हें 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। सन 1962 में उन्हें फिलीपींस का मैग्सेसे पुरस्कार मिला। 1962 में ही भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया और 1980 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया। 5 सितंबर 1997 को उन्होंने कोलकाता में ही अंतिम सांस ली। अपना पूरा जीवन मानव सेवा को समर्पित करने वाली मदर टेरेसा को पोप जॉन पॉल द्वितीय ने 19 अक्टूबर 2003 को रोम में धन्य घोषित किया। 15 मार्च 2016 को पोप फ्रांसिस ने मदर टेरेसा को संत की उपाधि देने की घोषणा की और 4 सितंबर 2016 को वेटिकन सिटी में उन्हें विश्व के गरिमामय लोगों की उपस्थिति में संत की उपाधि से विभूषित किया गया। मदर टेरेसा कहती थीं, जहां जाइए प्यार फैलाइए, जो भी आपके पास आए वो खुश होकर लौटे। उनका कथन था, दया और प्रेम भरे शब्द छोटे हो सकते हैं लेकिन वास्तव में उनकी गूंज अनंत होती है। ऐसे अनमोल वचन किसी संत के ही हो सकते हैं। वो अपनी प्रार्थना में कहती हैं, हे मेरे प्रभु, हमें इस योग्य बनाना ताकि हम दुनिया के लोगों की सेवा कर सकें। जो गरीबी और भूख से लड़ रहे हैं उन्हें दो कौर खिला सकें, उनमें प्रेम और खुशियां बांट सकें। हे मेरे प्रभु, हमें इतना संबल देना कि जहां कहीं गलती या नफरत की बात हो उन्हें क्षमा कर उनके लिए प्यार जुटा सकें। जहां कुछ द्वंद हो वहां एक कर सकें सबको। दूसरों के दर्द को, पराई पीर को जानने समझने वाली और उस दर्द से उन्हें मुक्ति देने वाली संत मदर टेरेसा को हमारा शत शत नमन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया श्री राजेश प्रसाद मिश्र ने, समन्वय किया संजय यादव ने और इसे प्रस्तुत किया सुनीता सिंह ने।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, जेट से किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर हम आपके साथ हैं। हर रोज यूं बातें करते करते जिंदगी के उन मुद्दों को उठाते जो कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि इनके बिना तो हम जी ही नहीं पाएंगे, यही हमारी जिंदगी की सच्चाई है। उन्हें जब हमने खंगाला, हमने जाना तो एक नई जिंदगी सामने आ रही है, बहुत अच्छा लगता है। आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करते हैं जिसे हम शायद परेशान तो होते हैं लेकिन ये मान लेते हैं कि उसके बिना जिंदगी चल ही नहीं सकती, और वो जिंदगी जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो है एक ऐसा मुद्दा जिसे हम और आप सब वाकिफ हैं, वरी, चिंता करना। चिंता क्या जायज़ है? चिंता चिता समान कहा गया है, लेकिन हम चिंता क्यों करते हैं और क्या उसके बिना हम काम नहीं कर सकते? ऐसी कई बातें हैं, एक बार फिर उसी सिस्टमेटिक तरीके से जो ज्ञान हमें मिला हुआ है उसी ज्ञान को इसमें तिरोहित करते हुए आज चिंता से शुरू से जुड़ी जो बातें हैं वो शुरू करते हैं। और हर बार की तरह हमारे साथ इस पूरे सफर में ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: आज बात हम चिंता से शुरू करते हैं कि चिंता, जैसे कहा भी गया है, चिता समान है, लेकिन फिर भी आज चलिए मैं आपसे पहले ये पूछती हूँ, क्या है चिंता? व्हाट इज मेंट बाय वरी?
1: वरी बहुत सिंपल है, क्योंकि ये हम सब ने एक्सपीरियंस की है। एक छोटा बच्चा भी सारा दिन वरी चिंता का एक्सपीरियंस करता है। यहाँ पे एक मेंटल एनर्जी का जैसे हमारे पास स्टॉक है, सवेरे जब हम उठते हैं वी फील वेरी चार्ज्ड, वेरी लाइट, क्योंकि रेस्ट के बाद पूरा चार्ज हो चुका है। लेकिन थ्रू आउट द डे इस मेंटल एनर्जी को किस तरह से यूज करना है ये मेरे हाथ में है। और मेंटल एनर्जी यूज कैसे हो रही है? एक एक थॉट से। अब जब हम किसी बात की चिंता को पकड़ लेते हैं तो हमारे कितनी थॉट्स क्रिएट होती हैं, और वो बात हो या ना हो हम बहुत सारी एनर्जी यूज कर देते हैं, मिस यूज करते हैं एक्चुअली, बिकॉज इट्स गोइंग ऑन द नेगेटिव साइड, एंड एट द एंड ऑफ द डे वी फील वेरी हैवी, डिप्लीटेड विदाउट रियली डूइंग एनीथिंग।
0: कोई क्रिएटिव तो हुआ नहीं, कुछ कर तो
1: नहीं, क्योंकि क्रिएटिव होगा भी नहीं, क्योंकि जब हम चिंता करते हैं तो ये हमारी कॉन्शियसनेस की क्रिएटिविटी को तो पूरी तरह से खत्म कर देता है। क्योंकि जब हम उस डायरेक्शन में सोचना शुरू कर देते हैं तो कुछ अच्छा सोचना, कुछ नया सोचना, वो तो इट्स मोर और लेस इम्पॉसिबल, बिकॉज द माइंड इज जस्ट गोइंग ऑन वेरी फास्ट इन दैट डायरेक्शन। तो इट इज द ग्रेटेस्ट मिस यूज ऑफ आर मेंटल एनर्जी, एंड आई नीड टू नो दैट फॉर माई सेल्फ कि दिस इज अ मिस यूज ऑफ अ पावर विच आई हैव। क्योंकि हर एक के पास पावर है, अगर हर एक को रियलाइजेशन हो जाए तो उसको वो सही ढंग से यूज कर सकता है। एंग्जाइटी है जो हम क्रिएट कर देते हैं बेस्ड ऑन अ फिक्शनल थिंग व्हिच हैज नॉट हैपेंड,
0: व्हिच हैज नॉट इवन हैपेंड, क्या होगा क्या नहीं। अच्छा, यहाँ एक बहुत डिफरेंट सी बात यह है कि हम जब गुस्से की बात करते हैं, हम जब हर्ट की बात करते हैं, जब हम बाकी एंग्जाइटी की बात करते हैं, स्ट्रेस की बात करते हैं, हम इसे हर कोई ये समझता है कि वो गलत है। कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स हैं जिन पे हमें काम करना चाहिए, और अगर कोई इस पे बात करता है तो जैसे कि हाँ ठीक है, हम सुनते हैं, सोचते हैं। वरी को हम सोचते हैं कि यही तो कंसर्न है, यू नो, मैं वरी नहीं करूँगा, मैं उसके बारे में, आई एम वरीड अबाउट माई चाइल्ड, यू नो, कि व्हाट विल हैपन टू हिम। मतलब बच्चे को लेके तो वरी मदर्स के साथ का जो एसोसिएशन है, आई एम वरिड वो खाना नहीं खाती, आई एम वरिड कि वो पढ़ाई नहीं करता, आई एम वरिड उसकी शादी होगी या नहीं होगी, कब होगी, कैसे होगी, और ये मेरी ताकत बन जाती है।
1: क्योंकि उसको हमें लगता है कि वो सही है, हमें लगता है कि वरी करना अच्छी बात है। ये हमारा बहुत डीप रूटेड बिलीफ सिस्टम है कि वरी इज कंसर्न एंड इट इज गुड टू वरी, एंड इफ यू डोंट वरी that means you don't care, you know, and that's a very deep thing. So and then what happens is we keep on telling each other, main kitna worried tha aapke liye, trying to tell them,
0: aapne mujhe phone wapas kyun nahi kiya,
1: I was worried. What I'm trying to tell the person is I care for you, but kahin hame ye check karna padega ki caring aur worry या कंसर्न और वरी इसमें क्या फर्क होगा। वरी में, चिंता में नॉर्मली क्या होता है कि कुछ ना कुछ पास्ट की बातें,
0: हाँ, जो बिलीफ,
1: पास्ट की कोई ना कोई एक्सपीरियंस, पास्ट का कोई हादसा, पास्ट की कोई बात, हम उसको ले लेते हैं क्योंकि वो सारा कुछ तो स्टोर्ड है यहाँ पे। अभी प्रेजेंट में सब ठीक है, लेकिन हम वो पास्ट की बात को लेकर फ्यूचर में प्रोजेक्ट करना शुरू कर देते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा हो गया तो, यू नो, ये नॉर्मली चिंता वो होती है जो एक्चुअली कभी होती नहीं है वो चीज, वो बात कभी नहीं होगी।
0: जीना शुरू कर देते हो आप उन सारी चीजों,
1: बट वो एक्चुअली कभी भी नहीं होते हैं, वो मटेरियलाइज नहीं होते हैं। उनको हम यहाँ मटेरियलाइज कर लेते हैं, कोई ना कोई हर्ट जो हमने अंदर पकड़ी हुई है उसको हम उठाकर और फिर से उसको निकाल के रिवाइव करके कहानियां बड़ी बड़ी उसके साथ लेकर अंदर बनाते रहते हैं, एंड वी कीप ऑन क्रिएटिंग दैट सेम पेन अगेन एंड अगेन एंड अगेन।
0: व्हाट आई वांट टू आस्क यू इज कि जिस दिन हम जब हमें समझें कि वरी है और वो होती नहीं है, मटेरियलाइज नहीं हुई, तो हाउ टू यू नो एक्चुअली
1: सेपरेट इट आउट। सबसे पहली बात तो उस बिलीफ को चेक करना पड़ेगा कि इट्स गुड टू वरी, चिंता करना अच्छी बात है। जब एक बच्चा लेट पहुंचता है घर, द फर्स्ट थिंग द पेरेंट विल से इज आपने फोन क्यों नहीं किया, या आपने बताया क्यों नहीं, आपको पता नहीं मुझे आपकी चिंता होती है। बच्चा सामने से कहेगा आप क्यों इतनी चिंता करते हो, और अगर बच्चे ने मुड़कर ये कह दिया कि आप क्यों इतनी चिंता करते हो, द पेरेंट फील्स थ्रेटन्ड कि यू डोंट नो दैट आई केयर फॉर यू, मतलब मैं क्यों चिंता नहीं करूं, आई केयर फॉर यू। तो बच्चे ने क्या सीखा,
0: caring means worrying,
1: caring means worrying and it is good to worry. मतलब मेरे पेरेंट्स तो इस टाइम सही चीज कर रहे थे ना। सी हर एक बच्चा हर एक बिलीफ सिस्टम पेरेंट्स से लर्न कर रहा है या टीचर्स से लर्न कर रहा है। तो जब पेरेंट्स ने उसके सामने कहा डोंट यू नो आई केयर फॉर यू, सो ऑब्वियसली आई हैड टू वरी, तो मतलब केयरिंग इज इक्वल टू वरी एंड वरी इज गुड, आई हैव टू रिमेम्बर दैट। मोस्टली जो वरी है वो उस व्यक्ति के बारे में कम और अपने बारे में ज्यादा होता है। इट इज वेरी सेल्फिश मोटिवेटेड एक्चुअली, क्योंकि इट्स मोर अबाउट मैं कैसा फील करूंगी अगर आपके साथ कुछ गलत हो गया तो, और वो गलत का सीन क्रिएट कर करके मैं वो ऑलरेडी फील करना अभी शुरू कर देती हूँ। जैसे चिंता चिता के समाने कहते हैं, क्यों, क्योंकि चिंता में हम चिता तक चले जाते हैं।
0: Yes, you know, हमारा imagine.
1: तो वो हुआ तो नहीं ना एक्चुअली। अगर आप लेट हो, घर नहीं पहुंचे हो, मैं चिता तक जा सकती हूँ ना।
0: बिल्कुल, आप जाते ही वहीं पे हो,
1: जाते ही वहां पे
0: कुछ हुआ है। yes. कुछ हुआ,
1: क्यों जा रहे हैं, क्योंकि मोर द फियर इज कि हाउ विल आई फील इफ समथिंग बैड हैपेंस टू यू, माई फीलिंग एंड आई ऑलरेडी स्टार्ट फीलिंग दैट, अगर ऐसा हुआ तो, ऐसा हुआ तो, अगर एक्सीडेंट हो गया, ज्यादा कुछ लग गया तो क्या, और अगर,
0: और मैंने कई लोगों से मेरी बात हुई है तो वो यही कहते हैं कि मैं numb हो जाता हूँ, worry makes
1: me numb,
0: हाँ बिल्कुल,
1: mind बिल्कुल paralyzed हो जाता है,
0: कुछ और करने लायक नहीं रहता, मतलब वो इतना घेर लेती है, it means it is I think one of the most,
1: क्योंकि stress जो है वो एक chronic stage पे जैसे develop होता, उसकी beginning क्या है,
0: चिंता।
1: अगर चिंता की एक, क्योंकि चिंता एक हैबिट सी बन जाती है, और स्पेशली क्योंकि हमने अपने आप को बताया कि दिस इज गुड, तो वो हम उसको बहुत नेचुरल तरह से करते ही रहते हैं, उसको करते रहते हैं, और जब वो एक नेगेटिव डायरेक्शन में माइंड को जाने की आदत पड़ जाती है तब वो माइंड बिल्कुल कमजोर हो जाता है। और अब ये कमजोर मन पर अगर कोई प्रेशर पड़ जाए, यू नो, जैसे कि मेरी नौकरी चली जाए, किसी की तबीयत खराब हो जाए घर में, कोई भी ऐसे सिचुएशन जिसके लिए हम सोचते थे सिचुएशन की वजह से स्ट्रेस है, या इवन मैं ट्रैफिक जाम में अटक गई और टाइम पे नहीं पहुंच रही, ये एक प्रेशर है जो बाहर से आता है, लेकिन मन अगर शक्तिशाली होगा तो वो उस प्रेशर को क्रॉस कर लेगा। लेकिन चिंता कर कर करके मेरा मन इतना कमजोर हो गया है कि थोड़ा सा भी प्रेशर कोप करने की।
0: सचिवानी, आपने बात की ट्रैफिक जाम की, तो आज ही सुबह लाइव मेरा प्रोग्राम था, 20 मिनट रह गए और इतनी बड़ी गाड़ी जो थी वो सामने थी, नहीं हिल रही थी। अगेन वो जो हमारी जो टेंडेंसी बन चुकी है कि क्या होगा, यू नो, मैं गाड़ी से ऊपर उठ चुकी थी कि अब क्या होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, सडनली आई रिमेंबर्ड कि इट विल नॉट हेल्प, इट वॉन्ट हेल्प, इट्स ओके, आई जस्ट सेट बैक।
1: क्योंकि इम्पोर्टेंट इज कि आप एक प्रोग्राम के लिए जा रहे हो, मोर इम्पोर्टेंट इज कि आपके प्रोग्राम में आप कैसे फील करो, आप वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन सब तक पहुंचाने वाले हो। गाड़ी तो हिल जाएगी लेकिन इन द प्रोसेस मेरा पूरा,
0: मैं पूरा पूरा
1: ब्रेन आउट हो जाऊंगी, तो पहुंच तो जाएंगे टाइम पर लेकिन हालत क्या होगी। नाउ इफ यू थिंक ऑफ इट, वर्स्ट केस क्या है,
0: नहीं पहुंच पाओगे,
1: वर्स्ट केस है कि नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन ये सोचना कि चिंता करने से पहुंच पाएंगे
0: नहीं हो सकता, ये
1: वी हैव टू रियलाइज द फ्यूटिलिटी ऑफ व्हाट वी आर डूइंग। अगर मेरे चिंता करने से वो गाड़ी हिल सकती है, या मैं ट्रैफिक के ऊपर जंप करके आगे जा सकती हूँ, फिर चिंता करें। पर चिंता करने से क्या, चिंता करने से सिर्फ मेरी मन की स्थिति डिस्टर्ब और पूरा फिनिश हो जाते हैं अंदर से। ट्रैफिक तो चल ही जाएगा थोड़े टाइम के बाद, लेकिन अंदर जाम हो जाता है, बाहर वाला ठीक हो जाता है।
0: लेकिन बात ये आ जाती है कि आदत इतनी गहरी है, हमने इस पे काम नहीं किया, हमने एंगर पे काम कर लिया, स्ट्रेस पे काम कर लिया, इसको हम इतना सहज इतना नेचुरल लेते हैं कि अच्छा इतनी देर तक चिंता हुई कोई बात नहीं। बट आई वॉन्ट टू आस्क यू व्हाट एक्चुअली टू डू, जो हम ये इतना चिंता इतना ज्यादा हम अपने साथ कर लेते हैं।
1: नॉर्मली चिंता में हम क्या करते हैं, हम एक फ्यूचर क्रिएट कर लेते हैं, एक इमेजिन फ्यूचर। जैसे आपने कहा कि मैं टाइम पर नहीं पहुंच रही थी, तो तुरंत एक सीन आ जाएगा सामने, अगर मैं नहीं पहुंची तो यू नो, एंड देन मैं बहुत सारी उसकी सीरीज ऑफ थॉट्स, मेरा प्रोग्राम ये हो जाएगा, डायरेक्टर क्या बोलेगा, व्यूअर्स क्या बोलेंगे, मतलब अ होल थिंग, एंड एक्चुअली उनमें से कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उस समय वो फ्यूचर क्रिएट करके, तो हमें एक इमेजिन फ्यूचर, एक कल्पना, तो एक काल्पनिक भविष्य बना देते हैं, उस एक चित्र निर्माण कर लेते हैं और इस चित्र को देख देख कर डरते रहते हैं। ऐसा हुआ तो, ऐसा हुआ तो,
0: और उसके आगे भी बियॉन्ड चले जाते हैं, बहुत ज्यादा
1: फ्यूचर ना, अगेन फ्यूचर, इट्स नॉट नाउ, इट्स नॉट रियलिटी। हम बैठे हैं कार में तो क्या होता है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग के इस ट्रैफिक जैम का क्या करना है, हम ज्यादा ये सोच रहे हैं
0: कि वहां क्या हो जाएगा,
1: वहां क्या हो जाएगा। तो वरी में सबसे खतरनाक बात जो हो जाती है, चिंता मुझे वर्तमान से डिस्कनेक्ट कर देती है और मुझे भविष्य में ले जाती है। तो जहां मेरी अभी जरूरत है, सपोज किसी की तबीयत ठीक नहीं है, मेरी अभी जरूरत है वहां पे प्रेजेंट, मैं थोड़ा सा आगे चले जाती हूँ, नहीं ठीक हुआ तो क्या होगा, कैसे होगा, नहीं हुआ डॉक्टर के, मतलब व्हाटएवर, अ लॉन्ग सीरीज, तो मैं या तो यहाँ हो सकती हूँ अभी,
0: और यहाँ में होके 100% तो दूं, एक्चुअली हम नहीं दे पाते 100%,
1: नहीं दे पाते क्योंकि माइंड यहाँ नहीं है। वरी इज द मोस्ट इजिएस्ट वे ऑफ अवॉइडिंग द प्रेजेंट, बिकॉज द प्रेजेंट इज वेरी चैलेंजिंग।
0: Okay, so it's like moving away from the present.
1: Disconnecting from reality. बहुत लोग हैं जो एक, ये एक personality disorder होता है, जो आप reality से disconnect हो जाते हैं और आप एक काल्पनिक दुनिया में रहना शुरू कर देते हैं। जैसे अभी ये present क्षण है, आप नहीं पहुंचे हो time पे, लेकिन हम सोचेंगे ऐसा हुआ तो, अगर इनको कुछ हो गया तो मेरी जीवन आगे कैसी होगी, आगे क्या होगा, तो हम अभी के क्षण से हटकर भविष्य के क्षण में हट गए। Everything is in the now, you know, living in the present moment. अभी के moment में चाहिए शांति, अभी के moment में चाहिए प्यार, लेकिन मैं अभी के moment से disconnect करके अगर आगे चली गई तो वहां तो कुछ है ही नहीं, वो तो वैसे भी खाली।
0: अभी के moment में stability भी कहीं ना कहीं चाहिए,
1: stability है, stability से experience होगा, लेकिन मैं create नहीं कर पा रही stability क्योंकि मुझे situation challenging लग रही है। Need है कि मैं ट्रैफिक जाम में अटकी हुई हूँ, तो आई हैव टू क्रिएट स्टेबिलिटी, इट्स ओके, लेकिन मैं स्टेबिलिटी नहीं क्रिएट कर पाती, तो अब क्या करूँ,
0: भाग जाते हो, इट्स एक्चुअली शर्किंग अवे, यस,
1: मूविंग अवे फ्रॉम द प्रेजेंट, अगेन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट जाना कि मैं अभी के क्षण में स्टेबल कैसे रहूं, नहीं कर सकती, तो मैं आगे का सोचने लग जाती हूँ।
0: अच्छा, अनदर थिंग इसके साथ चिंता से जुड़ी हुई एक और जो बहुत स्ट्रॉन्ग रॉन्ग बिलीफ है, इवन माय डॉटर यूज्ड टू हैव इट, इज अगर मैं चिंता नहीं करूंगी तो मैं पढ़ूंगी नहीं, अगर मैं चिंता नहीं करूंगी तो मेरे मार्क्स नहीं आएंगे, आई हैव टू स्टार्ट थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग। सो अगेन दिस इज समथिंग,
1: हम रियलाइज नहीं कर रहे कि पढ़ना है, लेट्स से तो पढ़ने के लिए कितनी पावर चाहिए, यहाँ क्रिएटिव पावर कितनी चाहिए, चिंता करने से हम वो पावर को सारा मिस यूज कर रहे हैं। क्या हम अटेंशन रखें कि मुझे पढ़ना है तो हम पढ़ नहीं,
0: नहीं, हम तो इमेजिनेशन में चले जाते हैं,
1: अगर मैं नहीं पास हुई तो, अगर मेरे इतने मार्क्स नहीं आए तो, यू सी हम पढ़ रहे हैं, आवश्यकता है कि फुल उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, अगर मेरे इतने परसेंटेज नहीं आए तो मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा, अगर मुझे एडमिशन नहीं मिला तो आगे क्या होगा, मेरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, आई एम ऑलरेडी देयर,
0: और फिर आगे क्या होगा, फिर मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे लोग, फिर मेरे आगे परसेंटेज कम हो जाएगी, फिर मेरी पोजीशन नहीं
1: रहेगी, क्या हो जाता है, ये करने की वजह से हम पढ़ नहीं रहे अभी,
0: बिल्कुल टाइम वेस्ट हो गया आपका,
1: और हम पढ़ नहीं रहे तो जो हम सोच रहे हैं वो एक्चुअली हो जाता है। तो हम अपना फ्यूचर जो कल्पना से अपने आप क्रिएट करते हैं अभी, उसी को फिर हम रियलिटी भी बना देते हैं,
0: और फिर हम कहते हैं कि देखा जो मैंने सोचा था वही हुआ।
1: और वो तो सच है कि जो हम सोचेंगे वो ही होगा, क्योंकि थॉट क्रिएट्स माय डेस्टिनी। तो अगर हम उस तरह की थॉट्स क्रिएट करते जाएंगे, पढ़ना बंद कर देंगे, पढ़ाई में पूरी कंसंट्रेशन ही नहीं होगी, पढ़ रहे हैं फिर भी नहीं पढ़ रहे,
0: पढ़ ही नहीं पा रहे ना,
1: पढ़ नहीं पा रहे। तो ये कितना रॉन्ग बिलीफ है, और ये पेरेंट्स भी बच्चों के साथ करते हैं कि तुम्हें टेंशन होनी चाहिए पढ़ाई की,
0: तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं है, यू आर नॉट टेंस। अच्छा, इन अनदर अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ व्हिच पीपल हैव स्पेशली विद मदर्स, लोग ये कहते हैं कि उसके माँ को तो चिंता ही नहीं है, शी इज नॉट बॉदर्ड कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं।
1: कंसर्न एंड केयर एंड वरी, इसमें थोड़ा सा अंतर है। कंसर्न केयर ये लव है, पॉजिटिव है, वरी ये फियर है। तो दोनों में फर्क है, एंड लव एंड फियर
0: कैन नॉट गो टुगेदर।
1: हम समझते थे कि प्यार है तो डर लगता है मुझे कि इनको कुछ ना हो जाए, बट लव एंड फियर, क्योंकि लव इज पॉजिटिव फीलिंग एंड फियर इज नेगेटिव इमोशन।
0: एंड आई थिंक समवेयर यहाँ एक और बात जुड़ जाती है कि जब फियर है तो वो अपने से जुड़ा हुआ है, देन वी आर सेल्फिश
1: एंड लव इज टू गिव। लेकिन जब मैं अपने बारे में सोचना बंद करूँ तब तो आपके बारे में सोचो। मेरी ज्यादा फीलिंग जो ये है कि अगर आपका कुछ हो जाए तो मेरा क्या होगा, तो मैं वो फीलिंग या मैं कैसा फील करूंगी अगर आपका कुछ हो जाए। इट्स नॉट ऑल्सो कि मेरा क्या होगा, बट मुझे बुरा लगेगा या मैं उदास हो जाऊंगी, तो वो भी तो मेरी फीलिंग है। तो वो मेरी फीलिंग क्या होगी अगर आपको कुछ हो जाए, तो मैं अपने बारे में इतना सोच रही हूँ कि मेरे लिए आपके बारे में सोचना तो पॉसिबल नहीं है। और अगर मुझे अपने लिए कोई डर नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर मेरी मन की स्थिति आप पर नहीं डिपेंडेंट है, मेरे अपने हाथ में, तो मुझे कोई ये बात का डर नहीं है कि अगर आपको कुछ हो जाए तो मुझे कैसा फील होगा, बिकॉज आई नो कि माई स्टेट ऑफ माइंड इज इन माई कंट्रोल। तो अपनी इनसिक्योरिटी खत्म हो गई, अब अपना समेटा काम तब तो आपकी तरफ ध्यान दिया, अब अगर आप दर्द में, आई कैन गिव यू लव, आई कैन गिव यू केयर, बिकॉज केयरिंग इज पॉजिटिव एनर्जी एंड वरी इज नेगेटिव। तो एक्चुअली दोनों को मिक्स करना तो बहुत दूर की बात है, दोनों बिल्कुल positive
0: है. And wonderful, you know, where we say that you, जब कहा जाता है कि वो worry नहीं करती, वो selfish है, it's the other way round, you know.
1: हाँ, concern होना चाहिए ना, absolutely, care होना चाहिए, लेकिन दर्द नहीं, क्योंकि दर्द से फिर आप दर्द दूसरे को दे भी रहे हैं ना, क्योंकि आप जो negative energy create कर रहे हैं, वो दूसरे तक reach हो रही है। तो जब भी इस तरह से चिंता के thoughts चलें, तो एक होता है हम उसको check नहीं करते, तो वो एक चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं। Next time ऐसी कोई बात होती है और आपको किसी बात की चिंता होती है, मेक अ जेन्युइन एफर्ट, स्टॉप एंड टेल योरसेल्फ, ये जो मैं सोच रही हूँ ये कभी नहीं होने वाला है, दिस स्टोरी इज नेवर गोइंग टू हैपन बिकॉज इट्स अ स्टोरी आई क्रिएट, दिस स्टोरी इज नेवर गोइंग टू हैपन। अगर हमें इतना याद आ जाए ना उस टाइम पे कि रुक कर अपने, लेट्स से कि आज मैं आपसे मिलती हूँ और आप थोड़ा सा ठीक से मेरे से नहीं बात करते, हमेशा तो ठीक से बात करते हैं, अब मेरा शुरू हो जाता है, आज ठीक से नहीं बात किया, ये नाराज हैं, या अब ये मेरी तरफ नहीं ध्यान दे रहे, अब इनका काम पूरा हो गया तो ये अब मेरे से बात भी नहीं कर रहे हैं, या मैंने ऐसा क्या कह दिया जिनसे इनको बुरा लग गया, नथिंग ऑफ दिस इज ट्रू, मे बी यू वर जस्ट बिजी समवेयर, या आपका माइंड किसी और चीज में ऑक्यूपाइड था, लेकिन मैंने पूरी कहानी बनाई।
0: यस, और हम उसमें जीते, ओ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में इट हैपेंस,
1: पूरी पूरी कहानी बनती है, पूरा ड्रामा का स्क्रिप्ट हम लिख देते हैं बैठ के, शायद पता नहीं इनकी दोस्ती किसी और के साथ होगी, अब ये मुझे इग्नोर कर रहे हैं, या ये कितने इनसेंसिटिव हो गए, अपने बारे में ही सोच रहे हैं, मेरे बारे में सोच ही नहीं रहे। आई कैन जस्ट गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड फॉर आवर्स, फॉर डेज, एंड नाउ इफ आई कैन जस्ट टेल माई सेल्फ, यू नो, मीन दिस होल थिंग इज गोइंग ऑन, स्टॉप, दिस इज नॉट ट्रू, ये सच नहीं है, ये तुम अपने आप क्रिएट कर रहे हो, वो इटसेल्फ द माइंड विल से ओके वेक अप, इट्स लाइक वेक अप, दिस इज नॉट ट्रू।
0: और वो इमेजिनेशन, कई बार कल्पना जो है वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वही हम सच मान लेते हैं, एंड डेफिनेटली वो फिर सच हो जाता है,
1: क्योंकि फिर हम वो एनर्जी भेजना शुरू कर देते हैं ना। अब मैं अगर सोचना शुरू कर दूं कि आप बहुत इनसेंसिटिव हो, आप मेरे बारे में सोचते ही नहीं, या आजकल आप ठीक से बात नहीं करते, तो तुरंत मेरा व्यवहार आपकी तरफ वो चेंज हो जाएगा। अब जैसे ही मेरा व्यवहार चेंज हो गया, मेरी एनर्जी आपसे की तरफ जाने वाली चेंज हो गई, तो आप चेंज हो ही जाओगे, और फिर मैं बोलूंगी मैंने करेक्ट ही सोचा था, सच में ये चेंज हो गया। What we didn't understand is I created the thought, I changed, transmitted that thought, and now what I'm getting is a result of that. Now this is why most of the people get confused ki main to hu achhi lekin mere sath मतलब एक तो है कि मैं हूँ अच्छे एक्सपेक्टिंग कि आप भी मेरे साथ अच्छा करो, थोड़ा दूसरे को टाइम लग सकता है इन गिविंग द सेम एनर्जी, बट मैंने क्यों अपनी विशेषता को छोड़ दिया, क्यों, अब मैं थी अच्छी, मतलब आई वॉज गिविंग पॉजिटिव एनर्जी, नाउ आई एम गिविंग पेन, बिकॉज द मिनट आई से लेकिन आप अच्छे नहीं हो, मैं तो हूँ अच्छी लेकिन आप अच्छे नहीं हो, मीन्स व्हाट, means I don't like you. I don't like the way you are now. I'm giving you negative energy. And now I'm giving you negative energy expecting that you will give me
0: positive energy, which can never happen.
1: Which can never happen.
0: Negative will actually bring negativity, which we are all.
1: पहले, हाँ, तो सबसे पहले जब ये चल रहा होगा ना, और ये आज के दिन ही try कर लेना, कि कोई ऐसे cycle चल रहा है, stop. And just, it's like, wake up. ये नहीं होने वाला, you know, कई बार कुछ लोग अपनी चिंता को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, बोलते जाएंगे अगर हुआ तो, अगर तो कोई सामने वाला सुनने वाला बोलता, मतलब एक मिनट ऐसा कुछ हुआ नहीं है लेकिन, and then बोलते हाँ okay, maybe it's not going to happen, so I need to wake myself up, shake myself up कि ये एक कल्पना है, I am imagining it. Second stage is कि अगर suppose situations आपको सिग्नल कर रही हैं कि नहीं जिस बारे में आप सोच रहे हो वो एक्चुअली होने वाला है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू लूज माय जॉब, मेरी नौकरी जाने वाली है, तो मुझे चिंता कि मेरी नौकरी जाने वाली है, सिचुएशंस मुझे दिखा रही हैं कि मेरी नौकरी जाने वाली है, अब दो ऑप्शन है, जाने वाली है, जाने वाली है, क्या होगा, कैसे होगा, उससे कोई क्रिएटिव एनर्जी तो होगी नहीं, अगर आप 100% कन्विंस्ड है, नॉट इमेजिनेशन, नॉट क्रिएटिंग अ पिक्चर लाइक दैट, लेकिन वो संपूर्ण सत्य है आपके लिए, जस्ट गो नाउ वन स्टेप आगे कि अगर चली जाती है तो व्हाट एम आई गोइंग टू डू नेक्स्ट, स्टार्ट द कंस्ट्रक्टिव वर्क इंस्टेड ऑफ अगर गई तो क्या, अगर गई तो क्या, यहाँ पे सिर्फ एक थॉट क्रिएट करे, अगर चली जाती है तो व्हाट नेक्स्ट एम आई गोइंग टू डू, एंड वो सीन को देखते हुए उस सीन में अपने आप को देखें कि आप बहुत स्टेबिलिटी से उस सीन के साथ चल रहे हैं. And this can be even to the extent कि अगर मेरे परिवार का कोई सदस्य जाने वाला है, क्योंकि actually truth ये है कि irrespective of whatever happens, life is still going on. Even if I come to know कि मेरे family का बहुत close member is going to go, so what?
0: Start imagining your life.
1: You know, look at your life, because if you already know about it, look at your life and prepare yourself. This is a fact. This is going to happen.
0: बीमारी, especially ये जो बीमारी जहाँ पे वो व्यक्ति जाने वाला है, उसके साथ जो व्यक्ति होता है, वो तो I think वो वैसे ही चला जाता है, क्योंकि वो continuous चिंता में ये रहता है कि ये चले गए तो क्या हो, क्या होगा फिर?
1: मैं कैसा फील करूँगा? तो अगर मैं अपनी फीलिंग को पहले से ही प्रिपेयर कर दूँ कि ये एक रियालिटी है जो मेरे साथ होने वाली है, एंड लुक एट मायसेल्फ कि मुझे फिर भी अपनी लाइफ को, and actually see yourself doing that because it's not difficult.
0: Yes, so again, you know, hamari jo tendency hai future dekhne ki ya scenario create karne ki,
1: to usko ek positive wala scenario create
0: that. Oh, wonderful, law of attraction again comes here.
1: Kyunki jo scenario aap create karenge wo aapke liye satya ho jayega, hota jayega. Teesri baat, jahan care aur worry ki confusion aa rahi ho, to sakshi hokar ek bar us scene ko dekhen aur dekhen ki ye jo main abhi kar raha hu, ask yourself only, not anybody else, is this worry or care? I know the answer.
0: Yeah,
1: I will get the answer.
0: Uncomfortableness hai jahan, wahan worry hai.
1: Pain hai, fear hai, wo worry hai. Aur jahan koi dar nahi hai, sirf dena hai, wahan care hai. To aapko immediately pata chal jayega ki most of the time care nahi hota hai, most of the time worry hota hai. Ab ye hai ki agar aap bimar hain ya aapke saath koi problem aa gayi hai, important hai aapko is time positive energy chahiye. But I send you negative, dar, I create fear for you. So what happens, you are in pain, I give you more pain, and we call that care. I care for you, so I'm giving you negative energy. If I care for you, I have to give you powerful, empowering love, and usme fear nahi hoga. To kabhi bhi is tarah se chal raha ho, nahi ye to care hai, ye to concern hai, stop and check, and immediately you will know.
0: Definitely.
1: Immediately aapko pata chal jayega.
0: Shivani, ye jo puri baatcheet humne worry ko leke ki, jisko hum actually ignore hi karte rehte hain, because wo chalta hi rehta hai, worry to zindagi ka ek hissa ban jati hai, wo kahin na kahin जो इमेजिनेशन की बात की है उसे अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि ह्यूमन माइंड
1: जब भी, हाँ, जब भी इस तरह से पिक्चर सामने आए, स्टॉप करके पिक्चर को
0: बदल दो,
1: चेंज कर दो.
0: and then again with that law of attraction will work and you will get the positive picture in your life.
1: It's very easy to get rid of worry. It's very easy. Just stop and pause. And it'll get done.
0: In fact, अगर हम देखें तो हर चीज से निकलना actually इतना मुश्किल है नहीं, just one mindset.
1: क्यों worry से निकलना क्यों easy है? क्योंकि ये initial stage है बीमारी के, इसलिए बहुत easy है. जैसे सिर्फ 99-100 तक ही बुखार पहुंचा हो तो उसको normal पे लाना कितना easy है, थोड़ी देर में हो जाएगा. लेकिन जब वो 105 तक चला जाता है फिर उसको तो वो stress, depression, you know, anxiety, this is way ahead. अगर हम उसको worry की stage पे फिनिश कर देंगे तो आगे कोई बीमारी नहीं.
0: हाँ, अभी वो थॉट से ना सर्कमस्टांसेस की तरफ कन्वर्ट नहीं हुए होते हैं तभी अगर हम बदलते हैं. तो सुशिवानी, इस पूरी बातचीत के लिए, जिस तरह से आज आपने वरी के उस एस्पेक्ट को दिखाया कि हम एक इमेजिन करते हैं और वही इमेजिनेशन को हम सच मानने लग जाते हैं, तो वो पॉज लेने की जरूरत है और फिर आगे बढ़ने की. आपका बहुत बहुत शुक्रिया.
1: ओम शांति.
0: ओम शांति. अभी तक ये मानते आ रहे थे हम कि वरी या चिंता जो है वो चिता समान है, क्योंकि चिंता के दौरान हम चिता तक पहुंच सकते हैं. तो फिर आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने हाथ में, हर बार की तरह जिस सशक्तिकरण की बात करते हैं वो अपने हाथ में लें और तय करें कि हम क्या चाहते हैं. अगर हम इमेजिन भी करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा माइंड है, ह्यूमन माइंड इतना फर्टाइल है, ज़रूर इमेजिन करता है, लेट्स ऑलवेज चेक कि हम पॉजिटिविटी को ही इमेजिन करें. और एक और बात जो आज बहुत अच्छी हमें पता चली है कि चिंता से मुक्ति बहुत आसान है. पहला स्टेप है, बहुत आसानी से किया जा सकता है, सिर्फ एक माइंडसेट अवे है. अगर आपके पास कोई बात है, कोई सवाल है जो आप हमसे जानना चाहते हैं, हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, हर बार की तरह आप हमें फ़ोन कर सकते हैं या फिर ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं. हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9999-3445555, 9999-3446, 9873-6655, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. आपको बता दें कि ये जो पूरा हमारा कार्यक्रम है, जो पूरी श्रृंखला है, इसमें आपके ढेरों कॉल्स हमारे पास आते हैं, बहुत से ईमेल्स आते हैं. पर्टिकुलर ईमेल्स को हम शायद नहीं इंक्लूड कर पाते, लेकिन आपको बताएं कि पूरा जो प्रोग्राम होता है वो उसी पर बेस होता है. तो फिर अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी, इसमें आज आपसे इजाज़त देते हैं, लेकिन आने वाली कड़ियों में कुछ और ख़ास मुद्दों पर बात करेंगे. दीजिए इजाज़त. ओम शांति.

ख्वाब और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स। क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद में उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, wherever and for however long I want. So then it's my choice. So now it's your choice. आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, create it.
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो।

0: आवाज
1: सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झकास रेडिओ स्टेशन
0: पुणेरी आवाज
1: ऐकत रहा 107.8 FM
0: आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
2: कंप्यूटर से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। अगर देखने का समय नहीं है तो सुनी लीजिए पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
3: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी, वेलकम टू बीइंग डिवाइन।
4: ओम शांति। थैंक यू।
3: आप कुछ कह रही थी उस दिन अबाउट थॉट्स से लेकर डेस्टिनेट तक। मुझे एक डाउट आ रहा था कि भाई थॉट्स जो हैं, थॉट्स हमारी तो जो छोटा बच्चा पैदा होता है वो थॉट्स लेके तो पैदा नहीं होता है, वो संस्कार लेके पैदा होता है पिछले जन्म के। तो थॉट्स फिर मैं क्रिएट करता हूँ कैसे हुआ?
4: सारा दिन सिर्फ चेक करना है कि हर थॉट जो आ रही है, आपको भूख लगी, आपने डिसाइड किया आपको ये खाना है, फिर आपने डिसाइड किया आपको इतने बजे उठना है, इससे बात करनी है, ये बात करनी है, ये काम करना है, दिस एवरीथिंग इज अ थॉट ना। फिर किसी ने कुछ कहा, आपको वो सुन के अच्छा लगा या आपको वो सुन के अच्छा नहीं लगा, इट्स अ थॉट ना। फिर हमने उसकी बात सुनने के बाद ये सोचा इसने ऐसा क्यों कहा, दिस इज अ थॉट ना। तो ये सब कौन क्रिएट करता है?
3: क्या ये पॉसिबल है इस चीज को हम एकदम कंट्रोल में ला सकते? कोई बोला बोला हट के निकल पड़े आगे और वहां उसको, मतलब जैसे छोटे बच्चे के हाथ से खिलौना एक छीन के दूसरा हाथ में दे दो तो
4: दिस इज द लाइन, एक छीन के दूसरा हाथ में देना होगा।
3: हाँ,
4: अगर सिर्फ एक छीनने की कोशिश की तो इट विल नॉट हैपन। एंड जो आपने इसलिए कहा कि इज इट पॉसिबल कि ये थॉट आए और हम कहें कट और हम आगे चले, तो नॉट पॉसिबल। लेकिन उस थॉट की जगह हमें एक और थॉट देनी पड़ेगी, खिलौने की जगह एक और खिलौना देना पड़ेगा।
3: खिलौने की जरूरत है।
4: माइंड कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग। तो अगर आपको वो पर्टिकुलर थॉट लग रही है कि प्लेजेंट नहीं है, अनकंफर्टेबल है, राइट नहीं है, मेरे लिए सही नहीं है, दूसरे के लिए सही नहीं है, ये सही नहीं है, तो हमें मन को समझाकर फिर उस थॉट को चेंज करना पड़ेगा। मन को दबा नहीं सकते कि नहीं ये नहीं सोचो। इट्स लाइक अ चाइल्ड जो आपसे कुछ कहता है, सपोज आपका ग्रैंड चाइल्ड है, वो कहे दादा उसने ऐसा क्यों कहा, तो आप उसको बोलो चुप कर जा, क्यों पूछा?
3: तब इमीडिएटली मैं चेंज कर देता।
4: आप अगर चेंज भी करेंगे ना, वो थोड़ी देर के बाद फिर से पूछेगा।
3: अच्छा,
4: जब तक आप उसको उसकी बात का आंसर नहीं देंगे, द माइंड नीड्स एन आंसर। उसने ऐसा क्यों कहा, गिव इट एन आंसर। लेकिन फिर भी ऐसा गिव इट एन आंसर। इसीलिए तो ज्ञान इतना इम्पोर्टेंट है। जब ज्ञान हमें नहीं था कि ये अलग अलग संस्कार है, अलग अलग नजरिया है, अलग अलग एटीट्यूड है, जब ये ज्ञान नहीं था तो हम बैठे रहते थे लंबा ये सोचकर, लेकिन ऐसा क्यों कहा, लेकिन ऐसा क्यों कहा, लेकिन ऐसा क्यों किया। अभी प्रोसेस पता है ना, दैट्स व्हाई नोइंग दैट इनर प्लांट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस्टरडे वी सॉ थॉट्स, फीलिंग्स, एटीट्यूड, एक्शन, हैबिट, पर्सनालिटी, डेस्टिनी, इनर प्रोसेस। क्या ये किसी भी दो लोगों का सेम हो सकता है? अब थॉट्स का भी इनपुट क्या था, इन्फॉर्मेशन, पास्ट एक्सपीरियंस, बिलीफ सिस्टम। तो किसी भी दो लोगों का ये तीन फैक्टर सेम नहीं होता है।
3: लेकिन बिलीफ सिस्टम तो मेरे हिसाब से चॉइस है।
4: बिलीफ सिस्टम मींस व्हाट इज माय बिलीफ अबाउट सर्टेन थिंग्स इन लाइफ, दिस इज माय बिलीफ। अब आपका बिलीफ और मेरा बिलीफ डिफरेंट होगा।
3: एक आदमी बोलता है गुस्से से काम होता है।
4: हाँ?
3: एक आदमी बोलता है प्यार से होता है।
4: एक कहता है कि गुस्से से होता है, एक कहता है कि प्यार से हो सकता है। दोनों का रॉ मटेरियल दैट इज बिलीफ सिस्टम दोनों का डिफरेंट,
3: टोटली ऑपोजिट है।
4: टोटली ऑपोजिट, ठीक है। अब जब दोनों का रॉ मटेरियल ऑपोजिट है तो दोनों की फैक्ट्री में से बनने वाला प्रोडक्ट सेम कैसे होगा? अब हमें दोनों का बिलीफ सिस्टम तो पता नहीं है, आपको मेरा नहीं पता होगा, मुझे आपका नहीं पता होगा, लेकिन हमें दिखेगा क्या, एक दूसरे का प्रोडक्ट दिखेगा, कि आप क्या बोलते हैं मुझसे, कैसा व्यवहार करते हैं. सो वी सी द अदर पर्सन आफ्टर द प्रोडक्ट कम्स आउट.
3: रॉ मटेरियल से मेरा बिहेवियर पता चलता है, यू मीन टू से.
4: बिलीफ सिस्टम, थॉट, फीलिंग, एटीट्यूड, परसेप्शन, एक्शन, हैबिट, पर्सनैलिटी.
3: अच्छा, तो जैसे मैं बात करता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, करता हूँ, दैट उसकी उसका उसका सीड
4: उसका उधर से है ना, रॉ मटेरियल से स्टार्ट हो रहा है.
3: बिलीफ सिस्टम से.
4: तो जब आपका और मेरा बिलीफ सिस्टम डिफरेंट, तो आपकी मेरी थॉट्स डिफरेंट, एटीट्यूड्स डिफरेंट, पर्सपेक्टिव्स डिफरेंट, कर्म एक्शन डिफरेंट, हैबिट्स डिफरेंट, पर्सनैलिटी डिफरेंट. अब इस तरह से हर एक डिफरेंट. अब जब हर एक डिफरेंट, तो जब हमने दूसरे को देखा, हमने कहा ऐसा क्यों करते हैं. So we could go on and on for days, for years. ऐसा क्यों करते, ऐसा क्यों करते, ऐसा क्यों करते.
3: उसने मुझे आज से 25 साल पहले ऐसा क्यों बोला.
4: Now, अब इसको भी लेते हैं. हमने देखा thoughts के तीन factors है, information, past experience, belief system.
3: Information, past experience,
4: belief system, right? तो अब आपने, उसने मुझे 25 साल पहले ऐसा क्यों बोला, क्योंकि 25 साल पहले उसको आंसर नहीं किया था माइंड को, तो वो पास्ट एक्सपीरियंस में स्टोर हो गया. तो तीन तीन रॉ मटेरियल जा रहे हैं ना थॉट्स क्रिएट करने के लिए. तो वो पास्ट एक्सपीरियंस में स्टोर हो गया क्योंकि उसको आंसर नहीं किया था, डिलीट नहीं किया था. अब ये 25 साल में कई बार ये थॉट आ जाएंगे कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा. 25 साल में जब भी वो वाला व्यक्ति फिर मिलेगा या कहीं भी उसको कोई रेफरेंस कोई उससे करेगा, कोई उसके बारे में बात करेगा, कहीं आप उसके बारे में पढ़ लेंगे, वो पास्ट एक्सपीरियंस में से थॉट जरूर क्रिएट होगी फिर से. पास्ट एक्सपीरियंस, थॉट, एटीट्यूड, एक्शन, कर्म, डेस्टिनी, कितना इंपॉर्टेंट है. इट्स नॉट जस्ट स्टेइंग एट पास्ट एक्सपीरियंस, इट इज कमिंग आउट एट डेस्टिनी. बिकॉज वो पास्ट एक्सपीरियंस रिजॉल्व नहीं किया, जब भी याद आई एक पेन यहां क्रिएट हुआ. मतलब चोट पे चोट पे चोट, हम कमजोर होते गए, डेस्टिनी अफेक्ट हो गई.
3: तो इसको कैसे हटाएं ये 25 साल वाली बात.
4: आज ही आंसर दे देते हैं ना. उस व्यक्ति का इन्फॉर्मेशन सिस्टम अलग,
3: बिलीफ सिस्टम अलग,
4: उसके अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस अलग, उसका रॉ मटेरियल बिल्कुल अलग, उसका फाइनल प्रोडक्ट मेरा फाइनल प्रोडक्ट सेम नहीं हो सकता. हमें लगता है लोग हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, लोग हमारे से ऐसे बात कर रहे हैं, लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं. लोग एक्चुअली हमारे साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, लोग अपना फाइनल प्रोडक्ट बाहर फेंक रहे हैं सारा दिन.
3: Whether you speak or not,
4: through my vibration, through my words, through my behavior, it's coming out. Whatever is getting manufactured here is coming out. अब मेरे सामने आप आ जाओ या कोई भी और आ जाए, माई प्रोडक्ट दैट इज कमिंग आउट इज नॉट चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द पर्सन, इट इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू व्हाट आई एम मैन्युफैक्चरिंग हियर. तो हम जो रेडिएट कर रहे हैं, हम जो बिहेव कर रहे हैं, वो दूसरे के अनुसार या दूसरे के हिसाब से नहीं, वो अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से रेडिएट कर रहे हैं. इसलिए जब हमारा बिलीफ सिस्टम चेंज होता है, लोग नहीं बदलते, हम बदल जाते हैं. दुनिया नहीं बदलती, लेकिन हम बदल गए होते हैं. तो बाकी सब लोग तो सेम हैं, देन व्हाई हैव वी चेंज्ड, बिकॉज वी चेंज समथिंग हियर. अब अगर आपने कहा कि कोई नायलॉन बना रहा है, कोई कॉटन बना रहा है, कोई वुल बना रहा है, अब सपोज चार लोग हैं, अलग अलग अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है. हमें लगता है मुझे देखकर मेरे सामने इसने नायलॉन क्यों बनाया, मेरे को देख कर नहीं बनाया, वो उसकी फैक्ट्री का वो ही प्रोडक्ट है और वो बहुत सालों से या शायद बहुत जन्मों से वो ही प्रोडक्ट बना रहे हैं. अब हमें पसंद आए या ना पसंद आए, हमें अच्छा लगे या नहीं लगे, आपका प्रोडक्ट वो ही है. विच मीन्स अगर आपका बिलीव सिस्टम है कि गुस्से से काम होता है, तो आपके फाइनल प्रोडक्ट में दिन में कई बार गुस्सा आने ही वाला है. इट डजेंट मैटर कि सिचुएशन क्या है, लोग क्या कर रहे हैं. अब जिस दिन आपने अपना रॉ मटेरियल बदल दिया, ठीक है, उस दिन लोग जो आसपास हैं वो तो सेम ही रहेंगे, उनकी गलतियां भी सेम ही रहेंगी, दुनिया में जो हो रहा है वो भी सेम ही रहेगा, लेकिन आपका प्रोडक्ट चेंज हो गया. सो योर प्रोडक्ट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द पीपल, योर प्रोडक्ट इज डिपेंडेंट ऑन योर बिलीफ सिस्टम. एंड दैट्स व्हाई वी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अ बिलीफ सिस्टम व्हिच इज नॉट हेल्दी फॉर अस.
3: तो ये लोगों को मालूम कैसे पड़े कि मेरा ये बिलीफ सिस्टम हेल्दी है नहीं है? सबको लगता था आई दिस माय बिलीफ.
4: एनीथिंग व्हिच इज नॉट मेकिंग मी फील नाइस एंड मेकिंग अदर्स फील नाइस नीड्स टू बी चेंज्ड, क्योंकि वो अच्छा नहीं है, सही नहीं, उसका रिजल्ट सही नहीं आ रहा. अब आपने कहा कैसे पता चले कि ये फैक्ट्री का प्रोडक्ट ठीक है या नहीं ठीक है? अगर वो फैक्ट्री का प्रोडक्ट लोगों को कंफर्ट और हेल्थ दे रहा है तो वो प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन अगर वो फैक्ट्री का प्रोडक्ट लोगों की सेहत को खराब कर रहा है तो फिर तो मालिक को सोचना चाहिए ना कि इज इट राइट कि मैं ये बिजनेस करता हूँ.
3: कई लोगों को मैं बोलते सुनता हूँ कि अच्छाई का जमाना नहीं है, मैं अच्छा रहता हूँ, मेरा बिलीफ सिस्टम है अच्छा रहने के लिए, और उसका हमेशा नतीजा ही रॉन्ग निकलता है.
4: तो फिर वो अपने अच्छे बिलीफ सिस्टम को भी कई बार क्या कर देते हैं, चेंज करते हैं. क्यों? क्योंकि उनको आसपास की फैक्ट्रीज में सेम प्रोडक्ट निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा.
3: तो इसका मतलब ये है कि आप अपने बिलीफ सिस्टम में टेके रहिए.
4: yes.
3: दूसरे के उसमें नहीं जा सकते.
4: सपोज आप दवा बना रहे हैं आपकी फैक्ट्री में जो सबको सेहत देती है, आप टॉनिक बना रहे हैं जो सबको सेहत देती है, मैं सपोज सिगरेट अल्कोहल बना रही हूँ जो सबकी सेहत खराब करती है, वो मेरी फैक्ट्री का प्रोडक्ट है. तो अब आप अपने को मेरी फैक्ट्री का प्रोडक्ट देख के अपने प्रोडक्ट को चेंज कर लेंगे.
3: ब्यूटिफुल, वेरी नाइस.
4: नहीं, आई एम मेकिंग थिंग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ, यू कंटिन्यू मेकिंग थिंग्स विच आर गुड फॉर हेल्थ ना. नाउ यू माइट
3: इसने ऐसा क्यों किया,
4: बिकॉज उनकी फैक्ट्री में वो ही बनता है ना. हर एक सिर्फ अपनी फैक्ट्री का ही ध्यान रख सकता है ना. अब अगर आपके आसपास सिर्फ मैं नहीं लेकिन सारे आपके आसपास गलत चीज बना रहे हैं, तो भी तो हमें अपनी अच्छी वाली चीज को पकड़ के रखना चाहिए. आज क्यों समाज ऐसे होता गया, हर एक ने दूसरे का प्रोडक्ट देखा और कहा इनका ये इनका ये इनका ये, फिर मैं क्यों ये बनाऊं, मैं भी यही बनाना शुरू कर देता हूं. एंड दैट्स व्हाई वी अडॉप्टेड ईच अदर्स बिलीफ सिस्टम्स व्हिच वर नॉट हेल्दी फॉर अस. फिर हमारे बिलीफ सिस्टम हमारे आगे फैमिली को गए, बच्चों को गए. जिनके घर में पेरेंट्स सपोज बहुत गुस्सा करते हैं तो उनके बच्चे भी वही सीखेंगे. वो बच्चा अगर सॉफ्ट भी होगा, पीसफुल भी होगा, तो पेरेंट को ही अच्छा नहीं लगेगा. वो उसको सिखाएगा ऐसे नहीं होता, दिस इज नॉट द वे द वर्ल्ड वर्क्स, दिस इज नाउ नॉट हाउ यू कैन बी. तो एक का बिलीफ सिस्टम कितनों तक पहुंचेगा.
3: इसीलिए कहते हैं ना कि आपकी परंपरा से, पेरेंट से, ग्रैंडफादर से एक चीज जो चलते आ रही, कि कब आप उसको कट करो.
4: चेक एंड कैंसिल एनीथिंग व्हिच इज नॉट हेल्दी फॉर अस. Healthy for us means the way we feel, the way the body feels, the way our relationships feel. Feeling hai har cheez ke andar. Agar wahan achha nahi feel ho raha, yahan achha nahi feel ho raha, yahan achha nahi feel ho raha, aur rishton mein achha nahi feel ho raha, some belief system needs to be changed. Jaise aapne us din kaha life is a competition, it's a belief system. Ab ye ek belief system ne aaj humme se majority ki destiny badal di hai. क्योंकि हमारा जीवन जीने का तरीका बदल गया एक लाइन से, लाइफ इज अ कॉम्पिटिशन. फिर हम आगे अपने बच्चों को भी सिखाते हैं लाइफ इज अ कॉम्पिटिशन, तुम्हें फर्स्ट ही आना है. तुम फर्स्ट आए तभी तुम सक्सेसफुल हो, तुम फर्स्ट आए तभी तुम अच्छे हो, तुम फर्स्ट आए. लाइफ इज अ कॉम्पिटिशन.
3: आई मेट अ मैन, उसका बिलीफ सिस्टम था कि दुनिया झूठ बोलती है. तो वो मैं कुछ भी बात करूं तो वो 10% राइट लेता था 90. I was feeling so uncomfortable. I said, am I here to prove him something?
4: Yeah.
3: नहीं ऐसे कैसे नहीं. I was so tired of it.
4: तो क्योंकि ये उनका बिलीफ सिस्टम है, किस आधार से बना, could be some past experience.
3: बड़ों ने बोला होगा देखो भाई 10% मानो.
4: पास्ट एक्सपीरियंस भी होता है कई बार, पास्ट एक्सपीरियंस भी होता है. अब वो बिलीफ सिस्टम उस व्यक्ति की डेस्टिनी पे आज असर डाल रहा है. क्यों? एक, वो व्यक्ति सारा दिन डाउट में जिएगा, कोई भी उससे बात करेगा कुछ भी कहेगा उसको डाउट ही रहेगा हमेशा, ये सच बोल रहा है, ये बात पूरी राइट है, इसने मुझे पूरा बताया, ये एक एक थॉट यहाँ भी दर्द क्रिएट करेगी क्योंकि डाउट है, वो एक एक डाउट की थॉट शरीर पे भी असर देगी। अब जैसे आपने कहा मुझे उससे बात करके कंफर्टेबल नहीं लगा,
3: अनकंफर्टेबल
4: लगा, तो उसका ये बिलीफ सिस्टम उसके रिश्तों पर भी असर डालने वाला है। आप तो फिर भी पहचान के थे वाइफ के साथ क्या होता होगा, बच्चों के साथ क्या होता होगा, तो रिश्तों पे असर डालेगा। तो एक बिलीफ सिस्टम, दैट्स व्हाई एवरी बिलीफ सिस्टम नीड्स टू बी चेक्ड। एवरी बिलीफ सिस्टम इज अफेक्टिंग आवर डेस्टिनी।
3: अजीब अजीब बिलीफ सिस्टम्स है, आपसे बात करते करते याद आ रहा है किसी का बिलीफ सिस्टम है कि लेट आने से रिस्पेक्ट होता है।
4: सी,
3: आप पार्टी में जल्दी क्यों पहुंच रहे हो, यू शुड बी लिटिल लेट, सबसे पहले पहुंच जाओगे। आई मीन एनी वेयर, इवन इन शूटिंग, इन हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कई लोगों का बिलीफ सिस्टम था आई एम अ स्टार आई शुड बी लेट।
4: एक एक बिलीफ सिस्टम
3: नेवर एंडिंग है।
4: Yeah, but that's the journey of life.
3: Yeah, but that makes life so complicated to have so many belief system. Why can't we live simple?
4: That is why we find our life complicated today.
3: तो उसको ठीक कैसे करें?
4: Most important, जो सबसे important belief system है जिसके आधार से बहुत सारे belief system create होते हैं।
3: Who am I?
4: Yes. क्योंकि वो मेन है ना, उसके आधार के हिसाब से बहुत सारे और बिलीफ सिस्टम क्रिएट होंगे। जैसे आपने उस दिन शेयर किया आई एम एन एक्टर, ठीक है, आई एम अ फिल्म स्टार, तो अब वो एक बिलीफ सिस्टम और कितने सारे, उसी से ये बिलीफ सिस्टम भी क्रिएट होगा कि कहीं भी पहुंचना है अगर हम स्टार हैं तो थोड़ा लेट पहुंचना चाहिए। अगर हमें कोई इन्वाइट कर रहा है हम एकदम से कह देंगे हाँ हम फ्री हैं हम आ जाते हैं, तो वैल्यू नहीं है।
3: डायरी देख के बोलता हूँ, डायरी देख के पूछ के बताता हूँ।
4: ये एक एक बिलीफ सिस्टम उस एक बिलीफ सिस्टम से आया।
3: मुझे ये सिखाया जाता था कि फोन आप क्यों उठाते हो, लोग क्या समझेंगे, फोन उठाते आप एक्टर हो, मैंने बोला कमाल है यार।
4: सो द बिलीफ सिस्टम अबाउट हु एम आई वो हमारे भाग्य तक असर डालेगी, और अगर उसमें हमने राइट आंसर डाल दिया तो बहुत सारे ये जो कॉम्प्लिकेशंस आप कह रहे हैं, ये पूरा जो प्रोसेस प्लांट है हमारा वो बहुत सिंपल, स्ट्रीमलाइंड, इजी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हैप्पी एंड हेल्दी बन जाएगा। इस जीवन की यात्रा में इतना कुछ हमने अक्वायर किया है, एंड आप देखें ज्यादातर हम आज देखते हैं कि जितना हम अक्वायर करते जाते हैं उसके साथ हम कहते हैं इनकी अहंकार बहुत बढ़ता जा रहा है।
3: एक्वायर व्हाट?
4: See what all you have acquired in your life? क्या acquire किया है इस जीवन के अंदर?
3: मैंने तो innocence खो दिया।
4: See now this line, मैंने innocence खो दिया, तो खो क्यों दिया? उसकी जगह क्या replace किया? क्या acquire किया जिसकी वजह से innocence खो दिया?
3: नाम किया, पैसा किया, relationships
4: किए, relationships किए और
3: बस
4: पोजिशन अक्वायर किया, प्रॉपर्टी अक्वायर किया, हम बहुत कुछ अक्वायर करते हैं इस जीवन की यात्रा में, लंबी लिस्ट,
3: ढंग किया, मैनिपुलेशन अक्वायर किया।
4: यस, अब ये सारा कुछ जब हमने अक्वायर किया, ये हम यहाँ हैं, एक बच्चे को देखते हैं, छोटा बच्चा पैदा हुआ आपके घर में, एक दो महीने का है, उसने अभी कुछ बहुत ज्यादा अक्वायर नहीं किया है, वो तो अभी अपनी फैमिली को भी बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता है, ही हैज टू येट स्टार्ट डेवलपिंग दैट कनेक्शन, दैट बॉन्डिंग, तो अभी उसने कुछ बहुत ज्यादा अक्वायर नहीं किया है। उस बच्चे ने क्या अक्वायर किया इस जीवन की यात्रा में? अब धीरे धीरे पेरेंट्स, धीरे धीरे एक्सटेंडेड फैमिली, फिर वो स्कूल जाएगा, फ्रेंड्स, फिर वो धीरे धीरे पढ़ता जाएगा, टीचर्स, सोशल सर्कल, फिर डिग्री अक्वायर की। जैसे हमें डिग्री मिलती है हमारा परिचय बदल जाता है, हु एम आई आंसर बदल जाएगा, उससे पहले हु वाज आई वाज समबडीज चाइल्ड, उसके बाद हु एम आई बिकम अ डिग्री, उसके बाद हमें एक डेजिग्नेशन मिलता है, तो अब उसके बाद कोई पूछे परिचय, तो हु एम आई वो मेरी डेजिग्नेशन, मेरा परिचय बन जाती है। अब वो डेजिग्नेशन भी हर एक दो साल तीन साल के बाद चेंज होती रहती है, हमारा परिचय चेंज होता रहता है, उस प्रोसेस में हमें और लोग मिलते जाते हैं, रिश्ते मिलते हैं, नाउ आई एम समवंस हस्बैंड, समवंस वाइफ, देन आई एम समवंस फादर, समवंस मदर, देन आई एम समवंस ग्रैंडफादर, ये बढ़ता जाता है, लंबी लिस्ट है, वी कीप अक्वायरिंग। लेकिन सब कुछ जो अक्वायर किया इट वॉज ब्यूटिफुल, लेकिन जो जो अक्वायर किया उसको अपनी आइडेंटिटी बना लिया।
3: कई लोगों को कहते हुए ये सुना एयरपोर्ट्स पे, ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में, कई जगह, आप जानते हो मैं कौन हूँ।
4: तो जैसे ही उन्होंने कहा आप जानते हो मैं कौन हूँ, विच मीन्स योर बिहेवियर शुड बी अकॉर्डिंग टू दैट व्हाट आई हैव अक्वायर्ड। मैं कौन हूँ, मैं इस पोजीशन पे हूँ। तो ये सारी चीजें जो हमने अक्वायर की, हमने इन चीजों को अपनी आइडेंटिटी बना लिया है। जैसे आपने पिछली बार कहा हू एम आई, अ फिल्म स्टार, तो फिल्म स्टार तो मेरा प्रोफेशन है, लेकिन हमने अपने प्रोफेशन को क्या बना लिया, आई एम सो एंड सो।
3: दुनिया भी तो यही कहती है एक्टर जा रहा है।
4: हाँ, दुनिया भी तो यही कहती है। यस, तो दुनिया भी तो अक्वायर्ड लेबल्स को ही तो अपनी आइडेंटिटी बना के चल रही है ना।
3: हाँ, तो ये नेचुरल नॉर्मल हो गया है ना।
4: नेचुरल नॉर्मल तो बहुत कुछ हो गया है जो सच्चे नहीं है, वो नेचुरल नॉर्मल हो गया, तभी तो डेस्टिनी कॉम्प्लिकेटेड है। ये सारी चीजें, फिर हम कहते ईगो। ईगो की एक बहुत सिंपल डेफिनेशन है, अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ।
3: ब्यूटीफुल।
4: आई कौन, वो मुझे याद नहीं, कोई और इमेज जो मेरी अपने बारे में बनी उसके साथ मैं अटैच हो गई और उसको ही मैं समझ लिया, वो ईगो है। क्योंकि जब भी उस इमेज को फिर कोई टच करेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई उस पर कोई अपना ओपिनियन देगा जो मुझे पसंद नहीं आता, वी विल से उनकी ईगो हर्ट हो गई। क्योंकि वो इमेज जिससे हम अटैच हो गए थे, किसी ने आकर उसको प्रिक किया,
3: इमेज को,
4: इमेज को, मुझे नहीं, इमेज को। आज इस डेफिनेशन को लेते हैं और पूरा दिन इस डेफिनेशन के साथ वर्क करते हैं, अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ। कितनी इमेजेस हमने अपने बारे में बनाई हुई हैं। मैं कौन, आई एम समबडीज हस्बैंड, सो वाइफ कैसी होनी चाहिए। आई एम समवन्स फादर, तो बच्चे कैसे होने चाहिए। सामने वाला कौन, ये बेटा, तो बेटा कैसा होना चाहिए। अगर बेटा वैसा नहीं है, मैं फादर हूं, मेरे से ऐसे बात की, बिकॉज आई एम अटैच टू एन इमेज ऑफ बींग अ फादर। देर इज सो मच डिफरेंस, वी आर नॉट कनेक्टिंग पर्सन टू पर्सन, वी आर कनेक्टिंग इमेज टू इमेज। जब हम बात करते हैं, हम किससे बात कर रहे हैं, हम इमेज दूसरी इमेज से बात कर रहे हैं। सो वी वॉन्ट दैट इमेज टू बी अकॉर्डिंग टू माई इमेज। और जैसे ही वो ऐसा नहीं करेंगे, हम कहेंगे इतना भी नहीं पता कि फादर से कैसे बात करनी चाहिए।
3: बट ये तो नेचुरल है, अगर यहाँ का प्राइम मिनिस्टर जाके दूसरी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर से मिलेगा तो वो वैसे ही मिलेगा जैसे एक प्राइम मिनिस्टर टू अनदर प्राइम मिनिस्टर, नॉट टू हिज प्यून।
4: रिगार्ड, रिगार्ड एंड प्रोटोकॉल फॉर द रोल। ठीक है, चलो सपोज आप प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस जाते हैं आज। आप जाते हैं, ठीक है, सो यू हैव एन अपॉइंटमेंट, आज 10 बजे आपको उनसे मिलना है, राइट। आप अपने घर से निकलते हैं, अपनी गाड़ी में बैठते हैं, द फर्स्ट पर्सन दैट यू मीट इज योर ड्राइवर। ठीक है, आप उससे कैसे बात करते हैं, चेक करना, जस्ट एक सीन क्रिएट करते हैं, विजुअलाइज करते जाइए। ठीक है, फिर वो रास्ते में गाड़ी चला रहा है, कहीं उससे कुछ गलती भी हो गई, आप उससे कैसे बात कर रहे हैं। आधे घंटे की ड्राइव के बाद आप प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में पहुंचते हैं। ठीक है, जैसे ही आप उस बिल्डिंग में एंटर कर रहे हैं, उस बिल्डिंग पर एक सिक्योरिटी गार्ड एंट्रेंस पर गेट पे खड़ा है, वॉचमैन है, वो बहुत प्यार से देखकर स्माइल करके आपको सैल्यूट भी करता है, आप उससे कैसे बात करते हैं। फिर हम आगे जाते हैं, कोई एक रिसेप्शन है या कोई एक ऑफिसर है जो मिलेगा एंट्रेंस पे, हम उससे कैसे बात करते हैं। फिर हम प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी से बाहर बात करते हैं, और फिर हम फाइनली तो प्राइम मिनिस्टर से बात करते हैं। ये सारा कुछ आधे घंटे में हो जाता है, ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, मैनेजर लेवल, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी एंड द प्राइम मिनिस्टर, इन हाफ एन आवर वी मेट 5 पीपल
3: जी.
4: क्या हमारा बात करने का तरीका, हमारी रिस्पेक्ट, हमारा व्यवहार पांच लोगों से सेम होगा?
3: नहीं
4: होगा सेम. क्या होगा हमारे व्यवहार में परिवर्तन?
3: डिफरेंस रहेगा.
4: व्हाट इज द डिफरेंस? सपोज जस्ट लुक एट द टू एंड्स, ड्राइवर से स्टार्टिंग में एंड प्राइम मिनिस्टर इन द एंड.
3: ड्राइवर से तो आप कमांडिंग पोजीशन में बात करेंगे, मुझे यहाँ ले चलो. गलती करेगा तो थोड़ा ठीक भी करेंगे उसको. क्यों भाई क्या हो गया, ठीक से चलाओ. प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में जाना, लेट नहीं जाना. फिर उसके सिक्योरिटी गार्ड में तो डिपेंड्स इन व्हाट मूड यू आर. पता नहीं क्यों इतनी सिक्योरिटी की पता है, क्यों चेक करते हैं बार बार, कितनी बारी आता हूँ मैं. इट डिपेंड्स ऑन.
4: फाइनली जब आप प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में जाते हैं,
3: यू आर अ चेंज पर्सन. हाउ आर यू सर, गुड मॉर्निंग. आप पहले आप बैठिए, फिर हम बैठेंगे.
4: तो पांच लोग, आधे घंटे का समय, और हम पांच बार बदल गए.
3: एज एन एक्टर तो हम ऐसे ही करते हैं. अगर इसका रोल मिला तो ऐसे करूंगा, उसका रोल मिला तो ऐसे करूंगा, उसका रोल मिला तो ऐसे करूंगा.
4: अभी तो आप एक ही रोल में जा रहे थे, आप थोड़ी चेंज हो गए थे रोल में.
3: मैं तो हर अलग अलग रोल से भी तो अलग अलग तरीके से.
4: तो जब आप ड्राइवर से बात कर रहे हैं तो कौन बात कर रहा था उस समय, कौन सा रोल था? मालिक. ठीक है, तो मालिक ड्राइवर से बात कर रहा था. जब सिक्योरिटी गार्ड मिला तब भी ऑलमोस्ट सेम बात ही हो गई कि वो बहुत जूनियर रोल है, मेरा रोल थोड़ा सीनियर है. लेकिन जब तक हम प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में पहुंचे तब हम एक जूनियर रोल एक सीनियर रोल से बात कर रहे थे. पांचों से मिलने के समय रोल रोल से बात कर रहा था.
3: सही बात.
4: इमेज इमेज से बात कर रही थी. तो कहीं हम ऐसे थे, कहीं हम ऐसे थे. स्पिरिचुअलिटी क्या सिखाती है कि रोल रोल से नहीं, इंसान इंसान से बात करे, व्यक्ति व्यक्ति से बात करे. अगर व्यक्ति व्यक्ति से बात करे, अब सिर्फ चेक करें कि उस आधे घंटे में हम पांच लोगों से कैसे बात करेंगे. चेक करना है, विल देयर बी एनी डिफरेंस एट ऑल, कि रोल रोल से बात कर रहा था तो व्यवहार कैसा था. एंड जस्ट द ह्यूमन बीइंग टॉकिंग टू अनदर ह्यूमन बीइंग, will there be any difference in the way we talk and behave? We need to check that today.
3: Let me try.
4: Sure.
3: Om Shanti.
4: Thank you. Om Shanti.
3: Thank you. Om Shanti.
5: When the mind is hurt and is questioning others' behaviors, we cannot forcefully suppress the thoughts or silence the mind. The mind needs answers. Give the mind the answer that it is the other person's sanskar and our past karmic account. The mind will slowly accept and become silent. Belief system, information and past experience are the raw materials which create our thoughts, and the final product is our personality. Since two people have different raw material, their sanskars or personality will be different. This understanding helps us to accept people. We feel people are behaving with us in a particular way. We feel it is something about us which make them behave that way. People are only radiating their final product to us. When we change our belief systems, our behavior changes, even though others remain the same. We acquire position, relations, property and skills in this lifetime, and we sometimes make them our identity and get attached to the identity we create. Ego is attachment to a wrong image of myself.
4: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 0999 559 660.

0: सुनहरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: कायदा कायदा कायदा, हर चीज में कायदा, आखिर इसका फायदा। कायदा तोड़ के सोचो, एक दिन चांद निकलता नीचे से और मैदान पे रखा होता।

0: अच्छा सोचो, सूरज का रंग नीला होता
1: होता
0: और पेड़ों का रंग लाल
1: लाल,
0: पंछी रहते पानी में
1: वाह,
0: और मच्छी गगन विशाल
1: वाह वाह वाह।

0: आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा है। ठीक है, चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस, कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सुन रहे हो रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका हम सफर RJ संजय। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी श्रृंखला श्री कृष्ण की 16 कलाएं के 6 अध्याय में। आज हम जानेंगे वह अद्भुत कला जिसमें श्री कृष्ण का नृत्य प्रेम, आनंद और भक्ति का संगम बन जाता है। उसी का नाम है नृत्य माधुरी। सोचिए जरा, जब कान्हा मुरली की धुन पर नृत्य करते हैं तो केवल कदम ही नहीं छिड़कते, बल्कि वृंदावन की हर गली, हर कुंज, हर हृदय आनंद से झूम उठता है। गोपियों के साथ रासलीला, बाल्यकाल की चंचल क्रीड़ाएं और भक्ति के साथ उनका नृत्य, यही है नृत्य माधुरी का सार। यह कला हमें बताती है कि ईश्वर का नृत्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि भक्ति का उत्सव है। हर लय में छिपा है प्रेम, हर ताल में छिपा है आनंद और गति में छिपा है आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला दिव्य संदेश। तो आइए, आज के इस अध्याय में हम डूब जाए उस माधुरी में जो श्री कृष्ण के नृत्य को अमर बना देती है। तो दोस्तों, इसी गीत के साथ हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। तो सुनते हैं एक सुंदर और प्यारा गीत।

जय श्री कृष्ण दोस्तों, हमें नृत्य माधुरी का परिचय होना बहुत जरूरी है। कृष्ण का नृत्य केवल गति नहीं था, वह आत्मा की अभिव्यक्ति था। जब वे रासलीला में नृत्य करते तो वृंदावन की गोपियां उनके साथ लय से झूम उठती। उनका नृत्य भक्ति का उत्सव था, जिसमें हर जीव ईश्वर के प्रेम में डूब जाता। यही है नृत्य माधुरी, वह कला जिसमें हर कदम भक्ति का संदेश है, हर ताल में प्रेम का अनुभव है और गति आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला दिव्य संगम है। तो दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं हम एक सुंदर और प्यारा दूसरा गीत।

नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। भागवत पुराण में वर्णन आता है कि जब श्री कृष्ण ने रासलीला रची तो यह केवल एक नृत्य नहीं था, यह दिव्य अनुभूति थी। हर गोपी को लगता था कि कृष्ण केवल उनके साथ है। यह अद्भुत लीला हमें बताती है कि ईश्वर हर भक्त के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ते हैं, उनके सुख दुख में सहभागी बनते हैं और उनके आनंद को अपना आनंद बना देते हैं। राधा और श्री कृष्ण का नृत्य इस कला का सर्वोच्च उदाहरण है। यह नृत्य केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा का दिव्य संगम है। जब राधा और श्री कृष्ण एक साथ नृत्य करते हैं तो वह क्षण भक्ति का उत्सव बन जाता है। गोपियों की आंखों में प्रेम, उनके हृदय में भक्ति और उनके कदमों में लय सब मिलकर उस रास लीला को अमर बना देते हैं। इस कथा का अंश से यह संदेश मिलता है कि ईश्वर का नृत्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला सेतु है। हर ताल में छिपा है प्रेम, हर गति में छिपा है आनंद और हर लय में छिपा है भक्ति का अमृत। तो दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं एक सुंदर और प्यारा गीत। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जय श्री कृष्ण दोस्तों, नृत्य माधुरी हमें यह सिखाती है कि जीवन स्वयं एक नृत्य है। जब हम अपने अहंकार और मोह को त्याग देते हैं तो हम ईश्वर की लय में झूमने लगते हैं। कृष्ण का नृत्य हमें यह संदेश देता है कि सच्चा आनंद केवल ईश्वर के साथ एकत्व में है। जैसे रासलीला में हर गोपी को लगता था कि कृष्ण केवल उनके साथ है, वैसे ही जीवन की हर परिस्थिति में ईश्वर हमारे साथ है। उनकी लय हमें यह बताती है कि सुख दुख उतार चढ़ाव सब जीवन के नृत्य का हिस्सा है। जब हम इन सब को भक्ति और प्रेम से स्वीकार करते हैं तो जीवन आनंदमय हो जाता है। नृत्य माधुरी का दर्शन हमें यह प्रेरणा देता है कि जीवन को केवल संघर्ष या मोह का जाल न समझे, बल्कि उसे ईश्वर के साथ नृत्य की तरह देखे। हर कदम में भक्ति, हर ताल में प्रेम, हर गति में आत्मा का परमात्मा से मिलन, यही है नृत्य माधुरी का सार। तो दोस्तों, सुनते हैं एक सुंदर और प्यारा गीत।

जय श्री कृष्ण। दोस्तों, श्रीमद् भागवत में एक श्लोक कहा गया है, रसे रम्य हरि वंदे। इस श्लोक का भावार्थ है कि रास लीला में श्री कृष्ण का नृत्य अद्वितीय और रमणीय है। यह नृत्य केवल कला नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम का उत्सव है। जब श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला में नृत्य करते हैं, तो हर गोपियों को लगता था कि कृष्ण केवल उनके साथ है। यही है ईश्वर का दिव्य संदेश कि वह हर भक्त के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ते हैं और उनके आनंद में सहभागी बनते हैं। नृत्य माधुरी हमें यह सिखाती है कि ईश्वर का नृत्य आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। हर ताल में प्रेम, हर गति में आनंद और हर लय में भक्ति का अमृत छिपा है। यह हमें बताता है कि जीवन स्वयं एक नृत्य है और जब हम अहंकार व मोह को त्याग कर ईश्वर के लय में झूमते हैं, तभी सच्चा आनंद प्राप्त होता है। इस श्लोक का दर्शन हमें यह प्रेरणा देता है कि भक्ति केवल पूजा या अनुष्ठान नहीं बल्कि प्रेम और आनंद का उत्सव है, जहाँ हर जीव ईश्वर के साथ एकत्व का अनुभव करता है। तो दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं एक सुंदर और प्यारा गीत।

तो श्रोताओं, यह थी छठी कला नृत्य माधुरी। यह कला हमें सिखाती है कि जीवन का हर क्षण ईश्वर की लय में नृत्य करने जैसा है। जब हम अपने अहंकार और मोह को त्याग कर भक्ति की धारा में बहते हैं तो जीवन स्वयं आनंद का उत्सव बन जाता है। अब हमारी श्रृंखला का अगला अध्याय होगा वाद्य माधुरी, यानी श्री कृष्ण की वाद्य यंत्रों की मधुरता। वह संगीत जो केवल ध्वनि नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला दिव्य संदेश है। मुरली की तान, मृदंग की लय और वीणा की मधुरता सब मिलकर कृष्ण की वाद्य माधुरी को अमर बना देते हैं। तो श्रोताओं, अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे कृष्ण के वाद्य यंत्र केवल संगीत नहीं बल्कि भक्ति का साधन है जो हर हृदय को प्रेम और आनंद से भर देता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, सुनते रहो, सुनाते रहो रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: क्यों रे शैतान, तूने क्यों बताया मैं गाना जानती हूँ?
3: जरा तारीफ कर रही थी, वरना तुम गाती क्या हो, रोती हो। पिया बिन नाही चैना, रोती हूँ दिन रहना, हाय हाय हाय।
2: मैं ऐसा गाती हूँ?
3: मैं तो ऐसा ही सुनता हूँ।
2: और तुम?
3: मैं

0: किससे सीखा तूने ये?
1: अच्छा है?
0: हाँ बहुत अच्छा है।
1: हेडमास्टर साहब से?
0: तब तो बहुत बुरा है।
2: खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार, अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: धन्यवाद।
1: जी अर्चना जी, कैसे हैं आप?
0: बहुत बहुत बढ़िया।
1: जी, मैं चाहूंगा कि आप अपनी यात्रा के बारे में बताइए कि इस नृत्य के फील्ड में आपका कैसे जुड़ना हुआ, भरतनाट्यम जो हमारा इंडियन क्लासिकल नृत्य है।
0: जी
1: जी
0: जी बहुत छोटी थी, अराउंड आई थिंक इन 1993 मेरी बहन ने मुझे डांस क्लास में एनरोल किया था,
1: अच्छा,
0: गुरु विदुषी अनुराधा शिंदे, जो कला क्षेत्र से ग्रेजुएशन तब करके आई थी, और उनके यहाँ पे मेरा नृत्य का शिक्षण शुरू हुआ। और अराउंड 16 साल मैंने उनके यहाँ उनका मार्गदर्शन लिया नृत्य के इस फील्ड में। और 10th के बाद मैं नालंदा यूनिवर्सिटी गई थी मुंबई, और वैभव आरेकर जी अब के बहुत विख्यात गुरु है, उनका मार्गदर्शन मिला मुझे। फिर वापस पुना के 11th 12th स्टैंडर्ड के बाद पुणे यूनिवर्सिटी में ललित कला केंद्र ऐसा एक डिपार्टमेंट है, जो जिसमें नृत्य संगीत और नाटक के का शिक्षण होता है, ग्रेजुएशन एंड मास्टर। मैंने ग्रेजुएशन गुरु स्वाति दैठनकर उनके अंडर किया, और मेरा मास्टर डांस में ही गुरु परिमल फड़के उनके यहाँ पे उनके मार्गदर्शन में हुआ, और अब तक उनका मार्गदर्शन जारी है, मैं अभी भी उनके पास जाती हूँ।
1: अरे वाह।
0: ये है नृत्य जर्नी।
1: सबसे पहले जैसे कि आप सीखते सीखते आप परफॉर्म भी शुरू किया होगा, परफॉर्मेंस
0: जी
1: भी आपने,
0: जी
1: तो
0: जी
1: सबसे
0: हाँ
1: पहला कुछ जो परफॉर्मेंस आप बचपन में किया था उसके बारे में कुछ स्टोरी हो तो बताइए।
0: जी। पहले आप आज के जमाने में तो YouTube पे वगैरह हर जगह हम कहीं बैठे भी देख सकते हैं डांस कैसे होता है, कैसे
1: बिल्कुल
0: दिखता
1: बिल्कुल।
0: है। तो मुझे कुछ आइडिया नहीं थी कि ये भरतनाट्यम, तो मैं आ गई हूँ बिकॉज मेरा दक्षिण भारतीय संस्कृति की तरफ बहुत मेरा आकर्षण था, तो इसीलिए मुझे भरतनाट्यम डांस क्लास में डाला, क्योंकि वहाँ कथक भी था। बट फिर भी बिकॉज मैं दिखती वैसी हूँ, ऐसे लगा शायद मेरी बहन को, इसलिए उन्होंने भरतनाट्यम में मुझे एनरोल किया। बट पता नहीं था ये कैसे दिखता है, ये कैसे होता होगा, उसका कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी, कुछ भी ज्ञान नहीं था।
1: अच्छा।
0: बट शिंदे मैम जो थी वो हर साल एक कॉन्सर्ट रखती थी, जैसे गैदरिंग सम्मेलन होता है, वार्षिक सम्मेलन। पहले तो हमें थोड़ा सा सेमी क्लासिकल ऐसे कुछ बिठाया जाता था, क्योंकि अब पता चलता है 2 साल के बेसिक ट्रेनिंग के बाद हम एक्चुअली डांस सीखना चालू करते हैं, भरतनाट्यम जो ओरिजिनल फॉर्म में है वो। फिर सीनियर्स को देखा पहली बार तो ऐसे लगा नहीं नहीं ये मुझे पसंद है और मुझे यही करना है, तब अच्छा लगने लगा वो। तो वो आई थिंक 94 में ही, 1 साल के बाद ही मैं स्टेज पे परफॉर्म करना स्टार्ट किया था अंडर
1: अरे
0: हर
1: वाह,
0: ट्रेनिंग।
1: चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया है, और मुझे लगता है कि हमारे जो श्रोता बंधु हैं जो सुन रहे हैं, लिसनर्स हमारे, उनको भी बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि किस तरह
0: जी
1: से जो है एक बचपन से जब हम लोग किसी आर्ट को सीखना शुरू कर देते हैं, एक अलग ही उसकी जो है खुशी, उसका जो रोमानियत है, उसका जो डेप्थ है, वो हम समझ पाते हैं।
0: जी
1: अदरवाइज क्या हो जाता है, कई बार हमें बड़े होने के बाद भी हमको लगता है कि ये मिसिंग है मेरा, तो मुझे करना है, तो तब
0: करना
1: मेरे ख्याल
0: चाहिए
1: से बॉडी हमारा सपोर्ट नहीं करता होगा जितना
0: जी
1: हमें ब्लेंड उसमें आती है, उसमें जो चीजें देखने को मिलती हैं वो सारी चीजें देखने में अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए पूर्व जो तैयारी जो थी वो शायद हमारी कम पड़ जाती है बाद में।
0: जी जी जी बट इसमें माता पिता का रोल बहुत जरूरी है, कि उनको बच्चों को, क्योंकि बच्चे को पता नहीं होता है क्या करना है क्या नहीं करना है,
1: बिल्कुल।
0: ये उनकी जिम्मेदारी है, कि मार्गदर्शन तो गुरु देने ही वाले हैं, बट उस मार्ग पर लेके आना ये माता पिताओं का काम है, वो उन्होंने करना
1: बिल्कुल
0: चाहिए,
1: बिल्कुल, उनको
0: क्योंकि
1: अगर
0: बाद
1: अपने
0: में
1: बच्चे
0: फिर ऐसे हाँ लगता है कि अरे तब करना चाहिए था, तब करना चाहिए था। तो इसके बारे में मैं मेरी बहन को बहुत श्रेय दूंगी कि बिकॉज ऑफ हर मैं इस कला को सीख पाई और यहाँ तक पहुंच पाई।
1: जी। अर्चना जी, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और मैं चाहूंगा कि अगर ब्रेक में कोई गीत संगीत आपको पसंद है तो बताइए हमें, और एक लाइन कोई गीत का आप गुनगुना भी सकते हैं।
0: जो भी कृष्णा का होगा तो
1: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए एक बहुत ही प्यारा सा कृष्णा का गीत आपको सुनाते हैं, और आप सुना हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। जी हाँ, स्पेशल एपिसोड सुन रहे हैं आप।

0: नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम लोग अर्चना मनोज जी से बातें कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर जो है उनकी जर्नी के बारे में हमें पता चला कि बचपन से ही उनकी सिस्टर जो है उन्होंने इनके अंदर वो चीजें देखा और शायद उनको लगा कि ये सब चीजें अभी से ही करना चाहिए, तो उन्होंने उनको एनरोल किया भरतनाट्यम में। और फिर वो धीरे धीरे 2 साल के बाद उनको ये समझ में आ गया कि मुझे इसी फील्ड में कुछ करना है। तो आगे जैसे आपकी समझ बढ़ती गई और आपको प्रेरणा मिलती गई, तो फिर आपने प्रोफेशनली इसको कैसे ब्लेंड किया, उसके बारे में थोड़ा बताइए।
1: जी, जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, हमारे क्लास में एक हमारी सीनियर थी, मुझे बहुत पसंद था उनका डांस। और आरंगित्रम तब मेरे लिए बहुत ही अलग वर्ड और अलग ये था। आरंगित्रम एक्चुअली होता है कि आप डांस का आपका शिक्षण जब कंप्लीट करते हैं तब एक स्टेज परफॉर्मेंस होता है, हम उसको डेब्यू परफॉर्मेंस कह सकते हैं। तो वो देखने के लिए मैं गई थी और उस ऑडिटोरियम में मैंने डिसाइड किया था कि मुझे ये करना है और मुझे ये फुल टाइम करना है। तब तक कोई आइडिया नहीं थी, मैं ऐसे ही सीख रही थी। बट मुझे वो देख के मैं इतना खुश हो गई, और मीन्स परमात्मा आनंद क्या होता है, आई थिंक मैंने तब वो महसूस किया था। और वो देख के मुझे हमेशा लगता है कि अगर मैं उस प्रोग्राम में जाती नहीं तो मेरी जर्नी शायद अलग होती, या उस प्रोग्राम को मैं गई इसीलिए मैं आज यहाँ हूँ। तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि हर एक जिंदगी के पड़ाव पे मुझे हर एक मार्गदर्शन सही तरीके का मिलता गया और मैं बस आगे बढ़ती गई।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी वर्तमान समय में आप किस तरह से अपने प्रोफेशन को कर रहे हैं?
1: जी, मैंने ग्रेजुएशन एंड मास्टर नृत्य में ही किया, भरतनाट्यम स्पेशल सब्जेक्ट था मेरा।
0: जी, जी, जी।
1: और मेरे पति है, उन्होंने उसी कॉलेज से तबला में एमए किया था। तो हम दोनों ने मिलके एक इंस्टीट्यूट स्थापन किया नित्य अर्चना नाम से, जो बालेवाड़ी में है। और 15 साल से ज्यादा हो गए हम वो एकेडमी चला रहे हैं, जिसमें बच्चों को हम शिक्षण दे रहे हैं तबला एंड भरतनाट्यम का। और हर एक टीचर के यहाँ से जो भी मार्गदर्शन मिला उसको अप्लाई कर करके आज यहाँ तक आए हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें जैसे भरतनाट्यम की हम लोग बात करें तो इसमें कुछ अलग अलग फॉर्म्स होते हैं क्या, अलग अलग थीम्स होते हैं क्या, थोड़ा सा बताइए।
1: हाँ, भरतनाट्यम में पहले तो मुझे पता नहीं था, जो मेरी टीचर थी वो कला क्षेत्र से ही आई थी। जब मैं यूनिवर्सिटी में गई तो मुझे अलग अलग घरानों के बारे में पता चला कि ऐसे घराने होते हैं, अलग अलग वाणी होती है, जैसे कथक में तबला में घराने होते हैं, वैसे भरतनाट्यम में वाणी होती है, कि अलग अलग डांस स्टाइल्स होते हैं। भरतनाट्यम ही बट थोड़े करने का तरीका अलग होता है। तो तंजावुर कला क्षेत्र तो मेरा था ही, बट तंजावुर के बारे में पता चला, देन पंडनल्लूर वडवेलूर, ऐसे अलग अलग घरानों के बारे में पता चला। मैं जो फॉलो कर रही हूँ वो कला क्षेत्र घराना है। तो हर एक घराने की अपनी अपनी खासियत है, किसी का म्यूजिक बहुत स्ट्रांग है, किसी का लाइन्स पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, कोई ग्रेस पे ध्यान देता है, कोई स्पीड पे ध्यान देता है। सो ऐसे अलग घरानों की अलग अलग खासियत है।
0: और इसमें कुछ स्टोरीज वगैरह भी नरेट होती हैं या डांस फॉर्म में कुछ बताते हैं, ऐसा कुछ?
1: भरतनाट्यम ये ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर जब नृत्य आया तो वो भरतनाट्यम ही होगा, क्योंकि उस आंसर हमें हमारी शिल्प कलाओं में मिलता है जो मंदिरों में है। सो भरतनाट्यम ओरिजिनेटेड फ्रॉम टेम्पल, तो इसीलिए भगवान की पूजा करने के लिए वो प्रस्तुत किया जाता है। हेलो, हाँ, इसीलिए उनके बारे में उनकी जो स्टोरीज है, उनका कौतुक है, उनकी स्तुति है, ऐसे ही सॉन्ग या पदम लिखे गए हैं तब से अब तक। तो उनके उनके बारे में ही उनकी स्तुति होती है या उनका कौतुम होता है। सो इट्स बेस्ड ऑन इंडियन गॉड ओनली। शिव है, कृष्णा है, विष्णु है, पार्वती है, गणेशा है, राम है, दश अवतार है।
0: तो इसमें करते करते आपको विशेष सम्मान वगैरह भी मिला होगा, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, अवार्ड्स वगैरह जो आपने अचीव किया है।
1: हाँ जी, मैंने बहुत सारे फेस्टिवल्स में परफॉर्म किया है, जैसे शनिवार वाड़ा फेस्टिवल है, पुणे फेस्टिवल है, संगीत कला केंद्र है, और शारदा संगीत विद्यालय जो मुंबई में है। तो कॉलेज के दौरान तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया है, जीती भी हूँ, और ऐसे फेस्टिवल्स में जाके परफॉर्म करने के लिए, जो कुछ जो कोई त्योहार होते हैं, जैसे नवरात्रि फेस्टिवल होता है, तो अलग अलग मंदिरों में परफॉर्मेंस करने का मौका मिलता है।
0: अरे
1: अभी
0: वाह,
1: रिसेंटली नटंजलि फेस्टिवल हुआ, हर साल हर सारे गुरु मिलके शिवरात्रि के दिन शिवा के सामने अपनी कला सादर करते हैं।
0: जी,
1: इससे अच्छा मौका और किसी को क्या मिल सकता है कि भगवान के सामने उनकी स्तुति पर नृत्य प्रस्तुत किया जाए।
0: बिल्कुल
1: ये बहुत खुशनसीबी की बात मानती हूँ।
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल
1: अभी हर एक इंसान को जैसे कला का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ऐसे लगता है। कला हमें जीने की कला सिखाती है।
0: बिल्कुल
1: सो वेरी
0: बिल्कुल।
1: ब्लेस्ड। जी
0: तो हर एक की अपनी स्टाइल होती है, और उसको
1: जी
0: फिर जैसे प्रेजेंटेशन, समझो अभी मंदिर में आपको प्रेजेंटेशन देना है, तो
1: जी
0: उसके
1: जी
0: पहले जो प्रिपरेशन की स्टोरी होती है वो कैसे करते हैं, कितना टाइम
1: डिपेंड्स
0: लगता
1: आप,
0: है?
1: हाँ, कौन से सॉन्ग पे है, उनकी थीम क्या है, और ऑडियंस किस तरह का है। जिनको डांस के
0: अच्छा अच्छा
1: बारे में
0: अच्छा हाँ
1: नॉलेज
0: हाँ
1: है
0: हाँ
1: तो
0: या नहीं
1: बहुत,
0: है?
1: हाँ, तो वैसे रचना हम चूज करते हैं। अगर तमिल ऑडियंस है तो मैं घोर तमिल सॉन्ग्स चूज करूंगी। जैसे हिंदी ऑडियंस है तो मैं ट्राई करूंगी कि उनको थोड़ा सा उनकी लैंग्वेज में, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर ऑफकोर्स होता ही है। ट्राई तो करती हूँ कि हर एक प्रेक्षक को कला का आस्वाद दे सकूं। इट डिपेंड्स अपॉन कलाकार ऑल्सो कि वो किस खासियत से अपने कला को सादर करता है, प्रस्तुत करता है। बट अगर उसके साथ अगर उनके लैंग्वेज की जोड़ मिल गई तो उनको और अच्छे से वो एंजॉय कर पाएंगे डांस को। अभी टाइम भी बहुत कम देते हैं, 10 मिनट, 5 मिनट, तो उसमें हमें हमारा 100% देना है,
0: बहुत
1: तो
0: मुश्किल हो
1: ऐसे
0: जाता है।
1: बहुत मुश्किल हो जाता है। पर उस हिसाब से फिर डिजाइन करना पड़ता है, म्यूजिक को, कोरियोग्राफी को, स्पेस वाइज या ऑडियंस वाइज। सो डिपेंड, ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि भरतनाट्यम या कोई भी कला प्रेजेंट करने के लिए एक तो मिनिमम स्पेस भी चाहिए, टाइम भी चाहिए आपको,
1: जी
0: और आज
1: जी
0: के समय में हम लोग जो है रील्स पे आ गए
1: जी जी
0: हैं
1: बिल्कुल,
0: तो ऐसा
1: बहुत
0: लगता है
1: पेशेंस
0: कि
1: कम हो रहे
0: पेशेंस
1: हैं।
0: इतना कम हो गया व्यक्तियों का,
1: इवन 3 घंटे थिएटर में जाके बैठने के लिए भी
0: भी टाइम
1: ऑडियंस
0: नहीं
1: ऐसे नहीं है, ऐसे लगता है फास्ट फॉरवर्ड कर दे
0: है
1: सच
0: तो
1: में।
0: इसलिए इन चीजों को थोड़ा सा हमें जो है समझना
1: हाँ
0: पड़ता है, और फिर
1: हाँ
0: उसमें
1: हाँ
0: क्योंकि अभी ऑडियंस की डिमांड के अनुसार फिर कलाकार को ढलना भी पड़ता है, ऐसे भी हो
1: जी जी
0: जाता है।
1: जी
0: और
1: जी
0: कई बार ऐसा भी हो जाता है जो स्पेशली आपको सुनने के लिए, समझने के लिए बैठे रहते हैं, तो वो श्रोताओं के लिए फिर वहां पर तो आप आराम से
1: हाँ,
0: पूरा
1: आराम
0: परफॉर्म कर
1: से।
0: सकते हैं।
1: जी।
0: अर्चना जी, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया अपने कला के बारे में, भरतनाट्यम के बारे में। तो जाते जाते एक मैसेज क्या देना चाहेंगे सबके लिए आप?
1: जी जरूर, आजकल के सोशल मीडिया के जमाने में जो संयम है वो बहुत कम होते जा रहा है, जो पेशेंस है। बट हमें, हमारे माता पिताओं को मेरी बहुत रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को एटलीस्ट एक आर्ट फॉर्म आपको सिखाना ही है तो उनको वहां तक लेके जाना, इट्स आवर ड्यूटी। अगर हमें अच्छा राष्ट्र निर्माण करना है तो हमें ये करना ही होगा कि छोटे छोटे सॉन्ग्स पे उनको डांस सिखाओ, या छोटे छोटे सिंगिंग क्लास है तो वहां पे उनको इंट्रोडक्शन वाइज हर एक को दिखाओ, हर एक टीचर के पास लेके जाओ। ये समझना जरूरी है उनको क्या अच्छा लगता है, और उस हिसाब से। अभी क्या होता है, बच्चे डांस क्लास आते हैं, फिर वो ना बोलते हैं तो अगेन चेंज करते हैं कि नहीं अभी म्यूजिक सीखते हैं, नहीं अभी फिर ड्राइंग सीखते हैं। नहीं, हमें एक ही चीज पे उनको फोकस करवाना है, और ये सिर्फ माता पिता कर सकते हैं। गुरु तो है ही मार्गदर्शन देने के लिए, बट माता पिताओं को मेरी बहुत मन से रिक्वेस्ट है कि आपको उस मार्ग पर बच्चे को लाके छोड़ना है। आगे की जिम्मेदारी गुरु की है।
0: अर्चना जी, काफी अच्छा मैसेज आपने कोट किया। आशा करूंगा हमारे सभी दर्शक मित्रों को, श्रोता मित्रों को बड़ा अच्छा लग रहा है। तो चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, और आशा करूंगा अर्चना जी को आपने सुना, उनके भरतनाट्यम के बारे में उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मैं चाहूंगा कि अगर आप इस पूरे कन्वर्सेशन में जो बातें आपको समझ में आ गई होगी कि अपन बच्चे को एजुकेशन के लिए स्कूल में भेजते हैं जरूरी है, वैसे ही जैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं वैसे एक आर्ट भी उनका सब्जेक्ट होना चाहिए बचपन से ही, ताकि किसी एक म्यूजिक में हो या डांस में हो या फिर कुछ और फॉर्म्स जो अवेलेबल है उन चीजों में किसी न किसी एक आर्ट में उनको जरूर जोड़िएगा। वाद्य यंत्र सीखने के बारे में हो या गायक गायन के क्षेत्र में हो, जरूर बच्चे को एक ही आप उसको इंसिस्ट करें और उनको बचपन से ही उन चीजों को सीखने के लिए प्रेरणा दें, ताकि आगे चल के उनके लाइफ में वो एक स्मूथ ब्लेंडिंग का काम करेगा। अदरवाइज थोड़ा सा वो चीजें जो है सिर्फ एजुकेशन एजुकेशन बच्चे को जो है क्या कहते हैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें हो जाती हैं, वहां पर ब्लेंडिंग या फिर एक स्मूथनेस जो चाहिए परिवार के साथ रहने हाँ, की जो चीजें आती हैं वो सुकून वाली बात
1: है। हाँ, जो सुकून कला में है वो किसी और फॉर्म में नहीं है।
0: मिलता तो वो बच्चे को सुकून भी मिलेगा और साथ ही साथ वो फैमिली के साथ अच्छी तरह से एडजस्ट भी हो जाएगा। चलिए मित्रों, अर्चना जी को फिर एक बार बहुत सारी शुभकामनाएं रेडियो पुनेरी आवाज की ओर से। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: 0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: एक परियासम के पुस्तिल गुलाम जो तुम्हें लेने आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं।
1: सामने आओ। अनारकली मेरी है, इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता।
0: अनारकली जान सलीम।

में है प्यार बड़ी मुश्किल है, हाँ बड़ी मुश्किल है, हाँ हाँ बड़ी मुश्किल है। दो दो उल्फत के बाजार होगा कैसे कारोबार, बड़ी मुश्किल है, हाँ बड़ी मुश्किल है, वो हो बड़ी मुश्किल है।

खातिर दो दो यार, मेरी खातिर दो दो यार, लड़ने मरने को तैयार। बड़ी मुश्किल है, हाँ बड़ी मुश्किल है, हाँ हाँ बड़ी मुश्किल है। एक अनार दो बीमार, कैसी उलझन में है प्यार। बड़ी मुश्किल है, हाँ बड़ी मुश्किल है, ओ हो बड़ी मुश्किल है।

0: दिलदार बड़ी मुश्किल है, हाँ बड़ी मुश्किल है, हाँ बड़ी मुश्किल है। एक अनार दो बीमार कैसी उलझन में है, प्यार बड़ी हाँ बड़ी हाँ बड़ी मुश्किल है।
1: कभी हमने नहीं

आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी। कभी हमने नहीं सोचा था ए,

फकीरे वाह फकीरे, सूट पहन कर कैसा कूदे फांदे, वाह फकीरे वाह फकीरे, सूट पहन कर कैसा कूदे फांदे। कौआ जैसे पंख मयूर का अपने दुम में बांधे, अपने दुम में बांधे, अपने दुम में बांधे। अरे क्या जानो हम किस भेजा में क्या क्या नक्शा खींचा, क्या जानो हम किस भेजा में क्या क्या नक्शा खींचा। लीडर लोग की ऊंची बातें क्या समझे तुम नीचा, क्या समझे तुम नीचा। मेरा वो सब जाहिल बन गया, इस सालों में तो साहब बन गया, सलामत साहब बन गया, साहब बन के कैसा तन गया।

0: गंगूतेली
1: क्या गंगूतेली
0: तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा तुम सब काला लोग का किस्मत हमसा ना बदलेगा हमसा ना बदलेगा सीना देखो कैसा तन गया साला मैं तो साहब बन गया साहब बन के कैसा तन गया

0: से ही ललचाऊंगा क्या मैं तुझको पुकार करके दुनिया में है कोई बात दबा के है कोई बात कैसी तू बनती है री आई हाई
1: हट दरिया किनारे एक बंगलो को परी जाई जो जाई
0: अरे जाएगी कहाँ

कभी हाथ न आए कभी दिल में समाए, काहे सतौती है री आई हाई।

नजर हमक नजर की कतार दिल के उतर गई पास इन प्यार की राहों में वो इन प्यार की राहों में दिल भी गया हम भी गए जिगर है पास हमक नजर की कतार हा

0: अब मैं चाहते हूँ।
1: अरे ये क्या कह रही हैं आप,
2: अभी और गाइए।
1: चुप रहो भाई साहब, नाराज हो जाएंगे। और गाइए।
3: हाँ गाओ।
0: मैं और नहीं गा सकती।
3: गाओ,
1: आपको गाना पड़ेगा।

पीछी पिटिया गज भर की चुट्टिया न कर गुस्सा मेरी गुड़िया गोरी जरा हंस दे तू